भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटीं, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनःस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sehari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: Namaskar. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
3: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में

0: समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
1: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
0: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में

0: वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश।

0: रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा एआई कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली ओवर पास्ट 12 इयर्स। Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And D. Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
3: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
2: During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. In Uttar Pradesh, heavy and incessant rain has thrown life out of gear in many districts. Schools till 12th will remain closed in several districts due to heavy rain alert. Many districts, including state capital Lucknow, are witnessing heavy rain due to cyclonic conditions from last 24 hours. Normal life disrupted.

0: Karimova Guldona of Uzbekistan on the top table. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Anuja. The Times of India highlights Prime Minister Modi's virtual interaction with Seva Yatris from Varanasi to Vadnagar to blend social reform with political work rather than focusing only on vote banks. Key trade pacts in mind, Delhi looks at multi-nation visit by PM Modi in December. Destinations may include the US, Canada and at least two European countries, writes the Indian Express. The statesman writes AIIMS Delhi records over 50 lakh OPD visits, nearly 3 lakh surgeries in a year. A headline in the Economic Times states, rupee recovers as large public sector banks sell dollars. And finally, Hindustan Times and all other dailies carry the news of India ending its wait for gold in shooting. The headline says, shooters strike gold. India scales new heights with its first pole vault medal. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says gap between cities and villages in India has narrowed significantly over past 12 years. Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Japan and Dee Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में पिछले 12 साल के दौरान खातिरख्वाह कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके सबब अलर्ट जारी किए जाने के बाद कई जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 2 दिन से जारी बारिश की वजह से रियासत में आज सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। भारत ने खलीज, बहरे अहमर और बहरे अस्वद में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार हमले किए जाने पर तश्वीश का इजहार किया है। सावन बरवाल ने जापान में एशियन गेम्स में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है और डी गोकेश ने समरकंद में फीडे शतरंज ओलंपियाड के नवे राउंड में भारत को जर्मनी पर जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 साल के दौरान भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में खातिरख्वाह कमी आई है। उन्होंने गांवों के बुनियादी ढांचे में काबिले जिक्र बेहतरी को उजागर किया और कहा कि मुल्क भर की खवातीन भी लगातार खुद इन्हिसार और इक्तिसादी तौर पर बाख्तियार बन रही हैं। जनाब मोदी ने यह रायजनी सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल वसीले से बात करते हुए की। ये यात्री सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जा रहे थे। उन्होंने समाजी खिदमत, समाजी इसलाह और मुस्बत तब्दीली को उजागर किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत को हकीकी शक्ल उसी वक्त दी जा सकती है जब इसमें हरेक का तआवुन और शिरकत हो। जनाब मोदी ने खास तौर पर कहा कि वडनगर ने उन्हें ऐसी अकदार अता की हैं जिनसे उनकी जिंदगी को एक शक्ल मिली, जबकि काशी ने नकदार को मुख्तलिफ किस्म के खिदमात के बेशुमार रंग अता किए। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि नौजवान इन खिदमात से सफर को और ज्यादा अहम बना रहे हैं।
3: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
2: यात्रियों ने बातचीत के दौरान वजीर आजम से अपने तजुर्बात का इजहार किया। जनाब मोदी ने यात्रियों से जोर देकर कहा कि वो एक डायरी रखें और इसमें यात्रा के अपने तजुर्बात लिखें। उत्तर प्रदेश में मुसलसल जारी शदीद बारिश के सबब कई अजला में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। शदीद बारिश के अलर्ट की वजह से कई अजला में 12वीं जमात तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रियासत की राजधानी लखनऊ

समेत कई अजला में तूफान की सूरत हाल के पेश नज़र गुज़िश्ता 24 घंटे से शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आमद रफ्त में रखना पड़ा है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हादसे भी पेश आए। रियासत के राहत रसानी के काम से मुतालिक कमिश्नर डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशवंत ने मौसमी सूरत हाल और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ अजला के जिला मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की।

0: भारतीय महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इसी तरह की मौसमी सूरतेहाल आज और कल भी जारी रहेगी। मशरक़ उत्तर प्रदेश के लिए गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मगरबी उत्तर प्रदेश में भी 27 सितंबर तक गरज चमक के साथ शदीद बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने गुज़िश्ता 2 दिन से जारी बारिश की वजह से रियासत में आज सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। शदीद बारिश के सबब अंदरूनी अंद्रावती, महानदी और शिवनाथ समेत कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। कई शहरों और कस्बों के नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। वजीर आला विष्णु देवसाई ने सैलाब और पानी भरने की सूरत हाल के तनाजुर में बचाव और राहत रसानी की कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए जिला कलेक्टरों को चौकसी बरतने की हिदायत जारी की है। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि वो पानी की सतह में इजाफे या सैलाब के खतरे की सूरत हाल में लोगों को फौरी तौर पर खबरदार करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। उत्तराखंड में आज और कल मुतअद्दिद मकामात पर शदीद से मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कई ज़िलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और सयाहों से इस दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील की है। अलबत्त चारधाम यात्रा फ़िलहाल जारी है। शदीद बारिश की सूरत हाल में यात्रियों को करीब तरीन महफूज मकाम पर रोका जा सकता है। पेश एक रिपोर्ट।
1: मौसमियात के महकमे के मुताबिक बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के कुछ मकामात पर आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। इन ज़िलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, टहरी, हरिद्वार और पौड़ी के कुछ इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के तनाजुर में कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान मकामी लोगों और सयाहों से मौसम से मुतालिक एडवाइजरी पर अमल करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील की है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
0: उधर शिमाली छत्तीसगढ़ और मुलहका इलाकों में मौजूद हवा के कम दबाव का निज़ाम बदस्तूर उड़ीसा के मौसम को मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बेतरानी और जलाका दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिससे नशेबी इलाकों में पानी भर गया है और शिमाली उड़ीसा में सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। मिट्टी के तोदे गिरने और पानी जमा होने के सबब सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। एहतियात के तौर पर भद्रक जिले के 7 ब्लॉकों में 399 स्कूलों समेत कटक, मलगानगिरी, नवरंगपुर और नौपाड़ा के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रेलवेज ने गुजरात में भुज और बिहार में बरौनी के दरमियान एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस का आगाज किया है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। ये नई रेलगाड़ी गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के अहम मकामात को जोड़ते हुए 2,532 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ये नई रेल सर्विस समाख्याली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, इज्जतनगर, पीलीभीत और दीगर अहम स्टेशनों समेत दीगर कमर्शियल अहमियत के हामिल स्टेशनों का अहाता करेगी। रेलवे की वजारत के मुताबिक भुज बरौनी सर्विस पीर, बुध और सनीचर को चलाई जाएगी, जबकि बरौनी भुज रेल खिदमात मंगल, जुमेरात और सनीचर को दस्तयाब होंगी। वजारत ने मजीद कहा है कि नई रेल सर्विस मुल्क के मगरबी और मशरकी हिस्सों के दरमियान रेल के सफर का एक इजाफी मुतबादिल फराहम करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी फराहम करेगी। रेलवे की वजारत ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक तोसी दिए जाने की भी मंजूरी दी है। इस तोसी से झांसी, आगरा और मथुरा के दरमियान रेल के सफर में मजीद सहूलत फराहम होगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत आज पटना में मुतासरीन के हकूक से मुतालिक विक्टिम राइट्स मरकज का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर कई दीगर सहूलियात का भी आगाज करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुल्क में अपनी तरह का पहला मुतासरीन के हकूक का मरकज कायम किया गया है, जो बिहार रियासती कानूनी खिदमात के महकमे के इहाते में कायम किया गया है। यह मरकज मुख्तलिफ जराइम के मुतासरीन को एक ही मकाम पर कानूनी हकूक और ज़रूरी मदद फराहम करेगा। यह मरकज पटना ज़िले में 1 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है, जो बाद में रियासत के सभी ज़िलों में कायम किया जाएगा। इस मौके पर मुखन्नस अफराद के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। पटना से सविता पारीख की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन

0: के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने खलीज बहर अहमर और बहर असवद में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार किए जाने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमलों को अब मजीद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉ जयशंकर न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के दौरान जहाजरानी और जहाजियों की हिफाजत और सलामती पर दोस्तों के ग्रुप की पहली मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने सिलसिले में मजीद तवज्जो हासिल करने के लिए भारत और लाइबेरिया दोनों की तरफ से किए जाने वाले नए इकदाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत जहाजियों का एक बड़ा वसीला है और लाइबेरिया जहाजरानी की दुनिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्री है। ये दोनों मुल्क समुद्र में हिफाजत और सलामती को मुस्तहकम बनाने के मकसद से यकजहत हुए हैं। इस कदम का मकसद समुद्र में मजीद हिफाजत के लिए एक मशावरती फ्रेमवर्क कायम करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि इस शोबे के तहत किए जाने वाले मुज़ाकरात में अहम फरीकीन की और ज्यादा अहमियत है। उन्होंने खलीज अमान में एंटीगुआ और बरबोदा के परचम बरदार एक बड़े जहाज MV केप दाओ पर हालिया हमले की तरफ इशारा किया जिसमें एक भारतीय जहाजी की मौत हो गई थी। जनाब जयशंकर ने पनामा के परचम बरदार तेल टैंकर एल गया का भी जिक्र किया जिस पर आबनाए हुरमुज में हमला किया गया था जिसके नतीजे में भारतीय जहाज के अमले का एक रुकन लापता बताया गया था। वजीर खारजा ने MV ओमरोफी और MV गोल्डरलियो समेत बहर असवद में शहरी जहाजों पर किए गए हमलों की तरफ भी तवज्जो मबजूल कराई।
1: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier MV Cape Dow was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and mariners have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks.
0: वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें आला सतह इजलास से खिताब करेंगे। यह इजलास एतमाद की बहाली तब्दीली के अमल का मौसर इंतजाम एक ऐसी अक़वाम मुत्तहदा जो सबके लिए मौसर खिदमात अंजाम दे के मौजू के तहत मुनाक़िद किया जा रहा है। UN जनरल असेंबली अपने सभी 193 मेंबर ममालिक के सुदूर वज़रा आज़म और आला नुमाइंदों को यकजा होने का मौका फराहम करता है जो अहम बैनुल अक़वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौक़िफ़ पेश करते हैं। भारतीय मैराथन रनर सावन बरवाल ने एशियन गेम 2026 में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने इस खेल में पोडियम फिनिश के भारत के 44 साल तवील इंतजार को खत्म किया। बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का वक्त लेकर न सिर्फ जाती बेहतरीन स्कोर दर्ज किया बल्कि मर्दों के मैराथन फाइनल में कौमी रिकॉर्ड भी बनाया। वो जापान के यामाशिता से पीछे रहे जिन्होंने ये दौड़ जीतकर सोने का तमगा हासिल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आईची नागुआ में एशियाई खेलों में मर्दों के 10,000 मीटर दौड़ के मुकाबले में गुलवीर सिंह के चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि गुलवीर सिंह ने इससे कबल कांसे का तमगा जीतने के बाद एक बार फिर मुल्क को फख्र का एहसास दिलाया है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी यह कामयाबी पूरे भारत में लंबी दौड़ में हिस्सा लेने वाले नौजवान एथलीट्स के लिए बाई से तरगीब होगी। वजीर आजम ने एशियाई खेलों 2026 में शॉटपुट में कांसे का तमगा जीतने पर मनप्रीत कौर को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी असरंगेज कारकर्दगी की तारीफ की और मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम ने बेरानिका एलेंगोवन को अपने पहले एशियाई खेलों में खवातीन के पोल वॉल्ट में कांस्य का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की। फीडे शतरंज ओलंपियाड में दिफाई आलमी क्लासिकल शतरंज चैंपियन डी गोकेश ने फैसलाकुन जीत हासिल करते हुए भारत को मर्दों के ओपन जुमरे के 9वें राउंड में गुज़िश्ता मुश्तरका सरफहरिस्त टीम जर्मनी के खिलाफ 2.5 और 1.5 से कामयाबी दिलाई। और अब अखबार के आईने के साथ हैं शहजाद।
2: शुक्रिया शबाना। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے میک ان انڈیا پہل کے 12 سال مکمل ہونے کی خبر کو اپنے صفحہ اول پر نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے اس موقع پر وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو خاص طور پر شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس پہل سے ملک میں پیداوار، سرمایہ کاری اور برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلورو میں منعقدہ سیوا فرسٹ انوویشن چیلنج کی اختتامی تقریب سے

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
1: स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वैश्विक अभियान है विश्व हृदय दिवस, जो दिल संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये दिन जीवन शैली में बदलाव और सक्रिय स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम से स्वस्थ दिल को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। आइए सुनते हैं इस विषय पर एक विशेष भेंटवार्ता। डॉक्टर विजय गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड CTVS राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पूर्व प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी डॉक्टर RML अस्पताल नई दिल्ली से बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। हम सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं वर्ल्ड हार्ट डे की और स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विजय गुप्ता। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
2: नमस्कार।
1: विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे, तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है।
2: देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे या विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका बेसिकली उद्देश्य तो यही है कि आम इंसान को या आम पब्लिक को जागरूक करना हृदय की बीमारी के बारे में, जिससे इसकी बीमारी से जो मृत्यु है उसका दर थोड़ा कम हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं, हृदय रोग एक इम्पॉर्टेंट कॉज है मोर्टेलिटी का, मृत्यु का। करीब 15 से 20 लाख लोग इस बीमारी से मरते हैं। करीब 50 करोड़ लोग पूरे विश्व में हृदय रोग से बीमार हैं, और आधी से ज्यादा जो इसकी मृत्यु का रेट है वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। जो मेन कॉज है इसके अलग हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए बनाया जाता है कि आपको इससे जागरूक किया जाए।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 से 20 लाख लोग इससे जो है हर साल मरते हैं, और ये जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण आप समझते हैं?
2: देखिए, जो हार्ट डिजीज है वो बेसिकली कुछ कारणों से है, जैसे डायबिटीज है। डायबिटीज इटसेल्फ बहुत तेजी से हिंदुस्तान में फैल रहा है। हाइपरटेंशन है, करीब 30% पब्लिक पूरे इंडिया में हाइपरटेंशन से ग्रसित है। इसके अलावा मोटापा, लोग बाग एक्सरसाइज नहीं करते, लोग बाग अपना वेट का ध्यान नहीं रखते, और स्मोकिंग, टेंशन, जंक फूड और पॉल्यूशन, ये सब कारण है जिसकी वजह से हृदय रोग बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है।
1: जी, ये और बताइए कि अपने हार्ट को अगर हेल्दी रखना है तो क्या रूटीन हमारा लिसनर फॉलो करे और क्या डाइट ले, ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना।
2: देखिए, हार्ट की बीमारियां जैसे मैंने कहा 50% प्रिवेंटेबल है। अगर आप अपना खाने पीने का ध्यान रखें, स्मोकिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको बंद करना बहुत जरूरी है।

0: हुई है, और मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट लिफ्टिंग इतना फायदा नहीं करता, जबकि मॉर्निंग वॉक जो भी एरोबिक एक्सरसाइज है अगर आप उनको करेंगे तो आपका वेट भी कम रहेगा और हार्ट पे भी फायदा होगा। इसके अलावा अगर मोटापा है तो फैट बंद कर दीजिए, अगर डायबिटीज है तो उसको अपना शुगर का कंट्रोल बहुत जरूरी है, और जंक फूड बहुत अधिक कॉमन हो गया है तो उसको भी रोकना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका शुगर का लेवल कम रहे। इन्हीं सब चीजों से आप हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। योगा करना भी एक जरूरी है, दिमाग को शांत रखना, कंप्यूटर का टीवी का देखना बहुत अधिक भी ठीक नहीं है। इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप हार्ट प्रॉब्लम कम होगी।
1: जी, और चेकअप कब कराना चाहिए?
0: देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो सिम्टम नहीं देती, जिसमें आपको मालूम नहीं चलता, बहुत आखिर में आगे मालूम चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर है। तो 40-45 साल में आपको डेफिनेटली आपको अपना ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, एक ECG करा के देख लेना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज है तो आपको जल्दी, हमने आजकल देखा है कि बहुत यंग एज में इंडिया में हार्ट डिजीज आ रही है। आदमी 30-35 साल के पेशेंट्स का हमको स्टेंट डालना पड़ जाता है या बाईपास करना पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आपके फैमिली में कुछ हार्ट प्रॉब्लम है या आपको एंजाइना हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करिए, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा, हमने देखा है कि लोग बाग इधर उधर से ओपिनियन लेते रहते, उससे अच्छा है आप डॉक्टर के पास जाइए। अपना ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो दवाई देता है। और दूसरी बात यह कि लोग बाग कुछ दिन दवाई खाते हैं फिर बंद कर देते, फिर अचानक ब्लड प्रेशर फिर शूट अप होता है, कोई आपको सिम्टम नहीं आता, दवाई अगर शुरू कर दी है। तो BP देखना बहुत जरूरी है कि वो सेटल है या बढ़ गया है या कम हो गया है। हर साल तो आपको पूरा चेकअप करना चाहिए, मतलब तो हर महीने आपको BP दिखवाना चाहिए, और दवाई अचानक नहीं बंद करनी चाहिए, दवाई बंद करना ही सबसे खतरनाक होता है।
1: डॉक्टर साहब, क्या मैसेज रहेगा आकाशवाणी के माध्यम से उन सभी श्रोताओं को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं?
0: देखिए अगर आप अपना ध्यान रखें, एक मैं और राय देना चाहता हूं कि एक CPR चीज होती है कि आपको किसी को घर में या आस पड़ोस में किसी को अरेस्ट हो जाता है तो एक आम आदमी को भी मसाज करना आना चाहिए, हार्ट का मसाज कर ले तो हार्ट रिकवर हो जाता है। हार्ट एक बार रिकवर हो जाए और आप हॉस्पिटल पहुंच जाए तो बचने के पूरे चांस होते हैं। परंतु अगर आपको हार्ट अटैक हुआ घर में और आप हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए और आपके आस पड़ोस में किसी को कुछ आता ही नहीं कुछ बचाने के लिए, तो विदेशों में देखा गया है कि नॉर्मल पब्लिक को भी CPR करना आता है। तो हम लोगों को भी इस प्रक्रिया को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और किसी भी तरीके से हार्ट के पेशेंट को हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाना चाहिए। और मेरी राय यही है कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए, अपना तो अपना, अपने हार्ट का ध्यान रखिए, तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं।
1: ये आपने जो बाद में बताया CPR,
0: जी
1: तो इसको कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से इसकी प्रशिक्षण हमारा श्रोता ले
0: ये
1: सकता है?
0: ज्यादातर हॉस्पिटल्स में पब्लिक के लिए भी CPR ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम्स हैं, बाकी नेट पे आजकल इतना अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, किसी डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। और इसको सीखना मेरे ख्याल से काफी मोर्टेलिटी को, जो कई बारी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते मर जाते हैं, उनको बचाया जा सकता है। और आप जितना मर्जी वीक हार्ट आप हॉस्पिटल एक बार टाइम पे पहुंच जाएं तो उसको बचाया जा सकता है।
1: वर्ल्ड हार्ट डे पर हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी डॉक्टर विजय गुप्ता से, और बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
0: थैंक यू।
2: अभी आप विश्व हृदय दिवस पर विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। डॉक्टर विजय गुप्ता पूर्व प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी डॉक्टर RML अस्पताल नई दिल्ली और प्रोफेसर एंड हेड CTVS राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से बात कर रही थी शालिनी मित्तल। श्रोताओं, हम आपको बता रहे हैं दिल के बारे में कुछ मजेदार तथ्य। औसत हृदय एक मुट्ठी के आकार का होता है। आपका दिल हर दिन लगभग 1,15,000 बार धड़कता है। आपका हृदय प्रतिदिन लगभग 2,000 गैलन रक्त पंप करता है। दिल शरीर से अलग हो जाने पर भी धड़कता रह सकता है। परी मक्खी, जो एक तरह की ततैया होती है, उसका दिल किसी भी जीवित प्राणी में सबसे छोटा माना जाता है। आपके दिल की धड़कन की आवाज दिल के वॉल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। टूटा हुआ दिल होना संभव है, इसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है, और इसका लक्षण दिल के दौरे के समान हो सकता है। अंतर यह है कि दिल का दौरा हृदय रोग से होता है और टूटा हुआ हृदय सिंड्रोम भावात्मक या शारीरिक तनाव की घटना से तनाव हार्मोन की भीड़ के कारण होता है। यदि आप अपनी रक्त वाहिका प्रणाली को फैलाते हैं तो ये 60,000 मील से अधिक तक फैल जाएगी। हंसना आपके लिए अच्छा है, ये तनाव को कम करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। आइए जानते हैं कैंसर के आयुर्वेदिक उपचार के विषय में।

0: पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद कैंसर अस्पताल के संचालक श्री अतुल सिंघल से।
1: पूरे विश्व में हार्ट अटैक के बाद सबसे ज्यादा मौतें आजकल कैंसर से हो रही हैं। ये सब देखते हुए हमने ये देखा आयुर्वेद से कैंसर का इलाज हो सकता है, इसमें कारगर इलाज है, इसलिए पंचगव्य और आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर के इलाज की तरफ हमने काम करना शुरू किया। आयुर्वेद में कैंसर का जो इलाज है वो न केवल सस्ता है बल्कि अच्छा भी है और बिल्कुल पीड़ा रहित है। देखिए, आयुर्वेद के अंदर कोई ऐसी जांच के विषय नहीं होते हैं। हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो जिनको आप वैद्यराज भी बोल सकते हैं, वैद्य हैं, वो नाड़ी देखकर या लक्षण देखकर बता देते हैं कि क्या बीमारी है। आजकल तो खासतौर से जब कोई मरीज आयुर्वेद में जाता है तो आमतौर पर टेस्ट करा कर जाता है, जिसके अंदर उसमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी होती है, सीटी स्कैन भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, पेट स्कैन भी हो सकता है। और किसी के पास ये रिपोर्ट अगर नहीं है तो भी सिम्टम्स देख के पता चल जाता है कि भाई इस व्यक्ति को कर्क रोग है, अर्बुद रोग है, और उसका उस तरीके से उपचार शुरू किया जा सकता है। शरीर के अंदर कोई गांठ है, जिसे गीठा भी बोल सकते हैं, कोई रसोली है, कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो पा रहा, या लगातार कहीं से खून निकल रहा है शरीर के किसी अंग से, रक्तस्राव जिसको बोलते हैं वो हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, लगातार वजन कम हो रहा है किसी का, या खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण है जो कैंसर का कारण हो सकते हैं। जब कोई मरीज आता है तो इन लक्षणों के आधार पर आयुर्वेदाचार्य उसका इलाज करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पंचगव्य और आयुर्वेद से हम लोग इलाज करते हैं, सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि पंचगव्य क्या है। देशी गाय, उसके उत्पाद से पंचगव्य तैयार होता है, जिसमें गाय का दूध, दही, घी, गोमय और गो अर्क, ये पांच चीजों को एक अनुपात में मिलाया जाता है, ये पंचगव्य तैयार होता है। और पंचगव्य का जो महत्व है ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारी जो आयुर्वेद के ग्रंथ है उसके अंदर भी इनका उल्लेख है। मैं यहाँ पर उल्लेख ये भी करना चाहूंगा, महाभारत काल का, श्री कृष्ण जी को जब स्तनपान कराया पूतना ने और उनके शरीर के अंदर विष फैल गया था पूतना का स्तनपान करने से, तो शास्त्रों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण जी को माता यशोदा ने और गोपियों ने पंचगव्य से स्नान कराया और पंचगव्य का पान कराया और विष का प्रभाव जो है उनके शरीर में उससे खत्म हो गया। तो पंचगव्य के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, क्योंकि जो कर्क रोग है, जो कैंसर है, ये भी एक तरीके से जहर का काम करता है, जहर जैसे शरीर के अंदर आ गया तो पंचगव्य से वो विष और वो जो उसके अंदर जहर आपके शरीर के अंदर है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेदिक, जिसके अंदर योग प्राणायाम है, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जिसके अंदर आपका परहेज है, साथ में सत्संग है, हवन है, इन सब पद्धतियों का उपयोग समग्र चिकित्सा के अंदर किया जाता है। और आप फास्ट फूड आजकल खाते हैं, ये भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। तो हम जीवन शैली जो बदलने पर जोर देते हैं कि कोई भी मरीज है वो अपनी जीवन शैली को बदले और जो भारतीय जीवन शैली है उसको अपनाए, सुबह जल्दी उठना, योग प्राणायाम करना, उसके बाद हवन करना, गाय के दूध का सेवन करना, तुलसा के पानी का सेवन करना और मौसमी सब्जियों का, मौसमी फलों का सेवन करना, तो ये सब चीजों को अगर आप अपनाएंगे तो कैंसर होगा ही नहीं, अगर है तो उसके उपचार में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को विश्व योग दिवस, जिसको पूरा विश्व अपनाने लगा है, ये तो हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। आप योग अगर करेंगे तो ये सब चीजें आवश्यक भी हैं और करनी चाहिए, इस बात के लिए हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि आपकी दिनचर्या है वो आपको बदलनी है। इसके अलावा आपको हम लेप करने के लिए कहते हैं, लेप होता है शरीर के अंदर, जो लेप होता है उसके अंदर आयुर्वेदिक दवाइयों का और गोमय को मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता है, जिस अंग पर आपके कैंसर है उस पर अगर आप लेप करेंगे तो वो एक तरीके से रेडिएशन का काम करता है। श्यामा तुलसा का पानी उबालकर आप सादे पानी की बजाय अगर लगातार श्यामा तुलसी का पानी पिएंगे तो उसको आप एक कीमोथेरेपी से उसकी तुलना कर सकते हैं। जब हम हवन करते हैं तो हवन सामग्री ऐसी तैयार की जाती है जिसके अंदर जड़ी बूटियां डालते हैं जो कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद है, और ये जड़ी बूटियां जो कीटाणु हैं वातावरण के अंदर, जो विषाणु हैं जो नुकसानदायक हैं, उनको खत्म करती हैं इनके धुएं से, और जो अच्छे कीटाणु हैं, जो लाभप्रद जीवाणु हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और जो हमने गाय के उत्पाद बताए, गाय को भी जो खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं उसके अंदर अश्वगंधा, तुलसा, हल्दी, ऐसी चीजें उसके अंदर दी जाती हैं जो कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद है। हम किसी को इस प्रकार की गारंटी नहीं देते हैं आयुर्वेद में कि आप 100% ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बात की हम गारंटी अवश्य देते हैं कि आपका जो जीवन है वो सुगम बन जाएगा और आपका जो समय है एक जिंदगी का वो बढ़ जाएगा। साथ में इसमें एक चीज और मैं जो जोड़ना चाहूंगा, हल्दी की जब हमने बात की, हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक तत्व होता है जो कैंसर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, कैंसर को रोकने के लिए भी और कैंसर रोगियों के लिए भी। उस हल्दी को आयुर्वेद ने एक रामबाण औषधि माना है, उसका इलाज करते हैं। अब जो ऑल इंडिया मेडिकल ने जो शोध किया है, एम्स ने जो शोध किया है, उसमें उन्होंने माना है कि हल्दी जो एक कारगर इलाज है और पंचगव्य को भी

0: ऑल इंडिया मेडिकल ऑफ इंस्टीट्यूट ने इस बात को माना है कि पंचगव्य से भी इलाज में काफी कारगर है ये कैंसर के इलाज के अंदर। आयुर्वेद के जो सूत्र हैं वो यही हैं कि आप तन मन को स्वस्थ रखें, अपने आचार विचार को ठीक रखें, नियमित जीवन शैली को अपनाएं, चीजें जो हैं वो आपको किसी भी बीमारी से दूर रखने के लिए काफी कामयाब है। केवल कैंसर नहीं और तमाम तरीके की बीमारियां आयुर्वेद की इस पद्धति से, इन चीजों के सेवन से या जीवन शैली को अपनाने से ठीक हो सकती है। जितने भी शोध हुए हैं उसमें सामने आया कि जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है किसी भी प्रकार से, वो बीड़ी सिगरेट या गुटखे के शक्ल में हो सकता है, उसको कैंसर अवश्य होता है। और चाहे 10 साल लगे, 15 साल लगे, या यूं कहें कि जो तंबाकू है वो कैंसर का एक सबसे बड़े कारणों में से एक है। खासतौर से जो मुंह का कैंसर है, मुंह का, गले का जो, या फेफड़ों का कैंसर होता है, वो बीड़ी सिगरेट पीने वालों को होता है या गुटखा खाने वालों को होता है। जो हमने खान पान और जीवन शैली की बात की, अगर उसको बदल देंगे, इन सब चीजों को छोड़ देंगे, तो निश्चित तौर पर आप कैंसर से बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आयुर्वेद से कैंसर का उपचार, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे श्री अतुल सिंघल से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस, जिसका उद्देश्य रेबीज उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जानवरों के काटने पर उपचार, आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। हमारे विशेषज्ञ हैं डायरेक्टर एवं प्रोफेसर सामुदायिक चिकित्सा विभाग सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर जुगल किशोर। आपसे बात कर रही हैं नीलू सूरी।
2: जब किसी इंसान को जानवर काटता है तो कहीं न कहीं शारीरिक घाव के साथ मानसिक घाव भी दे जाता है। शारीरिक घाव तो भर ही जाते हैं, लेकिन मानसिक घाव भरने में समय लग जाता है, और वो मानसिक घाव होते हैं डर और शंका के घाव। आज हम बात करेंगे कि भयानक बीमारी क्या हो सकती है अगर कोई जानवर इंसान को काट जाए। डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत करूंगी आपका।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, जानवरों की बात करें तो अगर सिटी में, जैसे दिल्ली जैसे शहर की बात करें, तो आपके अनुभव से कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके काटने से हमें सचेत रहना चाहिए?
3: जो एनिमल बाइट है, या कहना चाहिए जानवरों के काटने में सबसे कॉमन जो बाइट है, वो हमारा डॉग बाइट है, या कुत्ते के काटने का बाइट सबसे ज्यादा है। कुत्ता और बिल्ली दोनों मिला लें तो 97% बाइट होते हैं। बाकी जो 2% होते हैं उसमें हमारे वाइल्ड एनिमल आते हैं, या फिर आप जंगल में गए तो वहां पर कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके संपर्क में आए और उन्होंने काटा। जो हमारे घरों के अंदर होते हैं उसमें जैसे कि चूहा है, या बर्ड्स हैं, या फिर हम स्क्वेरल्स होते हैं, इन पे भी काफी रहता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में बहुत तेजी से इसको नियंत्रण में करने के लिए जो गवर्नमेंट के और अदरवाइज बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, और एक जो नेशनल प्रोग्राम है रेबीज का वो चल रहा है, उसमें सभी को टीका लगता है, उसके हिसाब से हम कहेंगे कि काफी नियंत्रण में।
2: डॉक्टर साहब, आपने अभी एक चीज का जिक्र किया कि रेबीज हो सकता है और उससे अक्सर देखा गया कि मौत भी हो जाती है, तो कैसे ये पहचाने कि ये जो है हमारे लिए एक भयानक स्थिति बन सकती है आने वाले समय में, और क्या हम सचेत हो जाए कि नहीं अब तो डॉक्टर के पास आना जरूरी है? पहले मैं अगर प्राथमिक उपचार की बात करूं, फर्स्ट एड की बात, खून निकल रहा है तो कैसे करें, और छोटी चोट के लिए क्या किया?
3: इसमें WHO ने बड़ा क्लियरली क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि अगर कोई भी जानवर जो वाइल्ड है उसके आप संपर्क में आते हैं तो वो एक तरह का खतरा बन जाता है आपका, और उसने आपको लीक किया, या हमारे जो सड़कों पे कुत्ते होते हैं अगर उसने कोई लिकिंग या स्क्रैच किया या बाइट किया तो उनका कैटेगरी किया है। इंटैक्ट जो स्किन होती है, हमारी जो स्किन है उस पर रेबीज के वायरस अगर लगे तो वो अंदर नहीं घुसते, उसके लिए स्क्रैच होना चाहिए या बाइट होना चाहिए। तो अगर वो सिर्फ लीक करता है तो हम Category 1 कहते हैं, उस केस में भी हम उसका इलाज करेंगे। इलाज में ये आता है कि उसको अच्छे से धोना है ना, तो ये सबसे पहला काम है। और जो तीनों कैटेगरी है, तीन कैटेगरी इसमें डिवाइड की है, तो Category 1 के अंदर भी उसको पानी से और साबुन से उस जगह को बहुत अच्छे से धोना है, उसके बाद में कुछ नहीं करना है अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है। अगर स्किन के अंदर, जैसे आपके मुंह के अंदर या आंख के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अगर वहां पर उसका लीक हो जाता है तो डेफिनेटली वो Category 2 हो जाता है, या कोई स्क्रैच हुआ है, सिंपल स्क्रैच हुआ है, तब भी वो Category 2 हो जाता है। Category 3 में वो आते हैं जिसमें खून निकलना शुरू हो जाए, या फिर वो बहुत ज्यादा डीप काट ले, उसको हम Category 3 में डालते हैं। Category 3 में वो भी लोग आते हैं जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे कि जिसको एड्स है, या कोई बहुत दिनों से कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं चल रही है, तो Category 2 वाले लोग भी उसके Category 3 में बन जाते हैं, क्योंकि उसमें खतरा हमेशा बना रहता है। तो Category 3 का जो इलाज है वो डिफरेंट है Category 1 का।

0: अलग है और कैटेगरी टू का अलग है।
1: डॉक्टर साहब, अगर इंजेक्शन की बात करें, आपने कहा इलाज सबके अलग है, अगर खरोंच लगे है तो क्या उसमें इंजेक्शन लगेंगे?
0: या ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें जो कैटेगरी टू है, कैटेगरी वन का बताया कि आपको सिंपल वॉश करना है, पानी और साबुन से वॉश करना है। कैटेगरी टू और थ्री के अंदर भी आपको सबसे पहला जो काम करना है, घर पे ही काम करना है, कि सभी लोगों को जब भी इस तरह का कोई बाइट हो तो आपको पानी और साबुन से उसको 15 मिनट तक धोना है। उसके बाद में फिर उसके ऊपर हम बीटाडीन या अल्कोहल लगाते हैं, या आप वोकाडीन है या आयोडीन का कोई वह है, वो एंटीसेप्टिक होता है जो एंटीवायरल भी होता है, उससे वायरस मर जाते हैं। और ये भी है कि अगर वो वुंड काफी बड़ा है तो हम कभी भी उसको क्लोज नहीं करते। तो ये उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। कैटेगरी टू में और थ्री में कोशिश करते हैं कि कैटेगरी टू में हम रिच जो देते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देते हैं। जितने भी हमारे वुंड्स होंगे उनमें हम रिच जरूर देंगे। उस रिच का मतलब है कि इम्यूनोग्लोबुलिन को हमें इनफिल्ट्रेट करना है, उसको वुंड के चारों तरफ डालना है। और अगर वो कम तादाद में हो और वुंड बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसको डाइल्यूट करके भी हम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, सीरम की बात आपने कही, तो डॉक्टर साहब सीरम कितने समय में लग जाना चाहिए? इसके साथ एक प्रश्न मेरे और दिमाग में चल रहा है, डॉक्टर साहब टीटी कई लोग नहीं भी लगवाते और कई बार लगवाते, तो कितना जरूरी है टीटी का लगवाना?
0: ये दो प्रश्न है, हम दोनों अलग अलग ले लेते हैं। इसमें क्या है कि रिक को हम कितना पहले लगाएं, जितना जल्दी हो सके उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं। फॉर्चुनेटली कई तरह की एंटीबॉडीज हैं, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी अब WHO ने अप्रूव कर दी है। जो गवर्नमेंट अप्रूव करता है वो हमारा ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है या फिर इक्विन जो कि हमारा हॉर्स से बनता है। टेटनस का ऐसा है कि जब कभी भी कोई भी इंजरी होती है वहां पर हमारे चांसेस होते हैं कि टेटनस हो जाए। अगर वो वाइल्ड है या आपके वहां पर कोई रेत लग गया, मट्टी लग गई या कोई भी गंदी चीज लग गई तो आपको टेटनस के स्पोर वहां पर लग सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी टेटनस के इंजेक्शन हर 5 साल बाद लगते रहते हैं तो आपको ज्यादा चिंता की बात नहीं है, एक सिर्फ बूस्टर देने की जरूरत पड़ती है। और अगर पिछले आपके 3 साल के अंदर आपको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है तो आपको वॉश करने की जरूरत है, नेक्स्ट आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको स्क्रैच होता है, माइल्ड आपको इंजरी होती है, जब तक कि वो ज्यादा इंजरी ना हो जिसमें कि मसल्स निकल आती हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उस केस में आप बूस्टर लगा दें। और बूस्टर लगाने के बाद में फिर आप 5 साल के लिए फ्री हो जाते हैं, 5 साल के लिए आपको टेटनस टीटी नहीं देनी जरूरत नहीं
1: पड़ती। डॉक्टर साहब, अगर पालतू जानवरों की बात करें और वो वैक्सीनेटेड है और अगर वो काट लेता है किसी को, तो क्या एंटी रैबिस वैक्सीन या सीरम की जरूरत है?
0: मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि एनिमल बाइट में ये जो हमारा एक तो बर्ड का, स्क्वेरल का और रैट, इसमें अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि उससे रेबीज हुआ है। इसलिए रेबीज इस कंडीशन में आपको नहीं लगवाना है और आपको सिर्फ वॉश करना है और कुछ नहीं करना है। एंटीसेप्टिक कोई सॉल्यूशन लगाइए, बस खत्म, अगर जब तक कि रैट वाइल्ड ना हो।
1: डॉक्टर, कई बार ब्लीड बहुत ज्यादा कर जाता है, प्राथमिक उपचार क्या रहेगा?
0: उस पे ब्लीडिंग कहीं से भी होती है तो हम जैसे फर्स्ट एड होता है, हम उसको प्रेशर पॉइंट होते हैं, कम प्रेशर पॉइंट से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो उसको वॉश करके और वो फिर कोशिश करेंगे कि ओपन सुचर बोलते हैं कि उसमें हम उसको बिल्कुल बंद नहीं करते बल्कि ब्लीडिंग्स को रोक के और फिर एक ओपन सुचर लगा देते हैं, क्योंकि रेबीज के अंदर हमें कभी भी मसल्स को या फिर स्किन को बिल्कुल टाइटली बाइंड नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी भी तरह की बैंडेज, किसी भी तरह की पट्टियां उसमें अलाउड नहीं होती, उसको जितना ओपन रखा जाए उतना अच्छा है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो हुई पालतू जानवरों की बात। अक्सर देखा गया जो गली के कुत्ते अगर काट लेते हैं या कोई बिल्ली काट लेती है और उनके मुंह से भी पानी आ रहा होता है और कुछ इस तरह से उसकी हालत ऐसी होती है सीरियस, जैसे थोड़े दिन बाद वो मर भी जाता है, ऐसे केस में कितना सतर्क रहना चाहिए?
0: एक तो ये कि अगर कोई भी कुत्ता इस तरह से या कोई बिल्ली या कोई भी जानवर इस तरह से बिहेव करता है कि वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, वो घबराया हुआ है, कोशिश करता अनप्रोवोक बाइट करने की कोशिश करता है, तो हमें मान लेना चाहिए कि ये डेंजर है और उससे तो डेफिनेटली अवॉइड करना है हमें। अगर वो काट लेता है तो हम मान के चलते हैं कि रेबीज होगा, तो इसलिए हमें पोस्ट रेबीज वैक्सीनेशन जैसे बताया कैटेगरी 1, 2, 3 लगाना ही लगाना है। लेकिन जो घर के कुत्ते काटते हैं उसमें अगर उसने वैक्सीन लगवाया हुआ है तो ये देखा गया कि वैक्सीन लगे हुए कुत्तों के अंदर भी जो हमारे पालतू होते हैं उसमें भी चांसेस होते हैं हमारे कि उसको रेबीज हो सकता है, इसलिए हमारे को वैक्सीन लगवाना होता है। ये जरूर करना चाहिए कि उस कुत्ते को हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे घर में है या आसपास में तो हमें पता है, तो हम देखते हैं कि जिसमें भी कभी सिम्टम शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि राल गिल रही है या फिर वो पागल सा घूम रहा है, तो ये देखा गया कि विद इन 8 डेज दिस टाइप ऑफ डॉग, इस तरह के कुत्ते या बिल्ली मर जाते हैं। तो अगर हम उन्हें 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, 10 दिन तक अगर वो जीवित रहता है तो हमारे को चिंता की जरूरत नहीं है। जो हम वैक्सीन शुरू किया है उसको हम प्री एक्सपोजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें क्या है कि पोस्ट एक्सपोजर में हमारे सारे को इंट्रा

0: वैस्कुलर 5 इंजेक्शन देने होते हैं, एक जीरो डोज जो कि जिस दिन भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो जीरो हो जाती है, फिर तीसरे दिन, फिर सातवें दिन, फिर चौदहवें दिन, फिर 28वें दिन। ये इंट्रामस्कुलर है, लेकिन पूरे इंडिया में अब गवर्नमेंट इंट्रा डर्मल दे रही है। इंट्रा डर्मल में डोज कम लगती है और आपको सुरक्षा अच्छी मिलती है, तो उसी डोज में काफी लोगों को कवर कर सकते हैं। तो इसमें इंट्रा डर्मल हम फर्स्ट डे देते हैं, थर्ड डे देते हैं, सेवंथ डे देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, खाने के लिए अक्सर बोला गया है कि अगर जब ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो कुछ मांस जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए, अल्कोहल नहीं लें, इसमें कितनी सच्चाई और
0: बिल्कुल
1: कितना जरूरी है?
0: आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमें खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिल्कुल संतुलित आहार लीजिए, कोई स्पेशल चीज नहीं लीजिए, लेकिन जो मना है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, अल्कोहल ना लें, बहुत किसी भी चीज का आपका ड्रग का सेवन कर रहे हैं वो ना लें। ये भी देखा गया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर ले रहे हैं तो उसको उस वक्त ना लें। तो जो चीजें हमारे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को कम करेंगी हमें चाहिए कि नहीं करें, और संतुलित आहार ही लेना होता है, इसमें कोई स्पेशल आपको न्यूट्रिशन खाने की जरूरत नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मेरे मन में जहन में बार बार प्रश्न आ रहा है कि कहां हम सतर्क रहें कि कुत्ता या बिल्ली या जानवर हमें काटे ही ना, क्या हम कभी कभी गलत हो जाते हैं?
0: बिल्कुल, जैसे पेड़ होता है उसकी तरह आप खड़े हो जाएं, बिल्कुल मूव ना करें। अगर आप कुत्ते की वजह से या बिल्ली की वजह से गिर गए तो भी ये रहे कि आप उठने की कोशिश ना करें, आप बिल्कुल गिरे रहें। आप ये ध्यान रहे कि कभी भी कुत्ता या बिल्ली जब वो सो रहा हो या खा रहा हो आप बिल्कुल उसको ना टच करें, ये बहुत ही खतरनाक होता है कि वो उसी वक्त में ज्यादा अपने आप को इरिटेट समझता है और वो अटैक करता है। जो हमारे अपने पालतू कुत्ते भी हैं उसमें भी छोटे बच्चे हैं, उनको बिल्कुल अनसुपरवाइज ना छोड़ें, कोशिश ना करें कि उस पर ज्यादा आप प्यार उमड़े, बिकॉज वो जानवर है, जानवर डेफिनेटली वो हमसे भी डरता है, उसी डर में ही वो अपने आप को कोशिश करता है कि बचाने की वजह से वो काट लेता है।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: जानवरों के काटने पर उपचार, अभी आप डॉक्टर जुगल किशोर, डायरेक्टर एवं प्रोफेसर, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी नीलू सूरी। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती आकाश।

0: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
1: साथियों, पर्यावरण में बदलाव आज केवल वैज्ञानिकों या पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता का ही विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा सीधा असर आम आदमी के जीवन पर भी दिखाई दे रहा है। बढ़ता तापमान, वायु जल प्रदूषण, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, जंगलों का कम होना, बदलती जीवन शैली, ये सभी हमारे स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, जल संसाधन और दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे समय में लोगों को जागरूक करने और सही जानकारी उपलब्ध कराने में मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जो सिटी है, जो शहर है और जो गांव है, कि उन दोनों जगहों पर अलग अलग असर होते हैं। इन सब का असर किस प्रकार होता है, मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, बदलते पर्यावरण को सुधारने के लिए उसको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको अपने क्लाइमेट को अच्छी तरह से रख सकते हैं, बदलते पर्यावरण में हम अपने को किस प्रकार से सस्टेन कर सकते हैं, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में है क्लाइमेट एंड बिल्ट एनवायरमेंट एक्सपर्ट मीताक्षी सिरसी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: मीताक्षी जी। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि जो बदलते पर्यावरण है उसका आम आदमी के जीवन पर किस प्रकार का असर हो रहा है।
2: हमारे बदलते पर्यावरण का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है आम आदमी की जिंदगी में, वो है कि क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है वो स्पेशली भारत में हीट और वाटर, पानी का बहुत ही इम्पैक्ट है। जो हीट जो हम बोल रहे हैं उसको हीट स्ट्रेस और हीट रिस्क बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज से जो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो हमारे टेम्परेचर्स जो तापमान जो है बढ़ रहे हैं, एंड उसके वजह से ह्यूमन हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है।
1: ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने लगा है, तो किस प्रकार का इम्पैक्ट होने लगा है?
2: सो हीट के वजह से हमारे बॉडीज को बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट होती है। जो अगर हम हीट के टेम्परेचर्स, जो हमारे तापमान होती है, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर और दूसरा होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। हमारी बॉडी में अपने आप को मैनेज करने की क्षमता है। तो अगर हम हॉट हो जाए तो हमारे पोर्स से पानी निकलता है और जो पानी है वो ड्राई होता है बिकॉज एयर है बाहर, और उससे हमारा बॉडी कूल होता है। जब हीट होता है एनवायरनमेंट में और जब ज्यादा, जो मैं वेट बल्ब टेम्परेचर की बात कर रही थी, अगर वो होता है तो हमारे एयर में बहुत ज्यादा पानी होता है। जब पानी ज्यादा होता है तो हम, हमारी बॉडी की क्षमता जो है अपने आप को कूल करने की, वो कम हो जाती है और उससे हमारे ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे जिनको कोई डिजीजेस या कोई प्रॉब्लम्स हो, और ओल्डर जनरेशन जो है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जो ऑलरेडी जिनका रिस्क फैक्टर हो। और ऑल्सो ये भी है कि हमारे जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी इम्पैक्ट होती है।
1: जी मीताक्षी जी, जब भी हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बदलते पर्यावरण की बात करते हैं, तो हम लोग हीट की बात करते हैं, और जब हीट की बात करते हैं तो हम शहर की ओर देखते हैं कि शहर में कुछ ज्यादा ही क्लाइमेट चेंज हो जाता है और उसका असर होता है। और जब हम शहर की जब बात करते हैं तो हमें दौड़ती भागती गाड़ियां नजर आती हैं ज्यादातर, और साथ साथ में कॉन्क्रीट के जंगल नजर आते हैं। आप इसमें भी एक्सपर्टाइज हैं और आपने बिल्डिंग क्लाइमेट चेंज के विषय में काफी स्टडी किया है, काफी अध्ययन किया है, तो ये आम जनजीवन यानी कि बिल्डिंग जो है किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करता है, ये बताएं।
2: सो बिल्डिंग्स का इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज पे वो टू फोल्ड होता है। वो एक चीज है कि हम जब बिल्डिंग बनाते हैं उसका इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरमेंट पे, और बिल्डिंग्स बनते हैं लोगों के लिए, तो बिल्डिंग का इम्पैक्ट होता है लोगों पे, तो वो इसीलिए मैं उसको टू फोल्ड बोलती हूँ। हम जब बिल्डिंग बनाते हैं, हम मटेरियल्स यूज करते हैं, हम जो जमीन है उस पे कॉन्क्रीट डालते हैं, वो इम्पैक्ट जो होता है अपने एनवायरमेंट पे वो है कि पानी सीप नहीं हो सकता है ग्राउंड के अंदर, या हम कॉन्क्रीट यूज करते हैं तो उस

0: उसका कॉन्क्रीट बनाने में, सीमेंट बनाने में उसका कार्बन इम्पैक्ट होता है, या हम जो भी अपने बिल्डिंग्स में डालते हैं, उन सब चीजों का एक इम्पैक्ट होता है जो ओवरऑल वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के टूवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है। दूसरी बात जो है, जो बिल्डिंग्स हमको, हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स के लिए नहीं बनाई जाती, बिल्डिंग्स लोगों के लिए बनाई जाती,
1: इंसान के लिए,
0: इंसान के लिए बनाई जाती है। तो इंसान को सपोर्ट करने की जरूरत होती है वो बिल्डिंग्स। तो वो जो एक चीज है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी चाहिए कि हमारी बिल्डिंग्स हम जो बना रहे हैं वो कैसे इंसानों को सपोर्ट कर रहे
1: हैं। ये तो बात हुई मैम कि इंसानों को किस प्रकार से बिल्डिंग सपोर्ट करे, तो बिल्डिंग को किस प्रकार से हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं।
0: बिल्डिंग को हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऐसे बनाएंगे कि जो हम बिल्डिंग एक जगह में डाल रहे हो, जो उसका पर्यावरण उसके अराउंड है और ओवरऑल वर्ल्ड पे जो इम्पैक्ट होता है उसको हम कैलकुलेट करके समझते हैं, और बहुत सारे ट्रेडिशनल विजडम भी है जिसके हिसाब से हम बिल्ड कर सकते हैं कि हमारा पानी, अगर बारिश पड़े तो हमारा पानी फ्लो ना हो जाए, हमारे वाटर टेबल के अंदर जाए, वो सोक करके वाटर टेबल के अंदर जाए कि हमें पानी का लॉस ना हो। हम अगर जितना ज्यादा सीमेंट वगैरह डालते हैं उससे हीट बढ़ता है, क्योंकि हीट उसको, सीमेंट और सर्टन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं वो हीट को पकड़ के रखता है,
1: अच्छा अब्सॉर्ब कर लेता है,
0: अब्सॉर्ब कर लेता है, एंड उसको रिलीज करने पे जो हमारा नेचुरल साइकिल जो होते हैं कि दिन में हीट आता है और रात में हीट कम होता है, तो अब जब हमारे हीट वेव्स होते हैं तो जब दिन में हीट आता है वो हीट को अगर हमारी बिल्डिंग्स ने पकड़ के रखी हो, और रात में जब टाइम है, कूलिंग का टाइम है नेचुरल साइकिल में, अगर हमारे बिल्डिंग्स और हमारी सिटीज हीट निकाले बाहर, तो कंटिन्यूअस हीट के हिसाब से वो ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। जो हमारी बिल्डिंग्स ना कूल हो तो हम भी कूल ना होंगे।
1: तो ये किस प्रकार से इम्पैक्ट हो सकता है, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं अपने हेल्थ पे?
0: बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट्स होते हैं, बट मेनली हीट स्ट्रेस जो है हमारे सारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करती है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को इम्पैक्ट करती है, हमारे काम करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर लोग ओपन एरिया में काम कर रहे हो, जो हीट जब बहुत ज्यादा हो जाता है, ट्रीज ना हो, पास में कोई ग्रीन एरिया ना हो, तो और बहुत सारा कॉन्क्रीट हो, रोड हो, सब कुछ हो, तो वो हीट हमें डायरेक्टली बॉडी पे इम्पैक्ट करती है और हमें डिजीजेस या हमें इल कर सकती है हमें।
1: तो हम ये देखते हैं कि जैसे अभी आपने बात की कि जो शहर है, जो अर्बन एरिया है, वहां पर बिल्डिंग्स की मात्रा, यानी कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, एक दूसरे से सटे हुए बिल्डिंग्स हैं, तो वहां पर एनवायरमेंट का असर ज्यादा हो सकता है। जबकि क्या हम कह सकते हैं कि क्योंकि गांव में जो बिल्डिंग्स हैं या तो फिर नहीं है, या कम है, या छोटे हैं, तो वहां पर असर कुछ अलग ही हो सकता है?
0: जी हाँ, तो एक चीज ये है कि हमारे गांव और एरियाज में जहां पे ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनी है, एक बात तो ये है कि ट्रेडिशनल हमारे जो बिल्डिंग मेथड्स थे वो बहुत कम यूज हो रहे हैं अभी। तो हमारे ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल्स में, जैसे वो बड़ा वॉल हो या कोर्टयार्ड हो या विंडो के शेड्स हो या बहुत सारे पेड़ पौधे हो, तो वो अभी कम हो रहे हैं। वो जब वैसे डिजाइन होते थे तो अपने बिल्डिंग को कूल रखते थे।
1: यानी कि हम पुराने दौर में अगर लौट के जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि पुराने दौर में जो मिट्टी की दीवारें होती थी और ऊपर जो खपरेल होते थे, अब वो कुछ बदलने लगा है, जिसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज भी बहुत हुआ है।
0: जी, एक तरफ से क्लाइमेट चेंज है जो हीट बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ से हम ऐसे मटेरियल्स से बिल्डिंग्स बना रहे हैं हमारे गांव में भी, जो वो इम्पैक्ट को कम नहीं कर पा रही है। जैसे हम मिट्टी के घर बनाए या खपरेल की रूफ बनाए, तो हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, बट वो हम बना नहीं रहे हैं। और हमारा जो सोसाइटी है, जो चेंज हुआ है, अभी ऐसा नहीं है कि हम सिटीज के अंदर भी मिट्टी के घर बना सकेंगे। मिट्टी के तो 20 फ्लोर के बिल्डिंग्स नहीं बन सकते। तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या है जो टेक्नोलॉजी, जो डिजाइन की बातें हैं, जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं पहले, वो अडॉप्ट करके हम उसको सिटीज में हो या रूरल एरिया में हो यूज करें। क्योंकि अभी हमारे जो रिस्क है, जो हमारे फ्लड्स हो रहे हैं, हमारे बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हमारे आ रहे हैं, जहाँ पे ग्लेशियर्स इम्पैक्ट हो जाए या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे लैंड को बहुत डिस्टर्ब
1: कर रहे हैं। जी,
0: जब ट्रेडिशनल वेज में हम बिल्ड करें तो लैंड डिस्टर्ब नहीं होता है उतना।
1: जी, तो अक्सर शहरों में देखा जाता है कि हर घर में अब एसी लग गया है, एसी की वजह से हीट जनरेट होने लगा है, और साथ साथ में एनवायरमेंट में जो चेंजेस आए हुए हैं, चाहे तो प्रदूषण की वजह से, यानी कि जल प्रदूषण की बात हो, चाहे तो वायु प्रदूषण की बात हो, चाहे तो मिट्टी प्रदूषण की बात ही क्यों ना हो, इससे काफी कुछ बदला हुआ है। तो इसको आप किस प्रकार से देखती हैं, इसमें इसको रिड्यूस करने के क्या उपाय हो सकते हैं?
0: हर घर में एसी इसीलिए लग रहे हैं आज क्योंकि हीट जो हमारी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बढ़ रही है, वो उसको हम 20 साल पहले बेयर कर सकते थे, अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाहर का हीट और हमारा ह्यूमिडिटी, ये सब बहुत चेंज

0: हो रहे हैं हमारे पर्यावरण में जो हमारे इमीडिएट कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात यह है कि एनर्जी जो यूज होती है बिल्डिंग्स में एसी वगैरह डालने के लिए, तो हमारा जो एनर्जी का डिमांड है इंडिया में, क्योंकि अभी इंडिया स्टिल बढ़ रहा है, अभी हम सिटीज बना रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स और सिटीज बनाने की जरूरत भी है हमें। तो ये कहा जाता है कि जितने भी बिल्डिंग्स 2050 में रहेंगे इंडिया में वो तो अभी बने ही नहीं है अभी। तो हम अगर सही दौर से शुरुआत करें बिल्डिंग्स बनाने में कि जो इम्पैक्ट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाएं और जो उनका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कम हो, तो हम हीट को कम ट्रैप करेंगे, तो हम ऐसे डिजाइन बनाएं कि बिल्डिंग को जरूरत ही कम हो एसी यूज करने की। तो हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसे बिल्डिंग्स बनाएं कि बिना एसी के भी वो कूल रह सके, जब एसी की जरूरत हो तो एनर्जी जो एसी यूज करता है वो कम यूज करे, क्योंकि हम जो एनर्जी बनाते हैं वो हमारे हीट जनरेट कहीं और भी करता है और कार्बन जनरेट कहीं और भी करता है जो इम्पैक्ट होता है उसका क्लाइमेट चेंज।
1: तो बिल्डिंग्स पे काफी ध्यान भी दे रहे हैं, हीट कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसका असर आगे चल करके हो सकता है, इसके विषय में लोग काफी जागरूक हो भी गए हैं। तो आजकल देखा जा रहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए एक मीडिया की एक बड़ी भूमिका होती है, और इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका में हम किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर सकते हैं?
0: जब इंजीनियर आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स और सिटीज बनाते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स साइंस है जो हम बहुत सालों के लिए पढ़ते हैं और समझ के उसको अप्लाई करते हैं,
1: क्योंकि वहां पर जो जरूरत है, जो सुविधाएं है, उसी के अनुसार कोई बिल्डिंग बनाता है या फिर जो सुविधाएं लेता है, तो उसके अनुसार से तो हो नहीं सकता है हर चीज। अगर हम कहना चाहें कि सुविधा के अनुसार ही हम कर लें या फिर सुविधा की जगह पर जो भी हमें फैसिलिटी मिल रही है उस फैसिलिटी का हम उपयोग कर रहे हैं, तो पता चलता है कि क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, क्या करना चाहिए?
0: सुविधा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, बट हमें उसकी वजह से हमें एनवायरमेंट को इम्पैक्ट ना करे वैसे स्टेप्स हमको लेने चाहिए। तो पहली चीज तो है हमें अच्छे रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि बिल्डिंग्स कैसे डिजाइन होने चाहिए, कि कूलिंग एक्शन प्लान्स होती है सिटीज की वो बनानी चाहिए सब सिटीज में, लोगों के जो चॉइसेस हैं उनको सिंपल चॉइसेस दे, कैसे वेंटिलेशन ज्यादा करना हो, कैसे हमारी बिल्डिंग्स को शेड करना हो, या हमारे रिफ्लेक्टिव पेंट्स होते हैं जो हीट को कम जाने देती है बिल्डिंग्स के अंदर, वो करना हो, वो ज्यादा एक्सपेंसिव या ऐसा कुछ नहीं होती है, वो करे तो हमारी एसी की भी यूज कम हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज हो जाए।
1: लेकिन मिताक्षी जी, यहाँ पर देखा गया है कि शहर में घर तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर एक दूसरे से ना जुड़े तो बिल्डिंग्स जो है दूर दूर बनेंगे तो लोगों को कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब यही बात अगर हम गांव में करते हैं तो गांव में बिल्डिंग्स या घर जो है दूर दूर बने हुए हैं, वहां पर मटेरियल्स कुछ अलग टाइप के यूज कर रहे हैं, वहां के एनवायरमेंट अच्छी है, वहां की मिट्टी अच्छी है, वहां का जो पानी है वो अच्छा है, लेकिन शहर में ऐसी सुविधा नहीं है। सब चाहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जगह में अपनी बिल्डिंग्स बनाए, तो वहां पर वेंटिलेशन की जो सुविधा होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है।
0: वेंटिलेशन जो है वो हमारे एयर मूवमेंट के लिए होती है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी को भी कूल करने के लिए, एयर को मूव करिए, पर्यावरण में अगर कोई प्रदूषण हो उसको निकाल सकती है। यस, हमारे सिटी में प्रदूषण हो तो हमारे घर के अंदर भी आएगी, तो इसीलिए हमारे विंडोज वगैरह बंद कर लेते हैं। तो वेंटिलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डिजाइन की।
1: हम देखते हैं कि घरों के बीच में, बिल्डिंग्स के बीच छोटी छोटी गलियां हैं जिसमें कि वेंटिलेशन यानी कि हवा का जो बहाव है, जो निकलना है या फिर आना है, वो नहीं हो पाता है।
0: अब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो छोटी गलियां अच्छी होती है हीट में, हम डिजाइन अगर ऐसा करें कि तब बिल्डिंग्स अपने आप को शेड करती है, बट हमें छोटी गलियां अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमें कार चलानी होती है। तो सिटीज को हमें ऐसे हिसाब से डिजाइन करना होता है, उसको जैसे हम अप्रोच करते हैं डिजाइन, वो ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए। अभी हमारे सिटीज कार सेंट्रिक हो गए हैं, हमें ह्यूमन सेंट्रिक सिटीज बनानी चाहिए, ह्यूमंस को सपोर्ट करने के लिए सिटीज बनानी चाहिए। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जानी हो तो चलने के लिए जगह चाहिए, और चलना इम्पोर्टेंट है लोगों के हेल्थ के लिए। तो अगर हमारे पास चलने के लिए जगह नहीं हो और कार खरीदनी हो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए, तो सब लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि हमें ह्यूमन सेंट्रिक सिटीज के टूवर्ड्स जाना हो। बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और आइडियाज हैं जो साइंटिस्ट और थिंकर्स ने सोचे है कि ऐसे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, वो सॉल्यूशंस को हमको इम्प्लीमेंट करना होता है। उसमें हमें रूल्स की जरूरत होती है, लोगों के सपोर्ट की जरूरत होती है, सबको साथ में आके डिसाइड करना होता है कि हम हमारे पर्यावरण को बेटर बनाएंगे।
1: मिताक्षी जी, मीडिया इसमें किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं, किस प्रकार का रोल अदा कर सकता है?
0: जो आम आदमी होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो समझे कि क्या है जो सस्टेनेबल होता है और जो हम चॉइसेस कर रहे हैं जो ना ही तो बहुत सस्टेनेबल हो। जो कम्युनिटीज हैं उनका होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबको सपोर्ट करे, तो कूल सिटीज में कूल एरियाज करें, या हमारे लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि समझे कि किस कम्युनिटीज को कूल एरियाज की जरूरत हो, किसको इम्पैक्ट होता है, हमारे रूल बनाने वालों की

0: रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम समझे कि हमारे सिटीज में कैसे रूल्स होने चाहिए, बिल्डिंग के हिसाब से कितना ओपन स्पेस होना चाहिए,
1: जी
0: कितना ग्रीन स्पेस होना चाहिए. तो
1: जी
0: सबका एक डिफरेंट रोल होता है. साइंटिस्ट का ये रोल होता है कि समझे कैसे बेटर मटेरियल्स बनाए, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं
1: जी
0: उसको,
1: जी
0: जो हम मटेरियल्स, जो रिसोर्सेस हमारे अर्थ में है उसको ना ज्यादा यूज करें, जितना कि अवेलेबल है जो हमारे अर्थ को सस्टेन करेगा उतना ही यूज करें.
1: तो साथियों, मीडिया यदि सही जानकारी को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचा दे तो पर्यावरण समस्याओं के साथ साथ उनके व्यवहारिक समाधान भी सामने रखे तो वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी जन जागरूकता का माध्यम बन सकता है। मिताक्षी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतना कीमती वक्त दिया। आपने एक बिल्डिंग किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को प्रभावित कर सकता है, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, इसके विषय में आपने बहुत सारी जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है. प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा.
3: धरती आकाश, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक.
4: इंजो देलीस दुरुदो सलाम बार हिनंदगा ने अजीज मरना वाइये सुबह ये माँ दर सात नो वासी दे गई हिन बराबर बा सात हफ्तों सी दे गई ये तेहरान इला सात याद हिन बराबर बा सात नौ तेहरान पक्ष में शवाद इनक बख्शे फारसी एवर उन मर्दी आकाशवाणी मरनामा ये सुबह का ही ये खुदरा दर मौज कूदा दर रदीफा ये पाँच हजार एक सौ दो सी किलो और पक्ष में कुनद बरनामे ये सुबह आइए इमरूज माँ इबारत आजिया कहंगे हिंदी अखबार हिंदो जहाँ तराना फारसी तफसीर रूस गुफ्तार इमरूज बरनामे ये स्पॉटलाइट यक तराना फिल्मी गुफ्तार मखसूसी तराने आइए यक फिल्म हिंदी अखबार जहाँ व दराखिर खुलासा ये अखबार इंजो दहली चंदगा नजीर बरनामा सुबह आहिरा भाई कहंगे हिंदी शुरू में कुनी

كذلك نجزي الظالمين.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of 81st United Nations General Assembly in New York today. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar

0: घर आंगन। नमस्कार, आज की घर आंगन कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त अमित कमाल।
1: और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजुला। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम एम 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
0: मंजुला, कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो गुजर तो जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अमित। और कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कभी माँ का खाना, कभी पापा की डांट, कभी भाई बहन के साथ की गई शरारतें, और कभी परिवार के साथ बिताई गई वो शामें जब किसी महंगे सामान का नहीं बस अपनों का साथ की जरूरत होती थी।
0: हाँ मंजुला, आज हम भले ही अपने काम में व्यस्त रहते हो, मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में खोए रहते हो, लेकिन दिल के किसी कोने में वो पुराने दिन आज भी जिंदा है। याद है जब घर में मेहमान आते थे तो पूरा घर जैसे खुशियों से भर जाता था। माँ रसोई में कुछ खास बनाने लगती थी और बच्चे इधर उधर भागते थे और बड़े बुजुर्ग अपनी पुरानी बातें सुनाते थे।
1: और सही कहा अमित, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी हम सभी को कभी कभी रुक कर उन छोटी छोटी खुशियों को याद करना चाहिए जो हमारे जीवन को खास बनाती। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे यादों की उसी खूबसूरत दुनिया में जहां खुशियां छोटी थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था। तो अमित, आज का सवाल सेगमेंट में हम अपने श्रोताओं से क्या पूछने वाले हैं?
0: मंजुला, आज का सवाल है, और शायद इसे सुनकर हमारे श्रोताओं को अपने घर की कोई पुरानी याद जरूर आ जाएगी। का सवाल है कि आपकी अपने माता पिता से जुड़ी बचपन की कौन सी याद है जो आपको अभी तक याद है। हमें बताइए अपनी वो प्यारी सी याद, अपने संदेश भेजिए हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: जी हाँ दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा आपकी यादों का, आपके संदेशों का और उन खूबसूरत किस्सों का जिन्हें आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी छोटी सी याद किसी दूसरे श्रोता के चेहरे पर मुस्कान ले आए।

0: सुजाता फिल्म से ये गीत आपने सुना गीता दत्त और आशा जी की आवाज में। दोस्तों घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और घर आंगन कार्यक्रम में हम आपके लिए एक सेगमेंट लेकर आते हैं डीज ऑफ द डे की और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन जहां होती है आपके घर परिवार स्वास्थ्य और समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है विश्व गर्भ निरोध दिवस के बारे में क्योंकि आज यही दिवस है।
1: बिल्कुल अमित, विश्व गर्भ निरोध दिवस हर वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भ निरोध और परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अपने प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय लेने के लिए सही जानकारी उपलब्ध कराना है।
0: मंजुला, अनियोजित गर्भधारण को रोकने में सहायता मिलती है अगर व्यक्ति जागरूक हो जाते हैं और इसकी सही जानकारी होने पर गर्भावस्था के बीच पर्याप्त अंतर रखने में महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार की तैयारी को ध्यान में रखा जा सकता है। और आज एक और डे है मंजुला, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
1: बिल्कुल, और जब हम परमाणु हथियारों की बात करते हैं तो दिल कांप जाता है। साल 1945 का वो अगस्त का महीना हिरोशिमा और नागासाकी पल भर में सब कुछ राख हो गया। आज का दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को तोहफे में तबाही का डर देकर जाना चाहते हैं।
0: इस दिवस का जो उद्देश्य साफ है मंजुला, दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे से बचाना। आज दुनिया भर में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। अगर कभी इनका इस्तेमाल हुआ तो विजेता कोई नहीं होगा, हार सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की होगी।
1: बिल्कुल सही कहा, हथियार कभी शांति नहीं ला सकते, वो सिर्फ अस्थाई डर पैदा करते हैं। वैसे भी अमित, हमारे देश की नीति ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित है।
0: और मंजुला, शांति तो भरोसे से आती है, बातचीत से आती है। सोचिए जो अरबों खरबों रुपए इन विनाशकारी हथियारों को बनाने और इन्हें संभालने में खर्च होते हैं, अगर वही पैसा दुनिया से गरीबी मिटाने, बच्चों को शिक्षा देने और बीमारियों के इलाज में लगाया जाए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी।

0: अभी हम सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत हरिहरन की आवाज में फिल्म लम्हे से। और सवाल एक बार फिर से बता दूं आज का कि आपकी अपने माता पिता से जुड़ी कौन सी याद है जो आपको अभी तक याद है। हमारा मेल आईडी fmgolgea@gmail.com।
1: तो दोस्तों हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। और जैसा कि मंजुला तुम जानती हो, घर आंगन कार्यक्रम में हम एक सफलता की कहानी लेकर आते हैं और आज हम एक ऐसी ही महिला की बात कर रहे हैं जिनके लिए कभी खेती परिवार के लिए सिर्फ पेट भरने का साधन थी। खेत में दिन रात मेहनत करने के बाद भी हाथ में उनके कुछ नहीं बचता था।
0: बिल्कुल अमित, आज हम बात कर रहे हैं कटिहार जिले के बरारी प्रखंड की सुजापुर पंचायत की रहने वाली रीना देवी की, जिन्होंने अपने काम से सभी को प्रेरणा दी है। पहले रीना देवी खेतों में दिन रात मेहनत करती पर सफलता ना मिलती, लेकिन आज वही रीना देवी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ गाँव की दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने की राह दिखा रही है।
1: रीना देवी की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत सन 2014 में हुई। गांव में सीआरपी दीदी के माध्यम से उन्हें जीविका के बारे में जानकारी मिली। परिवार की शुरुआती तंगी के बावजूद उन्होंने मां दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का फैसला किया। नियमित बैठकों में शामिल होकर उन्होंने बचत, ऋण और सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की। समूह से जुड़ने के साथ उनके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, रीना देवी को जीविका समूह से जुड़ने के बाद बचत और ऋण की सुविधा मिली और अपने फैसले खुद लेने का हौसला आया और उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने का मन बनाया। शुरुआत में उन्हें इस नई खेती करने का डर भी लगा, लेकिन आज उसी खेती ने उनकी जिंदगी बदल दी है।
1: मंजुला, शुरुआती दो सालों तक कोई आमदनी नहीं हुई। पौधों की देखभाल, मेहनत और इंतजार ही उनकी पूंजी थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अगले साल तीसरे वर्ष में पहली बार करीब 4 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन हुआ और बाजार में इसे बेचने पर अच्छी कीमत मिली। इसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, वो बढ़ने लगा। इससे उन्हें सालाना करीब 7 से 8 लाख रुपए की आमदनी हो रही है।
0: और अमित, नवंबर 2023 में उन्होंने समूह से 2 लाख रुपए ऋण लेकर 10 बीघा जमीन बटाई पर ली और मक्का की खेती भी शुरू की। क्या बात है, बेहतर तकनीक और मेहनत से करीब 400 क्विंटल मक्का का उत्पादन हुआ। ड्रैगन फ्रूट और मक्का से उनकी वार्षिक आय अब करीब 8 से 12 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है।
1: और दोस्तों, रीना देवी की सफलता हम सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है कि हमें नित नया कुछ करते रहना चाहिए, कभी न कभी सफलता जरूर मिलती है।

0: स्वतन फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में।
1: और दोस्तों, भारत को समझना हो तो सिर्फ उसके किले और महलों को मत देखिए, उसकी पुरानी बाजारों की गलियों में चलकर देखिए। वहां इतिहास आज भी सांस लेता है। त्योहारों का मौसम हो, अमित और बाजारों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भारत के पुराने बाजार ये सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, ये हमारी सभ्यता के खुले हुए पन्ने हैं, जहाँ सदियों पुरानी कारीगरी, खान पान, पहनावा और त्योहारों की परंपराएं आज भी दिखाई देती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही खूबसूरत यात्रा पर निकलते हैं।
0: बिल्कुल चलते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के चांदनी चौक की। मुगल दौर में विकसित हुआ ये इलाका कभी व्यापार का बड़ा केंद्र था, आज भी इसकी गलियों में कपड़ों, आभूषणों, मसालों और मिठाइयों की दुनिया बसी है। त्योहारों के दिनों में इसकी रौनक जैसे कई पीढ़ियों की यादों को एक साथ रोशन कर देती है। अब चलते हैं वाराणसी। यहाँ की जो गलियां हैं मंजुला, अपने पुराने बाजार बनारसी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ठटेरी बाजार में पीतल और तांबे के बर्तनों की चमक हो या चौक की गलियों में साड़ियों और पारंपरिक सामान की दुनिया, यहाँ खरीदारी करते हुए लगता है जैसे शहर की संस्कृति को छू रहे हो।
1: क्या बात है। और राजस्थान की ओर बढ़ें तो जयपुर का जौहरी बाजार सामने आता है। गुलाबी शहर की पहचान बने इस बाजार में आभूषण, पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प की चमक दिखाई देती है। त्योहारों में सजी दुकानों के बीच चलना अपने आप में एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव। और फिर आता है अहमदाबाद का मानिक चौक। दिन में आभूषण और कपड़ों का

0: व्यापार और रात में खाने पीने की चहल पहल। हैदराबाद का चार मीनार को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी बाजार कम दिलचस्प नहीं है। चार मीनार के पास जो ये बसा हुआ है ऐतिहासिक बाजार अपनी रंगीन चूड़ियों और पारंपरिक आभूषणों के लिए जाना जाता है। त्योहारों और शादियों के मौसम में इसकी चमक देखते ही बनती है।
1: और चमक देखते ही बनती है दोस्तों। अब चलते हैं कोलकाता की ओर, और कोलकाता का बड़ा बाजार भी शहर के पुराने व्यापारिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण पहचान है। संकरी गलियां, लगातार चलती खरीद फरोख्त और अलग अलग समुदायों की व्यापारिक परंपराएं, ये इलाका आज भी महानगर की व्यवसायिक धड़कन का हिस्सा है। और मुंबई के
0: जो मार्केट्स
1: हैं, ये ऐतिहासिक बाजार कभी मुंबई के शुरुआती बड़े थोक और खुदरा बाजारों में शामिल थे। आज भी इसकी पुरानी इमारत और आसपास की चहल पहल शहर के बदलते इतिहास की कहानी कहती है मंजुला।
0: तो सोचिए दोस्तों, सदियां बदल गई, खरीदारी के तरीके बदल गए, अब हमारे पास ऑनलाइन बाजार है, घर बैठे सामान पहुंचता है। लेकिन इन पुराने बाजारों की खासियत ही कुछ और है। यहाँ सामान के साथ बातचीत मिलती है, दुकानों के साथ किस्से मिलते हैं, खुशबुओं के साथ यादें मिलती हैं, और हर त्योहार के साथ पुरानी परंपराएं फिर से जीवंत हो जाती। शायद इसलिए भारतीय बाजार कभी सिर्फ बाजार नहीं रहे, ये शहरों की याददाश्त है, कारीगरों की पहचान है और त्योहारों की वो रौनक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है।
1: तो इस फेस्टिव सीजन में जब भी किसी पुराने बाजार की गली से गुजरे, जरा ठहरिएगा, क्योंकि हो सकता है उस दुकान पर रखी कोई चीज, छोटी सी चीज, सिर्फ सामान ना हो, वो भारत की किसी पुरानी कहानी का एक टुकड़ा हो। मंजुला।

0: और मेल्स आने शुरू हो गए हैं। नवीन भाटिया जी लिखते हैं, जो सवाल हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने लिखा है कि 10th क्लास में था तब मम्मी डैडी एग्जीबिशन में ले गए थे, आज भी याद है, काफी मजे आए थे। और दूसरा मेल कौन सा है?
1: दूसरा मेल हमारे पास आया है ख्याला से, उमेश कुमार जी का। ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम जी, मुझे अपने पिताजी के वो दिन याद आते हैं जब वो हमारे लिए दशहरी आम

मेरा साया फिल्म से ये गीत आपने सुना आशा जी की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

0: किया करते थे, ये इन्होंने लिखा है।
1: और डॉक्टर राजेश्वर राव जी ने लिखा है कि उनको याद आता है वो पल जब वो बाहर से लोग आते थे और उनकी मम्मा इनके लिए फूड प्रिपेयर कर रखती थी, और जो इन्होंने सिंगल बाइट के बारे में लिखा है कि शी वुड नॉट ईट अ सिंगल बाइट अंटिल वी हैव ऑल फिनिश्ड आवर मील, मतलब जब तक हम पूरा खाना नहीं खाते थे वो नहीं खाती थी। बहुत ही खूबसूरत मेल है आपका। और अगला
0: मेल हमारे पास सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी जी का आया है। इन्होंने सिर्फ लिखा है कि आदरणीय मंजुला जी और अमित जी, सादर प्रणाम, और ये शायद सवाल समझ नहीं पाए हैं, तो बस इन्होंने ये लिखा है कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके मेल्स का। आगे भी इसी तरह से अपने प्यार बरसाते रहिए और मेल्स लिखते रहिए।

0: आलिया फिल्म से ये गीत आपने सुना आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में, और आप क्या बात करने वाली हो मंजुला।
1: अमित, कभी सोचा है कि एक कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं होता है बल्कि पूरी कहानी कैसे बन सकता है? हमारी भारतीय कला परंपरा में कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। कलमकारी, कपड़ों पर बनी बारीक आकृतियां, पेड़ पौधे फूल पशु पक्षी देवी देवताओं की कथाएं और हमारी संस्कृति से जुड़े प्रसंग, ये सब मिलकर कलमकारी को सिर्फ एक वस्त्र कला नहीं बल्कि चलते फिरते इतिहास का रूप दे देते हैं।
0: कहा जाता है मंजुला कि कलमकारी शब्द बना है कलम और कारी से, यानी कलम से की गई कारीगरी। इस कला में कपड़े पर चित्र और डिजाइन बनाने के लिए हाथ से काम किया जाता है और पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। कलमकारी की एक खास शैली है मछलीपट्टनम शैली, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम से है। कभी ये इलाका समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। यहाँ तैयार किए गए खूबसूरत ब्लॉक प्रिंटेड कपड़े अपनी बारीक कारीगरी और सुंदर डिजाइनों के कारण दूर दूर तक पहचाने जाने लगे थे।
1: देखिए दोस्तों, अमित ने पूरी कहानी बता दी। और सोचिए, सदियों पहले जब आज जैसी डिजिटल दुनिया नहीं थी, तब भारतीय कारीगरों के हाथों से बनी कला समुद्री रास्तों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही थी। और यही तो है हमारी हस्तकला की खूबसूरती। हमारी मिट्टी से निकली कला ने दुनिया को प्रभावित किया और भारतीय शिल्पकारों की मेहनत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। और आज भी कई कारीगर पारंपरिक तकनीकों, प्राकृतिक रंगों और पीढ़ियों से चली आ रही कला को संजोए हुए हैं। हर मोटिफ के पीछे एक कहानी और हर रंग के पीछे एक परंपरा।
0: हर रंग के पीछे एक परंपरा, लेकिन कलमकारी को समझने का सबसे खूबसूरत तरीका शायद यही है मंजुला, कि हम इसे सिर्फ संग्रहालयों यानी कि म्यूजियम्स या इतिहास की किताबों में ना देखें, इसे अपने घरों में जगह दें, अपने परिधानों में अपनाएं, अपने बच्चों को इसकी कहानियां सुनाएं
1: और कारीगरों के हाथों की इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। क्योंकि विरासत सिर्फ वो नहीं होती जिसे हम अतीत के रूप में याद करते हैं, विरासत वो होती है जिसे हम वर्तमान में जीते हैं। तो अगली बार जब किसी कलमकारी साड़ी, दुपट्टे, कुशन कवर या किसी खूबसूरत वस्त्र पर आपकी नजर पड़े, तो सिर्फ उसका रंग और डिजाइन मत देखिए, उसके पीछे जो छिपी है सदियों पुरानी कहानी को भी महसूस कीजिए।

0: धर्म कांटा फिल्म से ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में।
1: और दोस्तों, अब बात उस दबाव की जिसे शायद हम में से बहुत सी महिलाएं रोज महसूस करती है, परफेक्ट महिला बनने का दबाव। बचपन से ही हमें कई तरह के सांचे दिखाए जाते हैं, अच्छी लड़की ऐसी होती है, अच्छी पत्नी ऐसी होती है, अच्छी बहू को ऐसा करना चाहिए, अच्छी माँ को हर समय उपलब्ध रहना चाहिए, और अगर आप कामकाजी महिला हैं तो घर और दफ्तर दोनों जगह अपना 100% देना चाहिए, और अगर कभी आप थक जाएं तो लगता है जैसे हमने कुछ गलत कर दिया। सच तो ये है कि ऐसी कोई महिला है ही नहीं जो परफेक्ट है। हर महिला की अपनी परिस्थितियां हैं, अपने सपने हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी लड़ाइयां हैं। किसी दिन वो बेहद मजबूत होती है तो किसी दिन उसे किसी के कंधे की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा मंजुला, किसी दिन उसे किसी के कंधे की जरूरत होती है, और कभी वह बहुत आत्मविश्वास से भरी होती है तो कभी खुद से ही सवाल करती है, और ही तो इंसान होना है। हमें महिलाओं को परफेक्ट बनने की नहीं, अपनी फैसले लेने की आजादी चाहिए। उसे ये तय करना चाहिए कि उसके लिए सफलता का मतलब क्या है। हो सकता है किसी के लिए सफलता बड़ा पद हो, किसी के लिए अपना घर, किसी के लिए दुनिया घूमना, किसी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, और किसी के लिए बस एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो खुद से खुश हो।
1: और याद रखिए, हर भूमिका निभाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और सबसे जरूरी, आप एक अच्छी इंसान हो सकती हैं बिना परफेक्ट हुए, क्योंकि आपकी जिंदगी

0: कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हर किसी के दिए हुए पैमाने पर आपको पूरे अंक लाने हैं। और अमित एक बात हमेशा याद रखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी असली पहचान ही खो दें,
1: क्योंकि दुनिया को खुश करने के लिए जी गई जिंदगी शायद दुनिया को पसंद आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको भी पसंद आए। तो आज से खुद को एक नया वादा कीजिए, मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जीऊंगी, अपनी पसंद चुनूंगी, अपनी गलतियों से सीखूंगी और अपनी पहचान पर गर्व करूंगी।
0: थोड़ी अधूरी रहिए, थोड़ी अपनी रहिए, क्योंकि खूबसूरत वही जिंदगी है जिसमें किसी और की उम्मीदों से ज्यादा आपकी अपनी आवाज सुनाई दे।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म रजनीगंधा से।
1: दोस्तों, अक्टूबर का महीना आने वाला है, उमस वाली गर्मी अब जाने वाली है और सुबह शाम की हल्की सी गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। ये मौसम इतना शानदार होता है कि चाय की चुस्की के साथ साथ दिल करता है कि घर की बालकनी या गार्डन में थोड़ा वक्त बिताया जाए। और सच कहूं मंजुला, मुझे तो अपने हाथों से मिट्टी को छूना और उसमें नए पौधे लगाना, इससे सुकून देने वाला एहसास कोई हो ही नहीं सकता।
0: अमित शायराना हो रही है और आज आपके इसी सुकून को थोड़ा और बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगले महीने यानी अक्टूबर के महीने में आपको अपने घर में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए जो आने वाले हफ्तों में आपके घर को खुशबू और रंग दोनों से भर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फूलों के राजाओं की। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपका गार्डन किसी फूलों की नुमाइश जैसा दिखे, तो इस महीने में आप गेंदा यानी मैरीगोल्ड, पिटूनिया और गुलदाउदी के जो प्लांट्स हैं वो लगा सकते हैं। अक्टूबर इसकी नर्सरी तैयार करने या छोटे पौधे लगाने का सबसे परफेक्ट टाइम है।
1: दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अमिता, हमारे पास तो फूलों के लिए ज्यादा जगह नहीं है, तो कोई बात नहीं जनाब। अगर आपके पास सिर्फ एक छोटी सी बालकनी या खिड़की है, तो आप इसमें इस आगामी महीने में फूलों के साथ साथ ताजी सब्जियां भी उगा सकते हैं। जी हाँ, अक्टूबर में बड़े गमलों के अंदर पालक, मेथी, धनिया और हरी मिर्च बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। सोचिए मंजुला, जब आपके खुद के लगाए पौधों से तोड़ी हुई ताजी मेथी के पराठे या धनिया की चटनी बनाएंगे, तो स्वाद कितना बढ़ जाएगा।
0: तो दोस्तों, फिर देर किस बात की, इस अक्टूबर अपने घर को दीजिए एक नया ग्रीन मेकओवर।

0: ये गीत आप सुन रहे हैं अमित कुमार की आवाज में, फिल्म है तेरी कसम। और स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है कि अब इजाजत लेने का वक्त हो चला है।
1: तो उम्मीद है आज की प्रस्तुति आप सबको पसंद आई होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला
0: अमित कमल को इजाजत। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली परिवर्तन।

0: सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्प विकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता, और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea, and Black Sea. The minister said that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the UN General

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म की कथा की बात करें तो अमरनाथ एक जाने माने वकील अपने इंसाफ की समझ के लिए जाने जाते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात सोनिया से होती है। वह उनसे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें वह इंटरेस्टिंग लगती है। अमर के पिता चाहते हैं कि वह शादी कर ले और उन्हें अंजू की फ़ोटो दिखाते हैं। अंजू एक विदेशी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुकी होती है और वह इंसाफ और गरीबों की मदद करने में विश्वास करती है। वे और अमर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जल्द ही उनकी सगाई हो जाती है।

श्रोताओं, आगे की जो कहानी है वह कुछ इस तरह है कि एक रात एक लोकल मेले में जाने के बाद सोनिया पर शंकर ने हमला किया। वे भागते भागते अमर के घर चली जाती है और तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। अकेले घर में जहां सोनिया शारीरिक उत्पीड़न का शिकार हो जाती है, बाद में अमर का ज़मीर उसे कचोटता है क्योंकि वह अपनी गलती छिपाने और अंजू से सगाई करने की कोशिश करता है। अंजू को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि बात क्या है।

जब अंजू को कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, उसी बीच सोनिया को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। वह अपने बच्चे के पिता का नाम बताने से मना कर देती है और गांव वाले उसे गांव से निकाल देते हैं। शंकर किसी तरह ये पता लगा लेता है कि सोनिया के बच्चे का पिता कौन है और वह उससे बदला लेना चाहता है। आखिर में वह अपने ही हाथों मारा जाता है।

शंकर के मरने के बाद अमर पर उसकी हत्या का आरोप लगता है और उसके और सोनिया के बारे में सच्चाई सामने आ जाती है। गांव वाले आखिरकार सोनिया को मारना चाहते थे। अंजू उसका साथ देती है और उसकी रक्षा करती है। आखिर में वे ये पक्का करती है कि अमर ऑफिशियली सोनिया से शादी कर ले और अपना काम पूरा होने के बाद गांव छोड़ दे।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की जो फिल्म है वो है 1954 की फिल्म अमर। और इस कार्यक्रम में मैं आपकी होस्ट दीक्षा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, और जो हमारे पास पहला संदेश है वो है सुदर्शन शाह का। इनके साथ हैं पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्रजी शाह। ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से। नितेश देवांगन हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्ण देवांगन छत्तीसगढ़ से। दिग्दर्शन कौर हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ हैं कविता गौर। अगला जो संदेश है वो है पूनम गजनेजा का, जलालाबाद से, और इनके साथ है सुरेश गजनेजा। अजीत भावसर हमें लिखकर भेज रहे हैं, और जो अगला संदेश है वो है किशोर हिवराले का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं कल्याण मुंबई से, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले। गुरमीत सिंह हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल। आर कुमार हमें लिखकर भेज रहे हैं मंडिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा। फागुराम यादव हमें लिखकर भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से, इनके साथ हैं ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। अगला जो संदेश है वो है हरजिंदर शिंदा का, गांव नथाना पंजाब से, जसवीर जस्सी, सीता और गीता इनके साथ हैं। पिपरिया से हमें लिखकर भेज रहे हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता, शिप्रा गुप्ता। धर्मेंद्र छीपा में लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। संजय ढींगिया में लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक हमें लिखकर भेज रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। सुर संगम रेडियो श्रोता संघ हमें लिखकर भेज रहे हैं गुजरात से, अजीत भावसर, प्रेमिका भावसर, डोल राना हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नेहरू विहार दिल्ली से, यशमीत यशो हमें लिखकर भेज रहे हैं, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। तो आइए श्रोताओं, इस फिल्म की अगली गीत की ओर बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोता, हमारे पास जो अगला संदेश है वो है देवशंकर तामुरिया का। इनके साथ है अजय देव, तुषार देव, डॉली बीबी, पूजा तामुरिया, राधिका, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं बालो छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है वो है फारूक अली।

मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर पानीपत से हमें लिखकर भेज रहे हैं, सोनीपत से हमें लिखकर भेज रहे हैं। रोहित वशिष्ठ, इनके साथ है प्रेम सागर, शुभलता अमृतसर से हमें लिखकर भेज रहे हैं। तो श्रोताओ, आइए सुनवाती हूँ इस फिल्म का अगला गीत, और इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होगा।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे ठीक दिन के 1:10 पर। तब तक लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में यानी 1:40 पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज न्यूयॉर्क च संयुक्त राष्ट्र महासभा दे 81वें उच्च पदरी सैशन नूं संबोधन करनगे। विदेश सकत्तर विक्रम मिसरी ने विकासशील देशां दी आवाज़ अते नुमाइंदगी नूं वधाउण लई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद च सुधार दी लोड़ ते जोर दिता। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय दे सकत्तर पुन्या सलीला श्रीवास्तव ने आलमी महामारी नाल नजिठण लई तैयारियां नूं मजबूत करन प्रति भारत दी वचनबद्धता दोहराई। भारत दे चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्या कांत अज पटना च देश दे पहले पीड़ित अधिकार केंद्र दा उद्घाटन करनगे। एशियाई खेडां च भारत दी महिला कबड्डी टीम ने ईरान नूं हरा के सोने दा तमगा अपने नां कीता। हुण खबरां विस्थार दे नाल। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज न्यूयॉर्क विच 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा दे उच्च पदरी सैशन नूं संबोधन करनगे। इस सैशन दा विशा है विश्वास बहाल करना, तब्दीली दा प्रबंध, एक अजिहा संयुक्त राष्ट्र जो सारयां लई कम करे। महासभा विच संयुक्त राष्ट्र दे सारे 193 मैंबर देशां दे राष्ट्रपतियां, प्रधानमंत्रियां अते सीनियर नुमाइंदे शामिल ने जो अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दयां उते अपने देशां दीआं तरजीहां अते नजरिए पेश करनगे। संयुक्त राष्ट्र

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमरीका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र

0: और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
1: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें

जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा

0: चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
2: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
2: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना

करना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुम कल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, किसी अभिनेता को सदाबहार कहना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हिंदी सिनेमा में एक नाम ऐसा है जिसके साथ ये शब्द जैसे खुद ब खुद जुड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं देवानंद साहब की। एक ऐसा चेहरा जिसमें जवानी की चमक थी, एक ऐसा अंदाज जिसकी नकल कईयों ने की, और एक ऐसी आवाज जिसमें रफ्तार थी, एक ऐसा दिल जो हमेशा आने वाले कल के सपने देखता। आज एक ही कलाकार में सफर उस कलाकार की जिसने 6 दशकों से ज्यादा लंबे समय तक फिल्मी जीवन में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, अभिनेता के साथ निर्माता, निर्देशक, लेखक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। तो आइए देव साहब की जिंदगी को उनके गीतों के साथ याद करते हैं।

श्रोताओं, देवानंद साहब का सफर शुरू हुआ 1946 में। फिल्म थी हम एक हैं, लेकिन मंजिल इतनी आसान नहीं थी। 1948 की जिद्दी ने पहली बड़ी सफलता दी और 1951 की बाजी ने देवानंद साहब को उस दौर के प्रमुख सितारों की कतार में लाकर खड़ा किया। बाजी के बाद बॉम्बे नायर सिनेमा की शुरुआत हुई और इसे महत्वपूर्ण फिल्मों में गिना जाता है। यानी जिस सफर की शुरुआत एक संघर्षशील नौजवान ने की थी, वो धीरे धीरे स्टारडम की ओर बढ़ रहा था।

एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता देवानंद साहब की। श्रोताओं, 50 का दशक आया तो देवानंद साहब के नाम के साथ एक नया अंदाज जुड़ चुका था। टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, कालापानी, एक के बाद एक यादगार फिल्में। और देवानंद साहब सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे थे, वो एक नया स्क्रीन परसोना भी गढ़ रहे थे। तेज संवाद, हल्की सी झुकी हुई चाल, गर्दन हिलाने का एक खास अंदाज और चेहरे पर हमेशा मौजूद वो आत्मविश्वास।

श्रोताओं, देवानंद साहब का रोमांटिक अंदाज दर्शकों के दिलों में जगह बना चुका था। लेकिन देव साहब की कहानी सिर्फ रोमांस की कहानी नहीं है, वो जोखिम लेने वाले कलाकार भी थे। 1949 में उन्होंने अपने भाई चेतन आनंद और विजय आनंद के साथ नवकेतन की स्थापना की और आगे चलकर यही बैनर उनके कई महत्वपूर्ण सिनेमाई कार्यक्रमों का यानी कि प्रयोगों का माध्यम बना। और फिर आया 1961।

श्रोताओं, फिल्म हम दोनों में देव साहब ने अभिनय के साथ निर्माण की जिम्मेदारियां भी संभाली। साधना के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी और वो भावुक प्रेम कहानी सबने मिलकर देव साहब की रोमांटिक छवि को और मजबूत किया। लेकिन देव साहब यहीं रुकने वाले नहीं थे, इसके लिए उन्होंने सिनेमा को एक नए अंदाज में देखना शुरू किया, हर बार कुछ नया। और इसी तलाश में 1965 की उस फिल्म तक वो पहुंचे जिसने उनके कैरियर को एक नई ऊंचाई थी। फिल्म का नाम था गाइड। तो आइए इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, गाइड में देवानंद साहब ने राजू का किरदार निभाया था और ये वही देवानंद साहब थे जिनको दर्शकों ने रोमांटिक नायक के रूप में देखा। लेकिन राजू आसान किरदार नहीं था, इसमें प्रेम था, महत्वाकांक्षा थी, गलतियां थी और अंत में आत्मबोध भी। फिल्म देवानंद के लिए अभिनय की बड़ी उपलब्धि बनी और गाइड फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म ने और बहुत सारे पुरस्कार जीते और देवानंद साहब की अगर हम बात करें तो 60 का दशक खत्म होते होते देवानंद साहब सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, वो एक स्टाइल बन चुके थे। और फिर आया 1970 जॉनी मेरा नाम। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्मों में शामिल रही। आइए इस फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में एक ही कलाकार और आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता देवानंद साहब की। श्रोताओं, देवानंद साहब की खासियत ये थी कि वो अपने समय से बहुत आगे चलते और कभी कभी वो समय के साथ भी चलते। जहां एक तरफ वो रोमांटिक नायक की पहचान बना चुके थे, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक मुद्दों और नए विचारों को फिल्मों में जगह देने की उनकी इच्छा और सरोकार हमेशा आगे रहता। उनके सिनेमा में सामाजिक सरोकार में उन मुद्दों को जरूर शामिल किया जो लोगों की जिंदगी को छूते थे।

श्रोताओं, देवानंद साहब को पद्मभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 6 दशकों से ज़्यादा लंबा सफ़र। लेकिन देवानंद साहब को शायद पुरस्कारों से ज़्यादा पसंद था काम करते रहना। वो आखिरी वर्षों तक फिल्मों में काम करते रहे और उनकी अंतिम फिल्म चार्जशीट 2011 में आई। देवानंद साहब की पूरी ज़िंदगी को अगर एक गीत में समेटना हो तो इससे बेहतर पंक्ति मिलना मुश्किल है। जिंदगी जैसी मिली उसे स्वीकार किया, मुश्किलें आई तो आगे बढ़ते रहे, दौर बदला तो खुद को बदलते रहे और उम्र बढ़ी लेकिन उनके भीतर का कलाकार कभी बूढ़ा नहीं हुआ। इसलिए देवानंद साहब सिर्फ एवरग्रीन स्टार नहीं थे, वो हिंदी सिनेमा के उस दौर की याद हैं

जब गीत कहानी का हिस्सा हुआ करते थे, जब नायक का अंदाज फैशन बन जाता था, जब एक अभिनेता अपने सपनों के साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी आगे ले जाने की कोशिश करता है। ये थे देवानंद, हमारे आज के एक ही कलाकार के सितारे। श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त, अब मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे किसी और कलाकार की कहानी और उसके सदाबहार गीतों के साथ। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार थे देवानंद साहब। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।

0: रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति पुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। देखो वंदना, यह समय ब्रज में कितनी हरियाली हरितमा है और कितने ताल सरोवर पूरे भरे पड़े हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं यह समय।
1: हाँ जी जी, और देखो तोहरन की भी तो धूम मची हुई है अभी तलक।
0: हाँ अभी तो राधा अष्टमी है कह चुकी है, राधे रानी को प्राकट्य भयो, क्योंकि चातुर्मास चल रहे है तो यह समय ब्रज में आए वारे जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु भावुक भक्त हैं, इतनी संख्या में वो हैं कि यह समय ब्रज में हर जगह जहाँ देखो एक खुशनुमा सा माहौल दिखे।
1: हाँ जी जी, जय मारे तो हमारो ब्रज हरितमा में भरो रहे और हरियाली सो रहे और ऐसी सुगंधी बिखेरे के मन माते हटे ही ना वहीं जावे को करे।
0: देखो ब्रज क्षेत्र में अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक ताल तलैया कुंड और सरोवर स्थित हैं और जो भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी की लीलांते जुड़े भये हैं।
1: हाँ जी जी
0: तुम्हें कछु याद आए रे?

0: कोई बढ़िया सा सरोवर?
1: हाँ जी, प्रेम सरोवर याद आ रहा है मुझे। और मुझे और याद है, पर मैं आपको प्रेम सरोवर की बताए दूं कि जे बरसाना में और नंदगांव के मार्ग पे स्थित है, और जे वो पवित्र स्थान है जहाँ श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को प्रथम मिलन भयो।
0: या के अतिरिक्त आपको एक और सरोवर बताऊं बताना,
1: हाँ बताओ
0: मान
1: ना।
0: सरोवर है जहाँ पे राधे रानी ने मान किया हो। और जो पान सरोवर है वो नंदगांव में स्थित एक सुंदर और छोटा सा एक जलाशय है।
1: जी, मान सरोवर की बात तो समझ में आवे कि राधे रानी मान करती हैं, और मान भी वो बही मारे करती कि कृष्ण बिनकू मनामते। और जी बताओ, पान सरोवर को कहा है?
0: जी एक पारंपरिक छोटा सा जलाशय है।
1: अच्छा,
0: हाँ, और तुमने मुझे कुसुम सरोवर पूछी होती तो मैं बताती।
1: कुसुम सरोवर तो मैं बताऊंगी। जी,
0: अच्छा, तो तुम ही बताए दो।
1: हाँ देखो जी, गोवर्धन के पास है, और जे प्रसिद्ध सरोवर सुंदर घाट और वास्तुकला से सुसज्जित है, जहाँ श्री कृष्ण और श्री राधा जी की लीलाएं जुड़ी हुई हैं।
0: और या के अतिरिक्त वंदना, शिवताल जाए शिवतालव भी कहवे हैं, और हीरा ताल, ये वो जो है ब्रजमंडल की 84 ब्रजकोस की परिक्रमा की परिधि में आवे हैं। ऐसे कई हैं सरोवर और कुंड जो ब्रज की महिमा को बखान करे हैं, ब्रज की एक एक लीला को बखान करे हैं। पर वंदना,
1: हाँ जी,
0: अब हम अपने श्रोतान को कछु गीत लोकगीत सुनामेंगे के ना सुनामेंगे,
1: हाँ जी, चलो अपने श्रोतान को एक प्यारा सा लोकगीत सुनवाए दें।
0: तो आप सुने हैं जी लोकगीत।

0: बहुत ही चोखो लोकगीत सुनवाए हो आपने जीजी। अब जी बताओ और कहा है हमारे श्रोताओं की काजे।
1: अरे बहुत सारी चीजें हैं, तुम कहो तो सही। हम तो पूरा पिटारो भर के लाए हैं, और तुम कहो तो काव्य गोष्ठी सुनवाए देवे।
0: तो देर मत करो, फिर सुनवाए दो।
1: तो ये तो बताए दो कौन कौन से कवि ने लेके आई हो आज।
0: हाँ जी, हमारी आज ब्रज काव्य गोष्ठी में दरियाब सिंह राजपूत ब्रजगण जी आए हुए हैं, और संग में कुलभूषण सोनी हैं, और बिनके संग में गोविंद सरन जी हैं।
1: तो आओ आनंद लियो या काव्य गोष्ठी को।
0: और जी जी यह काव्य गोष्ठी को संचालन कर रहे हैं दरियाब सिंह राजपूत ब्रजगण।
2: राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी भैया हो, आज बड़ो ही शुभ अवसर है, और ये माह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जामे हमारे जगतपति नंदलाला को जन्मदिन भयो है, राधा रानी को हु जन्मदिन है। तो ऐसो अवसर सो अवसर कबू ना आ सके, और आज जाए स्टूडियो में जो कवि आए भये हैं वो हैं कुलभूषण सोनी जी और श्री गोविंद शरण जी, और मैं दरियाब सिंह राजपूत ब्रजकरण। जा गोष्ठी पे आपको ऐसो अद्भुत कछु सुनबे को मिलेगो। तो सर्वप्रथम मैं आवाज दे रहे हूँ, मैं स्वागत कर रहे हूँ गोविंद शरण जी को। वो अपनी रचना के माध्यम से ब्रज को सुशोभित करें अपने शब्द भावों से, और कृष्ण जी को नमन करते हुए जो भी इनको मन हो ऐसो पढ़ें, भावपूर्ण पढ़ें। राधे राधे।
3: स्वागत है।
4: जय श्री राधे।
3: जय
2: राधे
3: श्री
2: राधे
3: कृष्ण।
2: जी।
4: यह महीना में भगवान कृष्ण को राधा को दोनों को जन्मदिन है, तो मैं भगवान कृष्ण से अपनी
2: वाह
4: मतलब
2: वाह,
4: शुरुआत
2: स्वागत
4: करूंगा।
2: है, स्वागत
4: एक
2: है, स्वागत
4: छंद
2: है।
4: कि जसोदा को छैया, कि जसोदा को छैया, बल दाऊ जी को भैया
2: वाह
4: श्याम,
2: वाह, क्या
4: रास को रचैया, गोपी कान को
2: बात
4: रिझैया
2: है,
4: है,
2: क्या बात
4: क्या
2: है।
4: बात है, क्या बात है। माखन चोरैया के माखन चोरैया, मेरे ओरो में समैया, ग्वाल बालन को भैया ने कुछ छाछ पे
2: वाह
4: नचैया
2: वाह वाह
4: है,
2: वाह, क्या बात है, क्या बात।
4: बांसुरी बजैया है सजैया, मोर पंखन
2: जय
4: को,
2: जय जय जय,
4: बांसुरी बजैया है सजैया, मोर पंखन को, और
2: वाह,
4: आठो याम राधे राधे नाम को
3: अरे
4: रटैया
3: क्या
4: है,
3: कहने।
4: ब्रिज को बसैया, ब्रिज को बसैया, गिरिराज को उठैया भैया, नंद को नदैया, मेरी नाव को खेवैया
2: वाह वाह
4: है,
2: वाह वाह वाह,
4: नाव को खेवैया
3: बहुत
4: है,
3: सुंदर
4: नाव को खेवैया
2: जय जय,
4: है।
2: वाह गोविंद जी वाह
4: और सब जाई श्रृंखला में
3: जी,
4: भगवान कृष्ण के दो छंद और सुनो।
2: हाँ स्वागत
3: हाँ
2: है,
3: स्वागत
2: स्वागत
3: है
2: है सर।
3: साहब, स्वागत है।
4: जब छोटो सो बालक जन्म ले तो
3: हाँ
4: वाके सबरे अंगन को रंग लाल लाल दिखाई दे,
2: हाँ
3: तो
2: सही
4: भगवान
2: बात,
4: कृष्ण ने जन्म लिया है
2: वाह,
4: और उनके सबरे अंगन को रंग लाल लाल है।
2: जय
4: लाल
2: जय
4: लाल है,
2: जय
4: और
2: जय,
4: देखो उस लाल रंग को प्रयोग मैंने कैसे करो।
2: स्वागत है सर।
4: कि छोटे पद पानी लाल, छोटी उंगुरी हु लाल, छोटे नख लाल, छोटी रेखा लाल
2: क्या
4: लाल
2: बात है,
4: है,
2: क्या बात है,
3: रेखा
2: क्या
3: तो
2: बात
3: लाल
2: है,
3: है,
2: वाह
3: क्या बात
4: छोटे
3: है।
4: पद पानी लाल, छोटी उंगुरी हु लाल, छोटे नख लाल, छोटी रेखा लाल लाल है,
3: बहुत बढ़िया,
4: आधर अमोल लाल, कलित कपोल लाल,
3: कपोल
4: लोचन
3: लाल है,
4: ललित लाल लाल
2: वाह वाह
4: मुख
2: वाह वाह
4: लाल
2: वाह वाह
4: है,
2: वाह वाह, क्या
4: लाल
2: बढ़िया बात है,
4: लाल भूषण बसन सब लाल लाल,
2: लाल आवृत्ति, वाह
4: लाल लाल भूषण बसन सब लाल लाल, और ललन लला के सब साज भोन
2: जय
4: लाल
2: जय जय जय
4: में,
2: जय जय,
3: बहुत सुंदर,
4: लाल पाल नाम लाल, फूलन की सेज लाल,
3: क्या
4: और
3: बात
4: लाल
3: है,
4: ही खिलौना लेके झूले नंद लाल
2: वाह।

0: लाल ही खिलौना लेके झूले नंद लाल है वाह गोविंद वाह।
1: अब यू लाल रंग को प्रयोग करे हो,
0: लाल शब्द की आवृत्ति बार बार है ये,
1: हाँ
0: बहुत ही सुंदर।
1: और अब काले रंग को प्रयोग देखो,
0: स्वागत है
1: काले रंग को प्रयोग,
0: स्वागत है
1: काले रंग को प्रयोग कुछ ऐसा करो मैंने कि कारे कजरारे नैन सैन कारे कारे प्यारे नंद के दुलारे बले हारे काम ताई लट घुंगुरारे लट घुंगुरारे सट कारे सारे कारे मतवारे हम हारे श्याम तेरी श्याम बादर से फारे तेने मोर के मुकट बारे बादर से फारे तेने मोर के मुकट बारे और बारे हम तेरे अधरों की अधराई पे और पीत वस्त्र धारे

0: ताई पे। और देखो जी, अब ये तीन छंद मैंने कन्हैया जी के सुनाए, अब भगवान कृष्ण के बिना हमारी राधिका जी अधूरी हैं, और राधा जी के बिना हमारे कन्हैया जी अधूरे।
1: एक प्राण दो,
0: हाँ जी, एक प्राण दो। अगला छंद जो मैं सुना रहा हूँ आप है वो राधिका जी के चरण की। कृष्ण प्राण प्यारी, कृष्ण प्राण प्यारी, पतितों की दुख हारी, श्यामा विश्व अवतारी, तेहु लोक उजियारी है, गौर रंग बारी, गौर रंग बारी, श्याम बाम अंग धारी, आठो याम हुई ये में गिरधारी ने उतारी है, गिरधारी ने उतारी है, चंद्रमुख बारी तो पेरी जे ही बिहारी, सुख कारी सुख मारी, प्यारी बरसाने बारी, कर रखवारी तो सो बिनती हमारी प्यारी, कीरत कुमारी ब्रिसवान की दुलारी है, कीरत कुमारी ब्रिसवान की दुलारी है।
2: तो भैया अभी आपने गोविंद शरण जी को सुनियो, और अब यही श्रृंखला में हमारे आ रहे हैं वरिष्ठ कवि श्री कुलभूषण सोनी जी। कुलभूषण सोनी जी आपका स्वागत है।
3: पर जैसे गोविंद जी भारद्वाज जी ने कही है कि नीरज तिन्हें में सजनी सलोने सुट सावरे सवारे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
3: और बांसुरी बजावट पे बात की बनावट की, और माधुरी से मूरत तो मन मत लागे, आली अक्षिन अम्बुज अनोखे अटका मुने,
2: सुंदर
3: और चंचल सी चितवन चंचला चंचला चला गए, भूतन बनत ब्रसवान जाके भर तार, और द्रग दुख दामुनि की तुति दमका गए, और बांसुरी बजावत पे बात के बनावट की, माधुरी सी मूरत सो मन मचला
0: गए। अति सुंदर, अति
3: सुंदर। कन्हैया की क्या हाल है?
0: बहुत बढ़िया।
2: तो भैया जी अभी आपने कुलभूषण सोनी जी को सुनियो, और अब गोविंद शरण जी को सुनियो। स्वागत है गोविंद शरण जी।
0: जैसे के मैंने अभी छंद सुनाए, और अब मैं ब्रज वंदना,
2: वाह स्वागत
0: आपके सामने, मतलब मैं प्रस्तुत करूं ब्रज वंदना।
3: स्वागत है।

0: रस जय जय
1: बहुत ही सुंदर।
0: जय ब्रज वसुधा महतारी, अरे जय ब्रज बाग तड़ाग भाग की महिमा पुढ़ारी।
2: वाह वाह वाह।

0: गिलगित बनवारी
1: सेवा कुंज काम बनो, अरे गिलगित बनवारी।

0: जय ब्रज राज रास रस जय जय जय ब्रज वसुधा में तारी।
1: जा सरस वंदना को प्रस्तुत कर रहे गोविंद शरण जी। और अब मेरो निवेदन है वरिष्ठ कवि कुलभूषण सोनी जी सो आपका स्वागत है। आपको कुछ सुनाओ।
2: स्वागत है।
3: जय हो, जय हो।
1: स्वागत है।
3: देखो भैया, हमारी जो ब्रजभाषा है बड़ी मीठी लगे है। जय कन्हैया ने हूँ अपने मुख से उच्चारित करके और बाबू विख्यात कर दियो, तो यह कवित्व में मैं आपके समय
1: स्वागत है। स्वागत है कुलभूषण जी।
3: प्रस्तुत कर रहे हूँ
1: जी। स्वागत है।
3: वो कन्हैया को और मुरली को कैसा संबंध है और या ब्रज भाषा से
2: क्या बात है। स्वागत है जी।
3: कान की सुरीली तानी गोपिनी के ही है बसी, मीरा की सुबीना बनी रघु रघु में पूरी।
2: क्या बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर।
3: के रस को बखान खान रस खान जूने करो, ब्रज वसुधा की मांग कवि अनुने भरी। ब्रज वसुधा की मांग कवि अनुने भरी, के भूतन रे जाए दे बैन ब्रजवासी निके, के ऐसो अब तंत भयो मोहन मधुपुरी। बोली में या में कैसा मीठा रस है, के बोली को मिठास या में अपने बनावे घर और सब कुर जावे ऐसी ब्रज भाषा माधुरी। रजावे ऐसी ब्रज भाषा माधुरी,
1: ऐसी रजावे ब्रज भाषा माधुरी। ब्रज भाषा को बड़ो मधुर चित्रण कियो।

0: भूषण जी ने।
1: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब हम बुलाएंगे हमारी यह गोष्ठी को संचालन कर रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ कवि और हमारे ब्रज भाषा के धुरंधर पुरोधा हमारे दर्याब सिंह राजपूत जी ब्रजगढ़।
2: बहुत बहुत
1: आपका
2: स्वागत है
1: स्वागत है
2: साहब।
1: सर।
0: धन्यवाद
2: राजपूत जी का
0: आपको। ब्रजवासी इनको राधे राधे करते हुए
2: जय श्री राधे,
0: गीत
2: राधे
0: प्रस्तुत कर रहे हूँ।
1: स्वागत है।

0: बजे
1: मन में सपने सजे, दर्द सो देव की छटपटाए वे लगी, ठीक बारे बजे पीर से नाए सकी, कछु कह नाए सकी, पीर से नाए सकी, कछु कह नाए।

0: बचे अजी
1: लाल
0: लाल
1: कैसे
0: कैसे बचे,
1: बचे,
0: शोरगुल ना मचे। लाल कैसे बचे शोरगुल ना मचे, चिंता दोनों के मन को सताए लगी।
1: वाह
0: ठीक बारे बजे, ठीक
1: बहुत
0: बारे बजे, मन में सपने सजे, दर्द सो देव की छटपटाए वे लगी। ठीक बारे बजे
1: वाह जी वाह, बहुत
0: केस
1: सुंदर,
0: सुंदर सुगड़ लाल ठन के हिया,
1: वाह क्या भाषा है
0: केस
1: जी, बिल्कुल।
0: सुंदर।

द्वार जो अब खुल हो खुले हो गए, बंद है द्वार जो अब खुले हो गए, सूप में ले उल्टा, अजी सूप में ले उल्टा मन।

0: जाएगी। क्या बात, बहुत सुंदर।
1: ठीक बारे बजे, ठीक बारे बजे, मन में सपने सजे, दर्द सो देव की
0: सटपटावे लगी। वाह जी वाह, क्या
1: सटपटावे
0: सुंदर,
1: लगी।
0: गजब।
1: ठीक

0: सगरो जिनाटक कियो, चक्रधारी न
1: बहुत
0: सगरो
1: सुंदर, बहुत सुंदर।
0: जिनाटक कियो, खेल सब है गयो, अजी खेल
1: खेल
0: सब
1: सब
0: है
1: है
0: गयो,
1: गयो।
0: फिर जगत सोए गयो।
1: हाँ
0: वाह,
1: बहुत सुंदर।
0: खेल सब है गयो,
1: खेल
0: फिर जगत सोए गयो, लाली आवत ही रोए बे, फिर प्याए
1: लाली
0: बे।

0: एक कन्या कुखुद रह गयो है ठगो।
1: बिल्कुल ठग रहे हो।
0: सुन रुदन की खबर कंस आयो भगो, देख कन्या कुखुद रह

उड़ गई सुन के सहदा भयो, कंस को काल ब्रज में ये पैदा भयो, कंस को काल ब्रज में ये पैदा भयो, क्रोध में भर गयो अजी।

सुकूना चुकुमती नचाए वे लगी ठीक बारे बजे, ठीक बारे बजे, ठीक बारे बजे, मन में सपने सजे, ठीक बारे बजे, मन में सपने।

0: और आपने ये ब्रजभाषा कवि गोष्ठी सुनी, जहाँ कवि गोष्ठी में पधारे पैगाम मथुरा से गोविंद शरण जी रसिक और कुलभूषण जी वरिष्ठ कवि ब्रजभाषा के कुलभूषण सोनी जी, और मैं आपको दरियाब सिंह राजपूत ब्रजकन वृंदावन सो राधे राधे जय श्री
1: जय श्री
0: कृष्ण
1: राधे।
0: राधे राधे।
1: श्रोताओं, अभी आप ब्रज काव्य गोष्ठी सुन रहे हैं। यह में प्रतिभागी कवि है दरियाब सिंह राजपूत ब्रजकण, कुलभूषण सोनी और गोविंद सरन। या के संगई आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। मोए यानी श्रुति पुरी है
2: और मोए यानी के वंदना को कार्यक्रम को संपन्न करवे की अनुमति दियो।
1: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
2: विवेक कुमार तोमर।
3: अभी हमारे श्रोता सुने थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।
4: आइए सुनते हैं नाटक इंतजार। लेखिका आकांक्षा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुनेंगे। हर फौजी की एक कहानी होती है, लेकिन हर कहानी में सिर्फ बॉर्डर नहीं होता, एक घर भी होता है जो उसका इंतजार करता है। ये कहानी है मेजर ऋषि सिंह की, जो जम्मू के एक छोटे से कस्बे से निकलकर भारतीय सेना की वर्दी पहन चुके हैं, और रिमझिम कश्यप की, जो दिल्ली की गलियों में पढ़ी लिखी अपने अल्फाजों से दुनिया से बात करने वाली एक लेखिका है।
5: दो अलग दुनिया, एक बॉर्डर पर ड्यूटी निभाता है, दूसरी कागज पर जिंदगी को समझती है। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। यह कहानी है उनके प्यार की, उनके इंतजार की, और उस ताकत की जो हर फौजी की पत्नी के अंदर चुपचाप पल रही होती है।
6: अब हमारे साथ है युवा लेखिका रिमझिम कश्यप, जो आज अपनी नई कविता शहर की सांसें आप सबके साथ साझा करेंगी। तालियों से उनका स्वागत कीजिए।

0: इस शहर की सांसों में बसी है हर कहानी अनकही, हर मोड़ पर बिछड़े हुए लोग और फिर भी चलते रहने की जिद।
1: माफ कीजिएगा, आपकी कविता सुनकर लगा जैसे इस शहर को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई हो।
0: शुक्रिया, पर ये तो थोड़ी ज्यादा तारीफ हो गई सर।
1: नहीं, सच कह रहा हूं, मैं ऋषि हूं, मेजर ऋषि सिंह।
0: आर्मी तो वर्दी कहां छोड़ आए?
1: छुट्टी पर हूं अभी, तो आज के लिए सिविलियन हूं।
0: अच्छा, तो सिविलियन मेजर साहब, कविता समझ में आई या बस यूं ही चले आए?
1: नहीं नहीं, मतलब दोनों। ईमानदारी से बोलूं तो आपके शब्दों में बहुत सच्चाई है।
0: शायद इसलिए क्योंकि मैं उन्हीं चीजों के बारे में लिखती हूँ जो मैंने खुद देखी और महसूस की हैं।
1: हम दोनों में ये बात कॉमन है, मैं भी वही करता हूँ जो मैंने सीखा है। फर्क सिर्फ ये है कि मेरे हथियार कागज नहीं है। अगर पुराना लगे तो क्या हम कभी कॉफी पर मिल सकते हैं, बस एक दोस्त की तरह? आपकी लेखनी के बारे में और जानना चाहता हूँ।
0: ठीक है मेजर साहब, पर शर्त यह है कि अगली बार वर्दी में आना। मुझे यकीन करना है कि आप झूठ नहीं बोल रहे।
2: हम की वो मुलाकात एक मामूली सी शुरुआत लगती थी, लेकिन कुछ दोस्तियां वक्त के साथ इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। अगले 3 साल ऋषि और रिमझिम एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त बन गए। फोन कॉल्स, लंबी बातें और एक अनकहा भरोसा।
3: एक कॉफी से शुरू हुई बात धीरे धीरे रोज की आदत बन गई। अगले 3 साल चाहे ऋषि ट्रेनिंग पर हो या रिमझिम किसी डेडलाइन में डूबी हो, दोनों के बीच एक धागा बना रहा जो वक्त के साथ और मजबूत होता गया।
1: क्या बात है रिमझिम, बहुत उदास लग रही हो।
0: ऋषि मेरा एडिटर मेरे आर्टिकल को 3 बार रिजेक्ट कर चुका है, लगता है मैं तो लिखना ही भूल गई हूँ।
1: या शायद तुम्हारा एडिटर अच्छी चीजों की कदर नहीं करता। भेजो मुझे, मैं पढ़ता हूँ। एक फौजी की राय भी कुछ मतलब रखती है।
0: तुम बस मेरा दिल रखने के लिए मेरी तारीफ करोगे?
1: नहीं, मैं सच बोलता हूँ, गलत होने पर वो भी बता दूंगा। दोस्त हूं, झूठ नहीं बोलूंगा।
0: अच्छा ठीक है
1: रिमझिम।
0: हाँ?
1: सुनो, मेरी अगले महीने एक फील्ड एक्सरसाइज है, शायद 2 हफ्ते कॉल नहीं कर पाऊंगा।
0: ठीक है, ख्याल रखना, और हाँ वापस आकर सबसे पहले मुझे कॉल करना, समझे?
1: वायदा करता हूँ, तुम्हारी आवाज सुनने का इंतजार अब सिर्फ एक दोस्त वाला इंतजार नहीं लगता रिमझिम।
0: मुझे भी।
2: दोस्ती की उस डोर में कब प्यार की एक गांठ बंध गई दोनों को पता ही नहीं चला। ऋषि और रिमझिम जान चुके थे कि ये रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे निकल चुका है।
3: 3 साल की दोस्ती, समझ, हंसी, झगड़े और भरोसे का एक लंबा सफर, और फिर ये दोस्ती एक नए रिश्ते में बदल गई।
4: अरे ये ओहो, अरे देखो पंडित जी कहाँ है, देखो
5: सही। बेटा ऋषि।
1: जी माँ।
5: आज से रिमझिम भी हमारे घर की है, इसका ख्याल रखना, समझे?
1: जी माँ।
6: ऋषि बेटा, मेरी बेटी को मैंने हमेशा खुले आसमान की तरह जीने दिया है, उसे उड़ने देना, बांधना नहीं।
1: पापा जी, ये मेरा वायदा है, रिमझिम जैसी है वैसी ही रहेगी, मैं तो बस उसके साथ चलूंगा, उसे रोकूंगा नहीं, आप चिंता ना कीजिए।

0: Thank you, beta. Thank you very much.
1: दिल्ली कैंट के एक छोटे से घर में उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। 3 साल की दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे को समझने का वक्त दे दिया था, पर शादी के बाद का हर दिन फिर भी एक नई खोज की तरह लगता।

0: पता ही नहीं चला।
1: हाँ, पहली बार लगा कि घर का मतलब क्या होता है। बॉर्डर पर भी अब जब मैं सोचूंगा तो यही याद आएगा, सुबह की ये चाय, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी हंसी।
0: ये बॉर्डर की बातें मत करो अभी से, अभी तो हम साथ हैं।
1: हाँ, साथ हैं, और जब तक हैं हर पल को पूरा जीना है। यही तो फौजी की जिंदगी का असली सबक है।
2: उस फोन कॉल को ना ऋषि जानता था ना रिमझिम कि वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया था।
0: ऋषि, तुमने कभी ठीक से नहीं बताया, जम्मू में तुम्हारा बचपन कैसा था?
1: जम्मू की पहाड़ियां, पापा फौज में थे तो हम भी बहुत घूमे, पर एक बात हमेशा याद रहती है। पापा कहते थे, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है बेटा, ये एक जिम्मेदारी है जो उतरती नहीं।
0: तो तुमने भी इसी वर्दी को चुना उनकी तरह?
1: चुना नहीं, शायद वो मेरे खून में ही था। मां हमेशा डरती थी पर पापा को गर्व था। आज भी जब घर कॉल करता हूं, मां पहले पूछती है खाना खाया, और उसके बाद ही ड्यूटी कैसी चल रही है।
0: सच, मुझे अब समझ में आ रहा है कि फौजी की मां होना भी कितना मुश्किल होता है। मैं तो अभी पत्नी बनी हूं, उन्होंने तो सालों यही जिंदगी जी है।
1: इसीलिए कहता हूं, हमारी फैमिली की औरतें मर्दों से ज्यादा, कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। वो सिखाती नहीं, बस जी कर दिखाती हैं। ये लीजिए आपकी चाय।
0: थैंक यू।
1: मैडम लेखिका, आज का आर्टिकल कैसा चल रहा है?
0: अटका हुआ है। दिल्ली में मेरे पापा मम्मी हमेशा कहते थे, परमानेंट जॉब कर लो, और मैं हूं कि फ्रीलांसिंग में उलझी हुई हूँ।
1: तुम्हें भी तो यही पसंद था ना, अपनी मर्जी से लिखना, अपनी आवाज में।
0: हाँ, और सच कहूं तो मेरे पापा को भी अब गर्व है, बस जाहिर कम करते हैं।
1: तुम और मैं दोनों ने मुश्किल रास्ता चुना है। मैं बॉर्डर पर लड़ता हूं, तुम कागज पर अपनी जगह बनाती हो। दोनों को वक्त लगता है इज्जत बनाने में,
0: और दोनों को हौसले की जरूरत होती है, जो शुक्र है हमें एक दूसरे से मिल जाता है।
1: हेलो। हेलो जी सर, ठीक है सर, समझ गया। जय हिंद सर।
0: क्या हुआ ऋषि?
1: रिमझिम, मेरा पोस्टिंग ऑर्डर आ गया है लद्दाख।
0: लद्दाख? कब कब जाना है?
1: 10 दिन में निकलना है।
0: 10 दिन? ऋषि, हमारी शादी को अभी 3 महीने ही हुए हैं।
1: मुझे पता है, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी ऑर्डर आ जाएगा, पर यही जिंदगी है रिमझिम, हमें इसके लिए तैयार रहना सीखना होगा।
0: 3 साल की दोस्ती, 3 महीने की शादी, और अब अचानक तुम कहीं इतनी दूर चले जाओगे जहां ना फोन चलेगा ना नेटवर्क। मुझे डर लग रहा है ऋषि।
1: रिमझिम, मुझे भी डर लगता है, हर बार लगता है, पर हम फौजी और उनकी फैमिली इस डर के साथ जीना सीख जाते हैं। बस मुझसे एक वादा करो, इन 10 दिनों में रोना नहीं, सिर्फ हम दोनों के लिए जीना है, वादा करो।
0: ठीक है, पर वादा तुम भी करो, हर रोज कॉल करोगे चाहे कुछ भी हो जाए।
1: ठीक है, करूंगा, वायदा है। मां, मां।
3: हाँ बेटा।
1: मां, आपसे एक बात करनी थी।
3: हाँ हाँ बोलना।
1: मां, मैं तुमसे कहना चाह रहा था, मेरी पोस्टिंग आ गई है, लद्दाख जाना है।
3: लद्दाख?

0: ए बेटा, अपना ख्याल रखना, हम दुआ करते रहेंगे।
1: माँ, रिमझिम पहली बार अकेली रहेगी दिल्ली में, आप लोग उसका ख्याल रखना माँ।
0: ऋषि, वो हमारी बेटी है, हम उसका ख्याल रखेंगे।
1: जी,
0: तू बस अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे।
1: ठीक है माँ।
2: रिमझिम ने तय कर लिया था, चाहे दिल कितना भी भारी हो, ये 10 दिन वो ऋषि के साथ हंसते मुस्कुराते बिताएगी। ना आंसू ना शिकायत, बस यादें जो आने वाले महीनों का सहारा बनेंगी।

0: ऋषि उस वाली दुकान से चाट खाएंगे, फिर पुरानी दिल्ली वाली सैर पर चलेंगे जैसे पहली बार हम डेट पर गए थे।
1: मैडम 10 दिन में पूरी दिल्ली घूमने का प्लान है क्या?
0: हाँ, क्योंकि अगले 6 महीने या फिर उससे ज्यादा मुझे इन्हीं यादों को याद करके जीना है।
1: रिमझिम, जब भी लद्दाख में आसमान देखूंगा यही सोचूंगा कि शायद तुम भी उसी पल यही आसमान देख रही होगी।
0: तो हर रात इस आसमान को देखकर मुझे भी तुम्हारी याद आएगी और इस तरह हम दूर होकर भी पास रहेंगे, है ना?
1: यही तो असली प्यार है रिमझिम, दूरियों को पास होने का एक नया तरीका ढूंढना।
0: ऋषि ये देखो, ये इंडिया सेंटर वाली शाम। कितने नर्वस लग रहे थे तुम उससे बात करते हुए।
1: नर्वस नहीं था, बस सोच रहा था कैसे तुम्हारा नंबर मांगू बिना बेइज्जत हुए।
2: दस दिन बाजार की सैर, घर की रसोई में साथ खाना बनाना, पुरानी तस्वीरें देखना और रात भर बातें करना, हर लम्हा एक खजाने की तरह जमा हो रहा था। पर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता।
0: ऋषि सच बताओ, तुम वापस कब आओगे? 6 महीने 7 महीने मुझे ठीक ठीक बताओ।
1: रिमझिम ये पोस्टिंग है, कोई ट्रेन टाइम टेबल नहीं कि मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेट बता सकूं। छुट्टी मिलेगी तो आऊंगा।
0: अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ठीक हो?
1: अरे मैडम पहले जाने तो दो। बैठो बैठो रिमझिम। सुनो, तुम एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हो, मैं चाहे तुम्हारे पास हूं या पोस्टिंग पर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूं।
0: ऋषि,
1: अरे रोना बंद करो यार, बस तुम्हें स्ट्रांग रहना है क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसे ही होती है, समझी?
0: हाँ, मुझे पता है कि एक दिन होना ही था, पर जब आंखों के सामने होता है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है।
1: रिमझिम आंसू पोंछो, हर फौजी की पत्नी इसी लम्हे से गुजरती है, तुम भी गुजर जाओगी और मैं देखूंगा तुम मुझसे भी ज्यादा मजबूत निकलोगी।
0: ठीक है, अच्छा वादा करो लद्दाख से रोज कॉल करोगे, चाहे नेटवर्क हो या ना हो।
1: कोशिश का वायदा है, नेटवर्क का नहीं, वहां नेटवर्क भी फौजी डिसिप्लिन में चलता है, मन की नहीं सुनता।

0: अगली सुबह ऋषि का सामान बंध चुका था। 10 दिन जो कभी खत्म ना होने जैसे लग रहे थे, अब बस कुछ घंटों में सिमट गए थे।
1: पापा,
2: बेटा, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। और रिमझिम, तू भी हिम्मत रखना, हम सब तेरे साथ हैं बेटा।
3: हाँ पापा, मैं ठीक रहूंगी। और आप सब हैं तो डर किस बात का।
2: वेरी गुड गर्ल।

0: उस रात दोनों परिवार साथ बैठे, हंसे, खाया और एक दूसरे को हौसला दिया। पर सबको पता था कल सुबह ये घर थोड़ा खाली हो जाएगा।
1: ठीक है रिमझिम, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखना अपना,
2: तुम भी, और हर रोज बताना ठीक हो या नहीं।
1: ठीक है, जब भी डर लगे याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कितने भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो।
2: जाओ, देश का इंतजार है और मेरा भी, पर मेरा थोड़ा लंबा होगा।
1: चलता हूं।
2: हाँ।
0: उस दिन रिमझिम ने पहली बार समझा एक फौजी की पत्नी होने का मतलब क्या होता है। दरवाजे पर खड़े होकर अपने सबसे करीबी इंसान को जाते देखना और फिर भी मुस्कुराते रहना।
3: लद्दाख, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और एक ऐसी ड्यूटी जहां नेटवर्क भी मुश्किल से साथ देता है। हर कॉल किसी तोहफे की तरह लगती थी।
4: सुनाई दे रहा है?
5: हेलो
4: रिमझिम, हेलो।
5: हाँ, सुनाई दे रहा है। कैसे हो? खाना खाया?
4: हाँ, खा लिया। यहाँ सब ठीक है।
5: हाँ।
4: बस ठंड बहुत है। तुम बताओ, लिखना वगैरह चल रहा है?
5: हाँ, एक नया आर्टिकल लिख रही हूँ, एक फौजी की पत्नी के इंतजार पर।
4: अच्छा, तो मैं उसका इंस्पिरेशन हूँ?
5: तुम और तुम्हारी ये दूरिया दोनों। ऋषि,
2: हेलो, हेलो ऋषि। फिर कट गया।
3: ऐसे ही दिन बीतते गए, कभी कॉल पूरी होती कभी बीच में कट जाती, पर हर बार रिमझिम फिर से फोन के पास इंतजार करती अगली घंटी के लिए। 6 महीने बीत गए और दोनों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, छुट्टी कब मिलेगी।
0: ऋषि, सच बता, घर की याद आती है या नहीं?
4: हर पल आती है दोस्त, पर तू बता, शादी को तेरे भी तो ज्यादा साल नहीं हुए, श्रुति को कैसे संभालता है इतनी दूर से?
0: वो मुझसे भी ज्यादा मजबूत है भाई। और तेरी रिमझिम भी तो वैसी ही लग रही थी जब आखिरी बार मिला था।
4: वो डरती बहुत है पर हिम्मत भी बहुत रखती है। बस उसे अभी समय लग रहा है ये सब समझने में।
0: अरे समझ जाएगी दोस्त, हम सब समझ जाते हैं, बस वक्त लगता है। चल, छुट्टी मिले तो साथ ही चलते हैं।
4: पक्का यश, तू मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त है। इस पोस्ट पर तेरे बिना ये ठंड और भी मुश्किल होती।
0: और नहीं तो क्या। चल एक और चाय पीते हैं।
4: चल।
6: उस बंजर बर्फीली जमीन पर ऋषि और यश की दोस्ती एक नई गहराई पा रही थी, एक ऐसा रिश्ता जो आगे आने वाले तूफान में दोनों परिवारों को एक दूसरे के करीब ला देगा।
3: रिमझिम, सच बताऊं, यश के जाने के बाद घर बहुत सूना लगता है, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या?
2: हर रोज श्रुति, पर तुमसे बात करके थोड़ा हल्का लगता है। लगता है कोई तो है जो ये सब समझता है।
3: हम फौजी पत्नियां ना शायद इसीलिए एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं, क्योंकि कोई और इतनी आसानी से नहीं समझ सकता ये इंतजार।

0: सच कहा। चलो एक वादा करते हैं, जब तक यश और ऋषि दोनों वापस नहीं आते, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।
1: पक्का वादा।

0: उस दिन से श्रुति और रिमझिम की दोस्ती सिर्फ एक रिश्तेदारी नहीं रही, वो एक दूसरे का सहारा बन गई उस इंतजार में जो दोनों एक साथ काट रही थी।
1: हर फौजी की पत्नी एक अलग किस्म की जिंदगी जीती है, जहां प्यार चिट्ठियों में, कॉल की घंटियों में और कभी कभी सिर्फ खामोशियों में महसूस होता है। ऋषि, तुमने कहा था ना, जब आसमान देखूं तो तुम्हें याद कर लूं। आज भी देख रही हूं और लग रहा है तुम कहीं उतनी दूर नहीं हो जितना नक्शे पे दिखता है।

0: हेलो
1: आवाज आ रही है?
0: ऋषि, आज आवाज साफ आ रही है, गुड साइन है।
1: आवाज आ रही है?
0: हाँ
1: हाँ, आज नेटवर्क मेहरबान है। कैसी हो?
0: ठीक हूँ, बस तुम्हारा इंतजार है। छुट्टी का कुछ पता चला?
1: अभी कुछ पता नहीं मैडम। और सुनो, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना सीखना पड़ेगा। थोड़ी और स्ट्रांग हो जाओ। अगर मैं वापस नहीं आया तो
0: ऋषि
1: तब भी तो तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना है
0: ये किस तरह का मजाक है ऋषि?
1: ना। अरे अरे, मैं तो बस मतलब मैं मजाक कर रहा था रिमझिम। अब रोना मत शुरू कर देना।
0: मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसी बातें मजाक में कैसी लगती हैं। तुम नहीं समझते ऋषि, हर बार जब फोन की घंटी नहीं बजती ना, तो मेरा दिल कितनी बार रुकता है, और तुम ये कह रहे हो।
1: रिमझिम, सॉरी, मुझे एहसास नहीं था कि ये इतना गहरा लगेगा। मैं बस तुम्हें मजबूत देखना चाहता था, इसीलिए।
0: मुझे मजबूत करने के लिए तुम्हें ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है ऋषि, बस सही सलामत वापस आ जाओ, यही काफी है।
1: अच्छा सुनो सुनो रिमझिम, गुड न्यूज है, मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है। अगले हफ्ते वापिस आ रहा हूं।
0: सच सच में ऋषि ऋषि, ये तो सबसे अच्छी खबर है।
1: हाँ, बस अब कुछ दिन और।
0: मैं अभी से प्लान बनाना शुरू करती हूँ, वही वो पुरानी दिल्ली वाली चाट, छत पर रात की चाय, और हाँ इस बार मैं तुम्हारी पसंद के राजमा चावल भी बनाऊंगी।
1: मैडम, इतनी प्लानिंग में तो छुट्टी कम पड़ जाएगी।
0: हाँ तो ठीक है ना, अगली बार ज्यादा छुट्टियों की मांग करना मेजर साहब।
1: ठीक है।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक इंतजार। लेखिका थी आकांक्षा। भाग लेने वाले कलाकार थे अतुल जस्सी, काजल सूरी, शोभा जस्सी, ऋषि उनियाल, श्वेता शर्मा, मीनू शर्मा और संजय वर्मा। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे नाटक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब आपको कुछ कार्यक्रम संबंधी सूचना दे दें। शाम 4:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज परिक्रमा। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 4:30।

शाम 5:10 पर हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे कार्यक्रम लोक रंजनी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा विश्व गर्भ निरोधक दिवस। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगे सत्येंद्र यादव, ऋषिपाल चौहान और मंशाराम चौहान और जयप्रकाश शर्मा। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 5:30 पर। शाम 6:10 पर श्रोताओं, शाम 6:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चहल पहल। ग्राम संसार कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। इस कार्यक्रम में होगी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार और उन्मूलन दिवस, लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार।

शाम 7:05 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे खाद्य पदार्थों में मूल्यवर्धन द्वारा अधिक आय। शाम 7:35 पर हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे गजल और कवाली। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट।

7:35 पर हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे गजल और कवाली। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट।

0: नमस्कार श्रोताओं, खेल खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार शर्मा, मेरे साथ हैं
1: अभिषेक कपिल।
0: अभिषेक। आज शानदार दिन है एशियाई खेलों में। जापान में आईजी नगोया में चल रहे हैं, भारत के लिए दोहरी स्वर्णिम सौगात लेकर आया है। कबड्डी में भारतीय टीमों ने अपना दबदबा कायम रखा है, दोनों ही वर्गों में शानदार उपलब्धि है। और इस शानदार स्वर्णिम सौगात के साथ हम शुरुआत करेंगे। और इसके अलावा भी निशानेबाजी में भी मेडल हैं, और स्क्वैश में भारत के दो खिलाड़ी पुरुष एकल और महिला एकल के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके अलावा मैराथन में भी पदक है।
1: और इसके साथ ही अगर हम बात करें एथलेटिक्स की, तो अनिमेश कुजूर हो गए हैं सेमीफाइनल से फाइनल में, उन सफर तय किया है उन्होंने। भारत की उन्नति अय्यप्पा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कल कम्पीट करेंगे।
0: जी बिल्कुल। और ताज़ा अपडेट ये भी है कि डेकाथलॉन में भारत के तेजस्विन शंकर चार इवेंट के बाद पहले स्थान पर चल रहे हैं, और यहाँ भी एक उम्मीद जगी है। और उम्मीद तो जगी है हॉकी में भी, जहाँ भारत ने 2-0 से जापान को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान तय कर लिया है। तो अभिषेक, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो आज कितना शानदार दिन रहा भारत के लिए, और कल के लिए हमें क्या पदक की उम्मीद जगी है, ये भी आज कुछ तय हुआ है। तो बहरहाल पेश है आईची नगोया एशियन गेम्स पर ये रिपोर्ट।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: जापान के आईची नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। शनिवार का दिन भारत के लिए दोहरी स्वर्णिम सफलता लेकर आया, जब कबड्डी में पुरुष और महिला दोनों ही टीम ने ईरान को हराकर गोल्डन डबल पूरा किया। इसके अलावा स्क्वैश में भी दोहरे स्वर्ण की आस जग गई है, क्योंकि अनाहत सिंह और अभय सिंह ने अपने अपने वर्ग यानी महिला और पुरुष एकल के फाइनल में जगह बना ली है। निशानेबाजी में भी भारत ने अपनी ताकत का फिर से प्रदर्शन किया है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में तिलोत्मा आशी और विदर्शा ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। मैराथन में भी भारत को पदक मिला, तो बैडमिंटन में एकल और युगल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ अपनी दावेदारी मजबूत। पुरुष हॉकी टीम की जीत का सिलसिला भी जारी है। सबसे पहले बात कबड्डी में मिली दोहरी स्वर्णिम सफलता की।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कबड्डी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। भारत की महिला और पुरुष दोनों कबड्डी टीमों ने फाइनल में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सबसे पहले महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान को 37-34 से हराया। मुकाबले का पहला हाफ भारत के नाम रहा। भारतीय टीम ने 22-16 की बढ़त के साथ हाफ टाइम किया। दूसरे हाफ में ईरान ने वापसी की कोशिश की और 18 अंक हासिल किए, लेकिन भारत की 6 अंकों की पहली हाफ बढ़त निर्णायक साबित हुई। पूरे मुकाबले में भारत ने 26 आउट पॉइंट, 6 बोनस पॉइंट, 2 ऑल आउट पॉइंट और 2 टेक्निकल पॉइंट हासिल किए। ईरान के खाते में 21 आउट, 8 बोनस, 2 ऑल आउट पॉइंट रहे। अंत में भारत ने 37-34 से मुकाबला जीतकर महिला कबड्डी का स्वर्ण अपने नाम किया। ये एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम का चौथा स्वर्ण है। इसके बाद पुरुष टीम ने भी वही कहानी दोहराई। फाइनल में भारत का सामना एक बार फिर ईरान से हुआ और भारतीय पुरुष टीम ने 40-34 से जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक हासिल किया। पहले हाफ में मुकाबला बेहद करीबी रहा। भारत 17-18 से 1 अंक पीछे था, लेकिन दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए 23 अंक जुटाए, जबकि ईरान 16 अंक ही बना सका। भारत ने मुकाबले में कुल 30 आउट पॉइंट, 4 बोनस पॉइंट, 2 ऑल आउट पॉइंट, 1 टेक्निकल पॉइंट और 3 सुपर टैकल पॉइंट हासिल किए। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने भी एशियन गेम्स का स्वर्ण बरकरार रखा, यानी एक ही दिन एक ही प्रतिद्वंदी के खिलाफ 2 फाइनल और दोनों में भारत की जीत।
0: निशानेबाजी में भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आयशी चोकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। चीन को स्वर्ण और कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। तिलोत्तमा ने 590, विदर्शा ने 588 और आशा चोकसी ने 585 का स्कोर किया। तिलोत्तमा तीसरे और विदर्शा छठे स्थान पर रही। भारत ने कुल 1763 अंक लिए। चीन ने 1773 अंक लेकर गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आशी और तिलोत्तमा ने नीलिंग और प्रोन चरण में 395 का स्कोर किया, जिसमें आशी ने इनर 10 में 25 और तिलोत्तमा ने 23 निशाने लगाए। तिलोत्मा स्टैंडिंग में बेहतर प्रदर्शन कर शीर्ष तीन में पहुंच गई। तिलोत्मा और विदर्शा व्यक्तिगत फाइनल में भी पहुंचने में सफल रही, जहां तिलोत्मा चौथे और विदर्शा पांचवें स्थान पर रही। व्यक्तिगत फाइनल में तिलोत्मा ने अहम मौके पर 9.4 स्कोर किया, जिससे पदक हाथ से फिसल गया। तिलोत्मा पहले 25 शॉट के बाद आगे चल रही थी, उनका स्कोर 337.3 रहा। विदर्शा 327.4 अंक लेकर पांचवें स्थान पर रही। चीन की जियाऊ हान ने 359.0 के एशियाई चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। चीन की ल्यूझान 358.8 के स्कोर के साथ रजत और दक्षिण कोरिया की जियुन किम को कांस्य पदक मिला, जिन्होंने 348.4 का स्कोर किया। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में नीलिंग प्रॉन और स्टैंडिंग पोजीशन में निशाने लगते हैं। स्क्वैश में 18 साल की युवा स्टार अनाथ सिंह ने दो सेट से पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए महिला एकल में जापान की विश्व में छठे नंबर की खिलाड़ी सतोमी वातानाबे को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर स्वर्णिम दस्तक दी है। इसी तरह पुरुष एकल में अभय सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर स्वर्ण पदक की आस जगाई है। महिला एकल में अनाथ ने जापान की सतोमी वातानाबे के खिलाफ पहले दो सेट 9-11 11-3 से गंवा दिए थे, लेकिन अपने से ऊंची रैंकिंग के खिलाड़ी के खिलाफ पिछड़ने के बाद उन्होंने हौसला नहीं खोया और अगले दो सेट 12-10 11-6 से जीतकर वापसी की और निर्णायक सेट में शुरुआत से बढ़त बनाकर 11-3 से सेट और सेमीफाइनल मैच जीत लिया। पुरुष एकल के सेमीफाइनल में अभय ने पाकिस्तान के इरफान को 11-3 12-10 11-6 से हराकर सीधे सेटों में जीत दर्ज कर 35 मिनट में मैच अपने नाम कर लिया। हालांकि मिश्रित युगल में जोशना चिनप्पा और वी सेंथिल कुमार को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य से संतोष करना पड़ा। जोशना सेंथिल को हांगकांग के तांग मिंग हांग और ली का यी से 10-11 11-2 10-11 से हार मिली 10-11 11-2 10-11 से हार मिली। 40 साल की जोशना का यह एशियाई खेलों में छठा पदक है। इससे पहले उनके नाम 2 रजत और 3 कांस्य पदक है। बैडमिंटन से अच्छी खबर यह है कि पीवी सिंधु महिला एकल के तीसरे दौर में पहुंच गई है। वहीं उन्नति हुड्डा और आयुष शेट्टी ने भी अपना अभियान प्री क्वार्टर तक पहुंचा दिया है। पीवी सिंधु ने चीन ताइपाई की चियू पिंचियान को 21-14 21-14 से हराकर महिला एकल के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। इसके अलावा उन्नति हुड्डा और आयुष शेट्टी भी जीतने में सफल रहे। आयुष ने पुरुष एकल में कजाकिस्तान के मकसूद ताजी बुल्लायव को 21-7 21-7 से 21 मिनट में हराया, तो उन्नति को महिला एकल में मलेशिया की वोंग चिंग ली से कड़ी टक्कर मिली। उन्नति को 21-14 20-22 और 21-9 से जीत हासिल करने में 89 मिनट लगे। अब उन्नति का सामना इंडोनेशिया की कुसुमा पुत्रा वरदानी से होगा, जबकि आयुष प्री क्वार्टर में चीन ताइपे के टीएन चैन से भिड़ेंगे। महिला युगल में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का भी शानदार प्रदर्शन जारी है और उन्होंने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय महिला जोड़ी ने जापान की दुनिया की तीसरे नंबर की जोड़ी मायू मातुसुमोतो और युकी फुकुशिमा को 24-22 21-8 से हराया। दूसरे गेम में एक समय त्रिशा गायत्री पिछड़ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने 15-15 से बराबरी की और अंततः मैच अपने कब्जे में कर लिया। अब त्रिशा गायत्री पदक से महज एक जीत दूर है। कल ड्रैगनफील्ड से भारत के लिए पदकों की फुहार थी। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट में कांस्य, गुलबीर का 10,000 मीटर में रजत और पोलवाल्ट में बार्निका एलन गोविन ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इससे पहले कभी एशियाई खेलों में भारत को पोलवाल्ट में पदक नहीं मिला था। भारत के लिए

दिन की शुरुआत मैराथन में सावन बरवाल के सिल्वर मेडल से हुई। सावन बरवाल ने नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाते हुए 2 घंटे 11.37 सेकंड का समय निकाला। मैराथन में ये 44 साल बाद एशियाई खेलों में मिला पहला मेडल है। इससे पहले भारत की मेजबानी में 1922 में नई दिल्ली में हुए खेलों में हुसूर कुकुप्पा सिमरन ने कांस्य पदक जीता था। तलवारबाजी में भारत की महिला फाइल और पुरुषों की साबरी टीम क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई। महिला फाइल टीम में जाय अतिथा स्टेलनराज मीना देवी

0: फिलीपींस को 45-27 से पराजित किया। कोरिया ने पुरुष साबर टीम को 45-25 और जापान ने फाइनल स्पर्धा में भारत को 45-14 से हराया। कैनोइंग में खाली हाथ लौटना पड़ेगा, जबकि हांगजोंग खेलों में भारत को एक कांस्य पदक मिला था। पुरुषों के कयाक एकल 500 मीटर में भारत के हर्षवर्धन सिंह शक्तावत अपने सेमीफाइनल में 1:50.543 का समय निकालकर चौथे स्थान पर रहे। फाइनल बी में तीन प्रतियोगिताओं में शीर्ष पर रहे। मिश्रित कैनो युगल 500 मीटर में राजू रावत और नेहा देवी फाइनल ए में 9 जोड़ियों में 8वें स्थान पर रहे। मिश्रित कयाक युगल 500 मीटर में पार्वती गीता और प्रसन्ना फाइनल ए में 9वें स्थान पर रहे। तो ये तो थी एशियाई खेलों पर रिपोर्ट, और इससे अभी और अपडेट करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की, जहां भारत ने जापान को 2-0 से हराकर अपना शानदार अभियान जारी रखा है। तो क्या कहना चाहेंगे?
1: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान को 2-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ सबसे अहम बात यह है कि भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से अभिषेक और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल किए। इस जीत के साथ भारतीय टीम के मुकाबले में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और जापान को पूरे मैच में गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। भारत को मैच में कुल 12 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जबकि जापान को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले। भारत के लिए अभिषेक ने एक फील्ड गोल किया, जबकि हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए एक गोल दागा। वहीं अगर हम मैच को देखें तो भारत इससे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन खैर जीत भारत के पाले में आई। डिफेंस में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित दास, जर्मनप्रीत सिंह, सुमित और जुगराज सिंह समेत भारतीय डिफेंस ने जापान के हमलों को लगातार रोके रखा। गोलकीपिंग में मोहित, शशि कुमार और सूरज करकरे ने भी टीम की जिम्मेदारी संभाली। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने जापान के मुकाबले ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया और पेनल्टी कॉर्नर के मामले में भी स्पष्ट बढ़त बनाई। आखिरकार भारत ने जापान को 2-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम किया।
0: हमने खास आज एशियाई खेलों में जो भारत का प्रदर्शन रहा, चाहे वो कबड्डी की गोल्ड हो या इसके अलावा शूटिंग की बात हो, बात स्क्वैश की हो, तमाम जो आज जो गतिविधियां रही, भारत का शानदार प्रदर्शन रहा, उस पर हमने बात की जी राजा रमन से, जो कि जाने माने खेल पत्रकार हैं, और हमने महिला कबड्डी की जो स्वर्ण पदक के बाद ये बात की। तो आइए जानते हैं उन्होंने इस प्रदर्शन पर उनकी क्या राय।
2: गोल्ड जीतना शायद जरूरी था,
3: लेकिन सर जिस तरह ईरान टक्कर दे रहा है तो उससे पता लग रहा है, और तो लगता है कि कहीं जो हमारी मोनोपोली और जो वर्चस्व है उसके लिए हमें अपना कायम रखने के लिए लगातार मेहनत करने की और जरूरत है। इसी तरह
2: दो चीजें हैं, एक तो भारत अगर जीतता जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश जब कबड्डी खेलने लगेंगे आशा है कि ओलंपिक गेम्स में भी कबड्डी शामिल हो सकती है। जब हम देख रहे हैं कि ईरान जैसा देश काफी सालों से वो अच्छा कबड्डी खेलते हैं, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या और भी देश है, जापान जैसा देश, वहां पे कबड्डी काफी पॉपुलर है, ऐसे देश जब खेलने लगेंगे और फिर हमको टक्कर देंगे, खेल का बढ़ावा हो रहा है और ये शायद बहुत जरूरी है कबड्डी जैसे खेल के लिए, जो हमारा अपना खेल है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट है हमारा, लेकिन अगर विश्व स्तर पर कुछ करना है तो बाकी देशों को अच्छा खेलना होगा। कहीं ना कहीं खुशी होती है कि ईरान जैसा देश कबड्डी को अपनाया है और फिर हमसे मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण हो जाता है हमारे साथ जब खेलते हैं।
3: हम तो कबड्डी बाकी देशों को भी सिखा रहे हैं, और
2: कबड्डी का जो दबदबा है, जो गेम की जो खूबी है, ये कईयों को भी समझ में आ रहा है। ये बहुत ही एथलेटिक और टफ खेल है और काफी कॉम्पिटिटिव है, चोट लगने का चांस कम होता है, हालांकि काफी फिजिकल खेल है, लोगों को लगता है कुश्ती जैसे है, जिम्नास्टिक्स भी शामिल है इसमें, आपको एथलेटिक होना होता है तो, और आपका दिमाग काफी तेज होना है। ऐसा खेल छोटे से एरिया में मैट के ऊपर बहुत आसानी से खेला जा सकता है, और दुनिया में जब ये खेल फैल रहा है तो हम इससे ज्यादा खुश कभी हो नहीं सकते।
3: कुछ खबरें तो इन शूटिंग रेंज से भी है, और तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 में रजत पदक दिला दिया।
2: अच्छा प्रदर्शन रहा, टीम इवेंट में भारत की टीम पदक लाई है, लेकिन थोड़ा सा निराशा जरूर हमको सामना करना पड़ा उसका, क्योंकि तिलोत्तमा सेन के पास एक मौका था कम से कम रजत पदक जीतने का इंडिविजुअल इवेंट में, लेकिन कुछ छोटे अंक से रह गई, फोर्थ फिनिश की है, विदर्शा भी फिफ्थ फिनिश करके बाहर चली गई थी, लेकिन उम्मीद ये है कि थ्री पोजीशन टीम से इंडिविजुअल में मेडल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि तिलोत्तमा का शूटिंग काफी शानदार रहा था, लेकिन टीम परफॉर्मेंस तीनों मिलके अच्छा नतीजा लाए हैं भारत के लिए।

0: सिल्वर इज अ वेरी गुड मेडल डेफिनेटली।
1: स्क्वैश में तो लगातार शानदार प्रदर्शन है, और हालांकि मिक्स में जोशना जो कि अनुभवी हैं और सेंथिल कुमार ब्रॉन्ज ले सके, सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद जो स्वर्णिम दस्तक दी है आनाथ और अभय ने।
0: इनके पास मौका है ओलंपिक को क्वालिफाई करने का। यहाँ पे अगर गोल्ड मेडल जीत जाते हैं तो लॉस एंजलिस ओलंपिक का सीट पक्का हो जाता है, और ये अच्छी बात है। स्क्वाश जैसे खेल के लिए काफी सालों से मेहनत करते आए थे स्क्वाश के अधिकारी, अब जाके वो शामिल हुआ है ओलंपिक में, और ये डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है। अगर यहाँ पे जीत जाते हैं हमारे बच्चे, दोनों बहुत ही शानदार खेल खेले हैं। अनाथ की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि 0-2 से डाउन थी और वहां से उठ के आना और फिर 3-2 जीतना, अनाहत ने दिखाया कि बहुत ही जबरदस्त चैंपियन मटेरियल है। विश्व जूनियर चैंपियन रही है
1: जी
0: और उसी का कॉन्फिडेंस लेकर यहाँ पे आई है,

हीनी ईद एक सहेली आकाशवाणी व पेंडवा वस्कलीजा जी सासा टुना वाले टेनी तारीफा या बारी मुसुमा जिने में मंगजन कौन से मुक्तवासारी वाके वजी मांबो या अंजे व इंडिया बना एस जे शंकर अमे टोया में वीटो व कुटुमा फुर्सा जिलिजो उंडवान ना ए आई हु को आकी शुकुल किया हाटा जीना जोहु सियाना मोहने केटी मेन्जा व हाफला कुहूसु ए आई यानी अकली पांडिया कटिका मुक्तादा व अमान नौसलामा व कीमटैफा जीनी न्यूयॉर्क बोन जयशंकर कुटुबिया मुक्तानुम कुवा तमन्ना मोजा व मोजा मटैफा जीनी न्यूयॉर्क अलाजीरिया लियो वजी मामोया अंजे वन विक्रम मिस्री अमे टोयम वीटो व मागेउजी हराकाया यूएनएससी इली कुवागा मटैफा यनायो एंडेलेया साउटी कुवाजाइडी आंची ईरान इमे पेंडेकेजा मकुबलियानो या कुफुंगुआ टेना मलांगो बहारी व होमोज कटिका सिकुसाबा इकीवा मैकानी इटटिमीजा माशर्ती या के मरकानी या काटा पेंडे के जो हीलो टीमु या वनवाकिया इंडिया या कबड्डी इमे शिंदा दहाबू दीदी या ईरान कटिका मिचेजो एशिया इमे शिंदा मेडालियम बीरीजा फैदा कटिका उपिकाजी विशासी या वनवाके न रोतोरी या वनवाके हमारी कमली वजी मामोयांजे डॉक्टर जयशंकर अमेसिसिटीजा हिटाजिला कुटुमा उविजा कानो उनाउटो लेवाना ए आई कुटाराजा मा टोक्यो याके ना कुपुंगुजा हटारीजा के वजीरी अमे टोया मा टमसी हयाली पुकुआ अकी ओंगेजा हाफला कुहुसु ए आई कटिका मुक्तादा व अमान नौसलामा वाकी मटैफा होकु अकी सी सिटीजा उस्लामा व सहोवेनी पामोजा नौजरी मामो यांजे व उगिरकी व न जोर्स व काटी व हफला ही डॉक्टर जयशंकर अली थिपिटी सकवाम्ब ए आई नौसलामा व बहरीनी विना सालिया कुवा विपम्बेले मुहिम को इंडिया कटी को मोज मटैफा अली सी सिटीजा क्वाम्ब अजिम्युला न्यू दिल्ली लिना सी सिटीजा उपटि कनाजी व कि डेमोक्रेसिया व रसिलमालिजा ए आई कुजेंगा मिफुंगो सलामा ना इनायो अमनीका कुवे केजा कटिका वेजो व मिनाडामो ना कुटुमिया ए आई क्वा कुआजी व उचुमी ना मनुफा या किजा मी पी आली सी सिटीजा क्वाम्बा कटिका वांजा व बहरीनी ए आई इनावेजा कुंगेजा वेलेवा व वांजा व बहरीनी उटाफुटियाजी ना उकवाजी कुकबलियाना ना माफा उटाम्बूजी व शुगुलीजी ना जो टिली व शाका ना उसटाइमिलीवु व भंडारी ना मेनो मीनो मुहिमु वजी लिंगेजा कुवा इना वेजा पिया कुवेजेशा उपेलेकाजी व किसासा उचुराजी रमानी व उहलीफु ना शुगुलीजा मिटंडाओ जीना जो लेंगा मेली मिटंडाओ या मवसलियानो ना मेनो मीनु या चीनी या बहारी डॉक्टर जयशंकर अली सी सिटीजा क्वाम्बा कुंगेजे का

0: राम जी। हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम सरकार, सचिव भाई, राम राम। सितंबर
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: सोलंकी, गांव कलपुरा, महाराजपुर, जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं जी। कृषिपाल
0: जितेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: नागर को सुनना चाहेंगे जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: नाम बोलूंगा जी, लकी, संजना, अंशुला, चिंतल, तन्नू, प्राची, वीर सोलंकी, राजनी, मेघराज सिंह सोलंकी, माता श्रीमती निर्मला देवी।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम जुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ऋषिपाल नागर जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: कुछ नाम है जी, जयपाल सिंह, अध्यक्ष जगदीश मोटा बादलपुर, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, मास्टर कुंदन सिंह, गर्ग गुजर और आरव भाटी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल नागर से ये रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार,
1: नमस्कार जी। शशि भाई, मैं
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: गांव डोंगरा है, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से पंडित यादवराम पटवारी बोल रहा हूँ जी। सुनीता
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: पंचाल के आवाज बिल्कुल बढ़िया।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: पोता पोती है जी, सुहानी शर्मा है जी, अभय शर्मा, यश शर्मा।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार,
1: नमस्कार, सुरेश
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: चौहान जी बोल रहे हैं नजफगढ़ से। भाई
0: सुरेश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: बहुत दिन हो गए हैं सुनीता पांचाल की आवाज सुने हमें रेडियो पे। राम
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
1: राम जी।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: विनोद कुमार प्रजापत, गांव दुदुगला, डिस्ट्रिक्ट करकी दादरी।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज ये सुनीता पांचाल की आवाज में सुनवा दो कोई अच्छा सा गीत।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
1: हेलो ग्राम संसार, शशि जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: हिसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: सुनीता पंचाल को सुनना चाहूंगे। गामुड़ी से जी, बनवारी लाल यादव, शमशेर जी द्वारका से, राम राम जी।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर सुनीता पांचाल से ये लोकगीत।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731 और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सरकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसीनेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिसंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्नूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तरजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तम्मा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने

0: कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम किसान वाणी में आपसे साझा करते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमारे कृषि जीवन को आसान करती हैं, जिसमें विशेषज्ञ वैज्ञानिक और डॉक्टर्स की सलाह होती है। कहीं ना कहीं कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि घर बैठे हमारे किसान भाई बहनों को समसामयिक जो भी खेती किसानी कर रहे हैं, यदि उसमें कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान उन्हें कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से मिल जाए।
4: बिल्कुल, और किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम रोचक जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही साथ मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। और आपका समय की बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, तो समय का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपने पशुओं का देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने परिवार के लिए और ज्यादा मदद कर सकते हैं और किस तरीके से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको मिल पाएगी किसान वाणी कार्यक्रम में।
3: बिल्कुल सीमा, और वही कार्यक्रम किसान वाणी में भाई किसी न किसी ऐसी योजना पर भी हम चर्चा करते हैं जो सीधे सीधे हमारे किसान भाई बहनों के लिए उपयोगी होती है। मित्रों, ऐसी ही एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
4: बिल्कुल अमित, आज हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए खास तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि हम KCC के नाम से भी इसे जानते हैं।
3: बिल्कुल,
4: और ये सरकार की पता है सबसे पुरानी और सबसे फायदेमंद योजना है।
3: जी, वहीं सरकार का मकसद है किसानों को साहूकार के महंगे कर्ज से बचाना। भाई हमारे किसान भाई बहनों को जब कोई भी कार्य करना है, कृषि करनी है, तो धन जरूरी होता है, और धन के लिए अब कितनी जरूरत है ये भी हमें देखना है, तो हम सीधे बैंक से ऋण ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से। और मित्रों, इसमें ये भी लाभ रहेगा कि जितनी हमारी जरूरत है, जितनी हमारी जमीन है, उसके हिसाब से हमें ऋण मिल जाएगा।
4: बिल्कुल, और इसमें साथ ही साथ हम सस्ते लोन के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ हम बात करेंगे बीज, खाद, ट्रैक्टर और इसके अलावा और भी जो यंत्र हैं, किस तरह से कि हम कम पैसों में ले सकते हैं, और अब ये ATM कार्ड की तरह काम करता है अगर हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड की।
3: बिल्कुल सीमा, और वहीं पशुपालन, डेयरी, मछली पालन आदि के लिए भी ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सामान्य ब्याज दर 7% तक होती है, समय पर भुगतान करने वाले किसानों को इसमें छूट मिल जाती है, और यह लगभग 4% या उससे कम हो जाता है, तो हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना का।
4: और इसमें कौन कौन से किसान हैं जो इस योजना का फायदा ले सकते हैं, तो हम अपनी जमीन वाले किसान खास तौर पे हम बात करेंगे, या फिर बटाईदार जो होते हैं, किराए पर जो खेती करने वाले किसान होते हैं, या फिर हम बात करें मछली पालने वाले, मुर्गी पालन करने वाले, इस तरीके के जो किसान होते हैं और जिनकी उम्र 18 से 75 वर्ष के बीच होती है, वो

0: इस योजना का फायदा लेने के लिए यहाँ पर उम्मीदवार हैं।
1: मित्रों, ये थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके माध्यम से सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है हमारे किसान भाइयों। हम जरूर कोई ना कोई ऐसी बातचीत, ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं जिसका लाभ हमारे सभी किसान भाई बहनों को, युवाओं को होता है। तो सीमा, आज हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में एक ऐसी बातचीत जिससे आय किस प्रकार से हम बढ़ाएं, खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन द्वारा किस प्रकार अधिक लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बिंदवी अरोड़ा, जो कि वैज्ञानिक हैं, हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
1: जैसा कि बातचीत का विषय है खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन, तो हम अपने श्रोताओं की ओर से आपसे जानना चाहते हैं कि मूल्य संवर्धन क्या है।
2: मूल्य संवर्धन, जिसे कि हम वैलराइजेशन भी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की कुछ ऐसा उसमें करें कि उसका मूल बढ़ जाए, उसका वैल्यू बढ़ जाए। और ये कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम उसमें न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों में अगर कुछ बढ़ोतरी कर दी है तो वो एक तरीके का मूल्य संवर्धन हो गया।
1: जी
2: या हमने उसे किसी इस तरीके से प्रसंस्कृत कर दिया है, प्रोसेस कर दिया है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, उसकी लघु अवधि बढ़ गई, अब उसे ज्यादा समय तक भंडारण करके रखा जा सकता है। अगर हम तीसरे तरीके से बात करें तो हमने कोई प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बना दिया। मानिए हमारे पास कोई फल है, कोई फूल है, हमने उसका कोई जूस, जैम, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना दिया जिसकी मार्केट में ज्यादा वैल्यू है, तो से भी उनकी आय का स्रोत बढ़ जाता है। ये सब अलग अलग कैटेगरी है जिसे हम खाने को या खाद्य पदार्थों को किसी तरीके से उसके नेटिव फॉर्म से उच्च कर देते हैं, कुछ बेनिफिट उसमें ऐड कर देते हैं ताकि उसका वैल्यू बढ़ाया जा सके। उसी वैल्यू बढ़ाने को हम मूल्य संवर्धन कहते हैं।
1: यानी कि अगर हम बात करें किसान भाइयों के लिए, तो जो कृषि उत्पाद हैं, जो किसान फसल बेच रहा है, यदि वो उस फसल से प्राप्त जो भी उत्पाद है उसके कई तरह के अलग अलग उत्पाद बना करके बाजार में बेचे, तो उसे अच्छा मूल्य मिल सकता है। तो
2: बिल्कुल
1: जब बात आती है कि उत्पादों की, तो सबसे पहले यही विचार करेगा कि ऐसे कौन कौन से उत्पाद हो सकते हैं जिनमें मूल्य संवर्धन किया जा सकता है।
2: ये मूल्य संवर्धन हर कृषि खेती से आए उत्पाद से किया जा सकता है। हम जनरली इसको दो भागों में बांटते हैं। अगर
1: जी
2: कृषि से जो उत्पाद आते हैं वो एक होता है बागवानी वाला, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हमारे हो गए, उनका जो मूल्य संवर्धन का मेजर गोल हमारा होता है कि उसे हम किस तरीके से ऐसे प्रिजर्व कर सकें कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, या फिर हम उसे किस तरीके से ऐसा प्रोसेस कर सकें कि हम उसमें न्यूट्रिटिव कंटेंट बढ़ा सकें। जैसे हम टमाटर की ही बात करते हैं तो टमाटर की एक लघु अवधि कमी होती है, घर
1: जी
2: में लाने के
1: बिल्कुल
2: बाद उसे 8, 9, 10 दिन के अंदर अंदर हमें इस्तेमाल करना
1: करना
2: ही
1: ही
2: है,
1: होती
2: तो
1: है।
2: किसानों को उससे भी पहले उसे बेच देना है वरना उनका भी वहां पड़ा खराब हो जाएगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर सकें कि या तो हम उसका ड्राई करके पाउडर बना लें। अब वो पाउडर बहुत समय तक रखा जा सकता है और वो बहुत सारी इंडस्ट्री भी खरीदती हैं,
1: जी
2: जैसे टोमेटो सूप बनाने वाली कंपनी है वो जरूर आपसे पाउडर खरीदेगी। इसी तरीके से कोई और कंपनी, जो पल्प अगर आपने बना के रख लिया तो टोमेटो केचप बनाना है, टोमेटो पेस्ट बनाना है, ये सब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं टमाटर से, इतने सारे उत्पाद बनते हैं। अगर हम ये टमाटर बहुत जल्दी जल्दी आता है उसी समय कम दामों में बेचने की बजाय अगर हम उसे इस तरीके से प्रसंस्कृत करें और फिर उसके बेचने पर उसमें हम थोड़ा ध्यान लगाएं तो हमारी जो आय है उसकी जरूर वृद्धि हो सकती है। वहीं दूसरे तरीके के जो हमारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि सीरियल हो गए, पल्सेस हो गए, दाल, अनाज, ये उतना जल्दी खराब तो नहीं होता है। एक बार
1: जी
2: मिलिंग कर दिया तो इसे घर में भंडार करके किसान अपने स्टोर में बहुत समय तक रख सकता है, तो शेल्फ लाइफ बढ़ाना मेजर गोल नहीं है। लेकिन इसको बनाने का तरीका, जैसे दाल उबालना है, चावल बनाना है, इस सब में बनाने में आटे का रोटी बनता है, ये हमारे नेटिव स्टेपल फूड्स हैं, हम ये सब खाते हैं, पर ये बनाने में काफी घर में मेहनत भी लगती है और समय भी लगता है। तो इन तरीकों के जो प्रोडक्ट्स हैं इनका जो प्रसंस्करण है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि रेडी टू ईट फूड बन गया, जल्दी क्विक कुकिंग बन जाए। जैसे कि चावल अगर हम बाजार से खरीदते हैं उसे बनाने में हमें 20 मिनट लगता है, अगर उसे इस तरीके से प्रोसेस किया जाए कि वो 5 मिनट उबल के तैयार हो रहा है, तो हमने उसमें एक तरीके का वैल्यू एडिशन कर दिया,
1: जी
2: थोड़ा
1: बिल्कुल
2: सा टेक्नोलॉजी लगाया बट उसका वैल्यू बढ़ गया, तो अब लोग उसको ज्यादा मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हैं। तो यही अलग अलग तरीके हैं जिससे हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं।
1: तो यहां तक हमारे किसान भाई बहन समझ गए कि आखिर मूल्य संवर्धन क्या है और किस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि हम जैसे टमाटर है उसका सूप बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, अन्य सभी हमारे कृषि उत्पादों में भी मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। अब किसान भाई बहन है या हम भी अपने मन में विचार करें कि हमें कुछ करना है, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है आधार चुनना, क्योंकि बिना मशीनरी के नहीं होगा, बिना श्रम के नहीं होगा, बिना लेबर के नहीं होगा। तो किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहनों के लिए, हमारे साथियों के लिए, या माने कि इसको रोजगार की दृष्टि से वो शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें किस प्रकार अपना आधार मजबूत करना चाहिए कि वो इस काम से जुड़ सकें।
2: ये सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा काम शुरू करना चाहता है या किसान भाई, उनको सबसे पहले तो ये सोचना है वो खुद क्या उगा रहे हैं।
1: जी
2: देखिए, रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
1: बिल्कुल
2: चीज है, आपके पास क्या चीज उपलब्ध है उसी को आप प्रोसेस करेंगे। या कोई ऐसा भी है जो

0: नहीं है, तो उसको भी ये सोचना है कि उसके आसपास क्या चीज अवेलेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा रॉ मटेरियल ही हम कहीं बहुत दूर से
1: हाँ
0: मंगा रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सही बात।
0: एक बार जब हम वो सोच लेते हैं क्या अवेलेबल है और हमें उसमें इंटरेस्ट है, हम ये काम करना चाहते हैं, ये दो चीजें अगर हैं, तो उसके बाद हम सोच सकते हैं किस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हम अगर ऐसे बिजनेस में घुसना चाहते हैं तो हमें ये भी सोचना है, सबसे ज्यादा जरूरी, कि हमारा प्रोडक्ट बन तो जाएगा पर बनने के बाद कहाँ उसको बेचना है। तो मार्केट रिसर्च करना, ये समझना क्या मेरा मार्केट है, कहाँ उसे बेचा जाएगा, क्या कोई दूसरी इंडस्ट्री खरीदेगी, क्या मैं डायरेक्टली लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहता हूँ, क्या मेरा एंड प्रोडक्ट है, क्या मेरा एक मेड इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, जैसे कि टोमेटो का पेस्ट एक मेड इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट
1: जी
0: है, लेकिन अगर हम टोमेटो के केचप की बात करें तो वो तो एंड यूज प्रोडक्ट है, वो तो हम लोग डायरेक्टली खरीदते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हमें सोचना है कि हम किस तरीके के लेवल के प्रसंस्करण तक जाना चाहते हैं, किस मार्केट को हम रीच करना चाहते हैं, क्या मेरा मार्केट इतना बड़ा हो सकता है कि मैं एंड कंज्यूमर तक पहुंच सकूं, या मैं कुछ आसपास की 5 इंडस्ट्री तक ही पहुंचना चाहता हूँ।
1: जी
0: तो ये सब भी हमें सोचना होता है। साथ ही में इसके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप जो भी सोचते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ये हमारा आइडिया है, उसके लिए आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इवन कृषि अनुसंधान संस्थान भी, और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करते हो, कुछ समझ जाते हो कि हम ये करना चाहते हैं, तो उसको सीखने के लिए कैसे बनाना है, कहाँ उसकी मार्केट की जा सकती है, उस सब की मदद करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग भी इंस्टीट्यूट्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं।
1: लेकिन बात आती है कि जब कोई भी हम काम करते हैं, विचार कर लिया कि कहां तक पहुंचना है, आवश्यकता होती है धन की। तो क्या सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि जिसके माध्यम से हमारे युवा साथी हैं या किसान हैं, उनको कुछ अनुदान मिले, कुछ सब्सिडी मिले, और जिसके द्वारा वो कोई भी प्रसंस्कृत यूनिट यदि लगाना चाहते हैं तो उसको स्थापित कर सकें।
0: जी हाँ, देखिए बहुत सारे सरकार की ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सारी सरकारी मदद इसमें हमें मिलती है जो अलग अलग लेवल पे है, जैसे कि बागवानी के लिए अलग है, सीरियल पल्सेस के लिए अलग, मशरूम के लिए आजकल सरकार बहुत मदद कर रही है। तो इसमें दो तरीके हैं इसको, या तो आप NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या नाबार्ड के थ्रू आप अपनी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल MSME के थ्रू आप अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए अलग अलग स्कीम का अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप किसान भाई बहन मिलकर एक FPO स्टैब्लिश करते हैं या किसी FPO से जुड़ जाते
1: जी
0: हैं, तो उनको बहुत सारे तरीके की मदद मिल जाती है। अगर आप FPO करते हैं तो आप एक तरीके से इंडस्ट्री ही हो गई आपकी, जिसमें 50-100 लोग मिलकर सेम गोल की तरफ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत सब्सिडी प्रोवाइड करती है अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: तो बात चल रही है मूल्य संवर्धन के विषय में, लेकिन वहीं मैम कई बार होता है कि हमारे साथी हैं जो आज कार्यक्रम सुन रहे होंगे, उनके मन में ये प्रश्न भी जरूर हो सकता है कि जो प्रसंस्करण की गई कोई भी उत्पाद की कोई भी वस्तु है, क्या उस पे पोषण के माध्यम से देखें तो उस पे कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा या उसका पोषण बढ़ेगा, किस प्रकार से इस पे विचार किया जाए?
0: ये भी मूल्य संवर्धन की ना दो अलग अलग तरीके हैं। पहला तो मैंने आप में कुछ पोषक तत्व ऐड भी कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो जरूरी नहीं है कि हर प्रसंस्करण से कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा, लेकिन हाँ अगर हम गर्म हीट यूज करते हैं प्रोसेसिंग में या कोई हाई एनर्जी वाला प्रोसेस यूज करते हैं तो कुछ हद तक कुछ विटामिन डिग्रेड होते हैं, उनकी क्वालिटी कम होती है। लेकिन अब फूड साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि उन्हीं प्रोडक्ट को कैसे हम प्रोसेस करें कि ये सारा जो लॉस जो हम कह रहे हैं नकारात्मक जो काम हो सकता है उसको किस तरीके से बिल्कुल ही न्यूनतम रखें और प्रोसेसिंग हमको बेनिफिट सबसे ज्यादा दे। बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आजकल इसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि नकारात्मक को कम कर सकें, सकारात्मक को सबसे ज्यादा बढ़ा सकें, और ये काम हम सबसे कम मूल्य इन्वेस्टमेंट करके कर सकें, ताकि हमारे किसानों को और रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम न्यूट्रिशन जो लॉस हो गया है प्रोसेसिंग प्रसंस्करण
1: जी
0: में, तो उसको किस तरीके से वापस भी मिलाया जा सके, तो वो भी किया जाता है।
1: बात आती है कि हमने प्रसंस्करण यूनिट कोई तैयार की और हम किसी भी कृषि उत्पाद का या अन्य किसी भी वस्तु का प्रसंस्करण कर रहे हैं, लेकिन जब वो बाजार में जाएगा तो हमने देखा है कि कोई भी चीज हम जब खरीदेंगे तो किसी डिब्बे में मिलेगी, किसी पैकेट में मिलेगी, उस पर कुछ ना कुछ लिखा भी होगा, जो भी उपभोक्ता होगा वो पढ़कर खरीदेगा। तो इसमें विशेष जो ध्यान देना है, जहां तक हमारे साथी और हम भी समझ रहे हैं, कि वो पैकिंग और लेबलिंग का होता है, तो इस पे आप जरूर हमारे साथियों को बताएं।
0: क्योंकि अब हम प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस प्रोडक्ट हो
1: जी
0: गया, और ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, ये जरूरी है। भारत सरकार FSSAI के थ्रू ये मैंडेटरी है, जरूरत है इसकी, के प्रोडक्ट पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए, जिसके बिना हम एक प्रोसेस प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर एंड यूजर को नहीं बेच सकते हैं,
1: जी
0: जिसके अंदर उस प्रोडक्ट का नाम, उसका उसमें कितना अमाउंट है, उसका वजन कितना है, और उसके साथ साथ क्या उसका न्यूट्रिशन है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना वसा है, कितना फैट है, ये सब चीजें लिखना जरूरी है। क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस किस रॉ मटेरियल से बनाया गया है। जैसे कि हम अगर मैं टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस की ही बात करूं तो उसमें सिर्फ टमाटर तो नहीं है, उसमें कुछ चीनी भी मिला है तभी वो मीठा है, उसमें
1: बिल्कुल
0: थोड़ा एसिड भी मिला है ताकि उसमें अलग खटास आए। तो वो सब चीजें लिखना अनिवार्य है, ये इन्फॉर्मेशन रीडर के पास पहुंचना मैंडेटरी है। साथ ही साथ किस तारीख को बनाया गया था, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया, क्या उसको यूज बाय डेट है, कब तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीजें लिखना इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत लंबी लिस्ट है जो FSSAI ने जारी करी।

0: ये सारी चीजें लेबल पे लिखना इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर भी आपके पैकेट पे होना मैंडेटरी है।
1: यानी कि प्रसंस्करण यूनिट का हमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और
0: बिल्कुल
1: तब हम इसको बाजार में बेच सकते। अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें, मान लिया कि जैसे भी आपने कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो खेती कर रहे हैं, उनके पास रॉ मेटेरियल है, लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिनके पास कृषि से संबंधित कोई उत्पाद नहीं है, जो सीधा उत्पाद लेंगे और बाद में इसको प्रसंस्कृत करेंगे, तो रोजगार की दृष्टि से इसको कैसे देखना चाहिए?
0: कि रोजगार की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और
1: जी
0: भारत में ये बढ़ता ही जा रहा है। प्रोसेस फूड का मार्केट, प्रसंस्करण, हेल्दी प्रसंस्करण का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इस हिसाब से सोचते हैं तो जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं भी है, उन लोगों को भी ये सोचना है कि उनके आसपास क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, रॉ मटेरियल कौन सा अवेलेबल है, ताकि वो उसे ले सकें और अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोसेस करके अपनी निश मार्केट में बेचें। स्पेशलाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट के, आप जो बना रहे हैं वो मार्केट के अवेलेबल प्रोडक्ट से थोड़ा सा फर्क हो, उसमें कुछ ज्यादा बेटर हो, ताकि आप उस मार्केट को टैप कर सकें। और ये रोजगार का आज की डेट में एक बहुत ही मेजर, इंडिया में सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
1: यदि हम बात करते हैं रोजगार की दृष्टि से अपने किसान भाई बहनों को या युवाओं को जो लाभ है वो निश्चित रूप से मूल्य संवर्धन से मिलेगा, लेकिन वहीं जब प्रसंस्कृत उत्पादों की बात आती है कि बेचने के लिए मार्केट कहाँ तैयार होगी, तो इसमें कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो हमें मार्केट के लिए देखने चाहिए हमारे साथियों को, तब हमें वो कार्य शुरू करना चाहिए कि इससे अच्छा लाभ हमारे साथी ले सकें?
0: देखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम सीख तो लेंगे बनाना, बट प्रोडक्ट बनने के बाद उसको बेचना कहाँ है।
1: जी
0: अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है ना कि हमारी आय वृद्धि हो,
1: बिल्कुल
0: तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो चीज बना रहे हैं उसकी मार्केट क्या है। हमको ये सोचना चाहिए और किस मूल्य के उसका प्राइस होना चाहिए कि हम किस मार्केट में उसको बेचना चाहते हैं। क्या हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या हम देश से बाहर उसे भेजना
1: जी
0: चाहते हैं, क्या हम अपने ही देश में बेचना चाहते हैं, या हम अपनी रीजनल मार्केट में बेचना चाहते हैं। रॉ मटेरियल ले लिया, प्रोडक्ट प्रोसेस कर लिया, लेकिन किस कंपनी में जाएगा? क्या हम मिड सेगमेंट में बेच रहे हैं, किसी सेकेंडरी मार्केट में बेच रहे हैं, या हम एंड यूज प्रोडक्ट बना रहे हैं? तो अगर एंड यूज प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे, क्या हम मंडी में बेचेंगे, क्या हम दुकानों पे बेचेंगे? तो ये सब कुछ मार्केट का पूरा रिसर्च करना, प्रोसेसिंग में घुसने से पहले हमें ये पूरा चैनल सोच कर रखना चाहिए। सिर्फ बना लेना प्रोडक्ट एक पार्ट ही है, उसको बेचना मूल्य संवर्धन का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
1: यानी कि पहले से जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ इसको बेचा जा सकता
0: जी
1: है।
0: हाँ,
1: तो कुछ ऐसे जो प्रगतिशील हमारे किसान भाई बहन होंगे या कोई ऐसे साथी होंगे, तो हमारे साथियों को यदि वो देखना चाहें पहले कि भाई ऐसा कौन कर रहा है और क्या क्या लाभ हो रहा है, जैसे प्रशिक्षण की बात आई या प्रशिक्षण की जानकारी वो वहां से लेना चाहें, तो उस पर आप क्या सलाह हमारे साथियों को देंगे?
0: देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हर स्टेट में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, KVKs हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, वहां पर भी प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसी एरिया के क्रॉप के हिसाब से। तो जिस एरिया में वो KVK है उसके आसपास क्या क्रॉप उगता है उसी के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग प्लान की जाती है। अगर मैं दिल्ली क्षेत्र की करूँ तो हमारे संस्थान में भी समय समय पर अलग अलग प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसी बेसिस पे अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन दूँ तो 5 से 10 अक्टूबर की हमारे ही संस्थान में फूड प्रोसेसिंग की एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है और इसकी इन्फॉर्मेशन IRI की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो जरूर कर सकता है।
1: जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन खेती कर रहे हैं और धान की फसल तैयार है, कटाई पे आ रही है, तो आप इन किसान भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे यदि ये प्रसंस्करण चुने धान के क्षेत्र में, तो कौन कौन से उत्पादों को लेकर ये बना सकते हैं?
0: धान के क्षेत्र में
1: जी
0: बहुत ही सारे तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम राइस प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम सोचते हैं तो राइस का पफ, राइस फ्लेक्स हो गए, या फिर पोहा जिसे हम कहते हैं, ये राइस के डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं। अदरवाइज राइस का आटा,
1: जी
0: राइस फ्लार, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है, सूप में, गाढ़ा करने में। तो बहुत सारी इंडस्ट्री राइस के आटा को लेना चाहती है। इस तरीके से हम प्रोडक्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये काम किया जा सकता है। कम कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में भी ये काम किया जा सकता है।
1: यदि हम बागवानी के किसानों को कुछ ना कुछ सलाह देना चाहें, चाहे वो आम है, सेब है, नाशपाती है, अन्य कोई भी उन्होंने जैसे कि संतरा है, तो ये किसान भाई बहन क्या कुछ प्रसंस्करण अपने उत्पादों का कर सकते हैं?
0: जी, सबसे पहले तो हमारे जो बागवानी फ्रूट्स हैं इनकी खुद की वैल्यू बहुत है।
1: जी
0: अगर ये फ्रेश कंज्यूमर तक पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा फॉर्म वही है, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल सबसे अच्छा है। लेकिन और उसकी मूल्य भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर हम प्रसंस्करण की तरफ जाने की बात सोचते हैं, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है,
1: जी
0: वो जल्दी खराब होता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। जूस एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया, आजकल तो बहुत अच्छे बिना प्रिजर्वेटिव वाले जूसेस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अगर हम उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं। जैम होता है एक प्रोडक्ट जिसे हम बना सकते हैं, कैंडी, इन सब चीजों का कैंडी भी बनाया जा सकता है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बनते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी रिटेन रहती है, तो हम वो बना सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं।
1: आलू के उत्पादन में हम प्रथम हैं और हमारा क्षेत्र भी आलू का बहुत अच्छा उत्पादक क्षेत्र है, तो
0: बिल्कुल
1: आलू के किसानों के लिए भी आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आलू के तो बहुत सारे हमने देखा है कि परिवार में भी ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और एक लंबे समय तक हमें परिवार में चाहिए, तो क्या आप सलाह हमारे किसान भाइयों को
0: आलू
1: देंगे?
0: तो हम

0: हमारे देश का मेजर फूड है, मतलब
1: जी
0: हमेशा से रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे देश को हेल्दी बनाने में। आलू का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो आलू के बहुत ही सारे प्रसंस्कृत उत्पाद बनाए जा सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। आलू का पाउडर, आलू के आटा, आलू
1: जी
0: का चिप्स बनता है, आलू का पकौड़ा बनता है, तो ऐसे बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स हैं पोटेटो के जो बनाए जा सकते हैं। अगर हम वैल्यू प्रसंस्करण की बात करते हैं तो आलू के चिप्स हमारे देश में बहुत समय से बन रहे हैं, लेकिन अब सोचिए उसको थोड़ा सा मूल्य संवर्धन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम आलू में, आलू का जब हम बैटर बना रहे हैं, दो तरीके के बनते हैं चिप्स, या तो काट के बन गए
1: जी
0: या फिर उसका पूरा मैश करके चूरा बना के फैला के बने। अगर मैश चूरा करके फैला के बनाया जा रहा है तो हम आलू के साथ अगर हम उसमें कुछ और सब्जी भी मिला दें, मानिए बीटरूट मिला दिया या मोरिंगा मिला दिया, मोरिंगा बहुत आयरन का रिच सोर्स है, बीटरूट बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है, उसके जब हमने चिप्स बनाए तो हमारे चिप्स दिखने में भी अच्छे हैं क्योंकि वो थोड़े लाल रंग के हो गए, साथ ही साथ उसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ गया है। तो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा बनती है। मूल्य संवर्धन का मतलब ये है, एक तो प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाया, साथ ही साथ उसमें हम कुछ ऐसा इंटरवेंशन कर दें कि हमने उसको पहले से बेटर बना दिया है, तो उस तरीके के आलू के बहुत ही सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं।
1: चलते चलते हम अपने कार्यक्रम में बताना चाहें कि हम प्रसंस्करण को क्यों चुने, हमें चुन लेना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए, हमें इसके विषय में जागरूक रहना चाहिए, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या कहेंगे?
0: जी, मैं ये कहूंगी कि सच तो ये है कि फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश खाना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ जैसे हमारी दिनचर्या बढ़ रही है, जैसे हम लोगों कामकाजी होते जा रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंज आता है, तो
1: जी
0: हमारा गोल ये है कि प्रसंस्कृत उत्पाद जो हमें थोड़ा सा कन्वीनियंस दे, वो इस तरीके से बनाया जाए कि वो बहुत न्यूट्रिटिव हो, उसमें कोई नकारात्मक चीज नहीं आए, उसकी मार्केट भी बढ़े और हम सबको उसमें मल्टी लेवल बेनिफिट हो। किसानों को बेनिफिट होना चाहिए कि उनकी आय की वृद्धि हो रही
1: जी
0: है, प्रोसेसर्स को बेनिफिट होना चाहिए कि उनको कामकाजी मिल रहा है, और कंज्यूमर उनको बेनिफिट होना चाहिए कि उनको न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट, अच्छी पोषक तत्वों वाला प्रोडक्ट आसानी से मिल रहा है। तो ये तीनों लेवल में हमें मदद करता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब आप जैसे देश के वैज्ञानिक कार्यक्रम में आते हैं, उनकी सलाह हमारे श्रोताओं तक तो पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं मन में रोमांच होता है, एक उत्साह उन्हें मिलता है कि इतनी अच्छी जानकारी के साथ हम अपनी आय में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। डॉक्टर बिंदवी अरोड़ा, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन द्वारा अधिक आय, और हमारे बीच जानकारी दे रही थी डॉक्टर बिंदवी अरोड़ा, वैज्ञानिक, हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से।
1: मित्रों, कार्यक्रम किसान वाणी में बातचीत के बाद समय है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं एक लोकगीत।

0: अभी आपने सुना एक बहुत ही सुंदर सा लोकगीत।
1: मित्रों, लोकगीत के बाद कार्यक्रम किसान वाणी में समय है मौसम का हाल, क्योंकि किसानों के लिए मौसम का पूर्वानुमान बहुत ही आवश्यक होता है। आगे आने वाले मौसम का हाल यदि हम जाने तो हम अपने फसलों का सही से ध्यान रख सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हल्की फुल्की धूप छाई रहेगी, वहीं कुछ बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। यदि हम बात करें अधिकतम तापमान की तो यह 31 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
0: और अमित, अब बात करते हैं कृषि सलाह की। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि मौसम में बदलाव के बीच किसानों को धान समेत दूसरी फसलों में रोग और कीटों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।
1: जी
0: साथ ही इसमें धान की फसल की लगातार निगरानी करने के साथ अगेती मटर और गाजर की बुआई और सरसों की अगेती खेती की तैयारी करने की भी सलाह दी गई है। और इसके अलावा सब्जियों में कीट और रोग दिखाई देने पर समय नियंत्रण के उपाय अपनाने को भी कहा गया है।
1: वहीं यदि बात करें हम अपने सभी किसान भाइयों से कि भाई जो अगेती मटर की बुवाई करना चाहते हैं तो कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक वो बुवाई कर सकते हैं। इसके लिए पूसा प्रगति जैसी उन्नत किस्म का चुनाव किया जा सकता है और बुवाई से पहले बीजों को कवकनाशी कैप्टन या थायरम से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। और भाई जो आने वाले दिनों में सरसों की अगेती बुवाई करना चाहते हैं तो हमारे किसान भाई बहन अभी से बीज और खेत की तैयारी करें ताकि उनका उत्पादन अच्छा हो। इसके लिए भी किसान पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा तारक, पूसा महक जैसी किस्मों के बीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये थी कृषि सलाह।
0: तो कार्यक्रम किसान वाणी कैसा लगा आपको? ये आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं जरूर हम तक पहुंचाएं, और इसके लिए आप हमें सीधे ईमेल कर सकते हैं feedback@gmail.com पर।
1: आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही। अनुमति दीजिए किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में SIR दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए उद्यम संवाद का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को ISINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। सुनवाई केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऑनलाइन की जाएगी। यदि सुनवाई आवश्यक हो तो मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि SIR के दौरान जिनका नाम छूट गया है वे अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो वे संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नामांकन के लिए तत्काल विशेष अभियान शुरू करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी पर्याप्त संख्या में सहायता केंद्र स्थापित करेंगे और रात्रि आश्रयों में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों और बेघरों के लिए विशेष शिविर आयोजित करेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध के बाद आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ATS वाहन फिटनेस जांच व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: बुराड़ी स्थित इस 5 लेन वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की प्रतिवर्ष 1,00,000 वाहनों की फिटनेस जांच करने की क्षमता है। बुराड़ी ATS में 40,000 भारी मोटर वाहनों और 60,000 हल्के मोटर वाहनों की वार्षिक जांच की जा सकेगी। यहां वाहनों के फिटनेस का परीक्षण पूरी तरह स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसमें ब्रेक दक्षता, सस्पेंशन प्रदर्शन, हेडलाइट की स्थिति, साइड स्लिप, उत्सर्जन स्तर और वाहनों के निचले हिस्से की जाँच सहित विभिन्न मानकों का परीक्षण किया जाएगा। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह 5 लेन वाला आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन वाहनों की फिटनेस जांच को वैज्ञानिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही फिटनेस, सटीक जांच और बेहतर निगरानी से प्रदूषण के खिलाफ मजबूत प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री और राजौरी गार्डन विधानसभा से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में पंजाब डेयरी मुखर्जी पार्क से संत नगर एक्सटेंशन तक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि सुभाष नगर नाले से होकर गुजरने वाली सड़क की स्थिति पिछले 10 से 15 सालों से बेहद बदहाल थी।
3: ये बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी थी कि हमें सड़कों के ऊपर से तारों को भी हटाना है। ये तारों का जंजाल इस इलाके में फंसा हुआ था जिसके कारण सुभाष नगर ड्रेन के साथ साथ लोगों को चलने में दिक्कत आती थी, जगह जगह ट्रांसफार्मर थे, सड़क इतनी छोटी हो चुकी थी। अभी सारी की सारी जो आप तारें देख रहे हैं ओवरहेड, इन सबको खत्म किया जा रहा है। 300 करोड़ के यहाँ पे आज काम चल रहे हैं जिनके कारण इस इलाके के लोगों के पास साफ पानी, नई सीवेज की लाइने, नई सड़कें, नई लाइटें और सारे कूड़ेदान को हटाने का काम किया गया।
0: श्री सिरसा ने कहा है कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से स्थानीय निवासियों और राहगीरों को जाम से मुक्ति मिलेगी तथा आवागमन पूरी तरह सुरक्षित और सुगम होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में उद्यम संवाद 2026 का आयोजन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में एमएसएमई, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, उद्योग संघों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर सरकारी सहायता और विकास, नवाचार तथा व्यवसाय विस्तार के अवसरों पर विचार विमर्श किया।
1: इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जहां उद्यमी को केवल बिजनेस आइडिया और मॉडल तय करना हो और सरकार हर चरण में उसका सहयोग करे।
2: हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम उनके लिए एक एसेट बने, हम उनकी सपोर्ट इस तरह से करें जैसे किसी प्राइवेट आदमी को उम्मीद होती है कि मैं अगर दरवाजा खड़काऊंगा मुझे सर्विस मिलेगी। दिल्ली सरकार अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर रही है। दिल्ली के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं, हम जगह जगह पे वहाँ पे बिजनेस सेंटर बना रहे हैं, वहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स लोग अपने रख पाए सामने एग्जीबिशन में और बायर आकर देख पाए, ये कंसेप्ट ला रहे हैं।
1: एक दिवसीय उद्यम संवाद 2026 में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम तथा निर्यात संबंधी योजनाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा स्टार्टअप योजनाओं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की योजनाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए। सकलेन अख्तर के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: दिल्ली नगर निगम एमसीडी का खतरनाक भवनों, अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान जारी है। निगम ने बताया कि आज चलाए गए अभियान में 15 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई, जबकि 6 संपत्तियों को भी सील किया गया। निगम के अनुसार भवन निर्माण संबंधी निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन मामले में 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। निगम ने कहा कि अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम के पूर्वी जोन ने आज राजधानी एनक्लेव पार्क क्षेत्र में मेगा स्वच्छता अभियान तथा गुजरात विहार से कड़करी मोड़ तक विशेष रोड डस्ट क्लीनिंग ड्राइव चलाया। निगम ने बताया कि इस मेगा अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों की सफाई, कचरे और मलबे के निस्तारण तथा सड़क किनारे जमा धूल को हटाने पर विशेष जोर दिया गया। निगम के अनुसार अभियान के तहत लगभग 8 टन मलबा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और रोड डस्ट हटाया गया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समितियां संबंधित त्योहारों के लिए स्थानों की समीक्षा और अंतिम रूप देने के साथ साथ आयोजन स्थलों पर आवश्यक नागरिक सुविधाओं, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, बिजली, चिकित्सा तथा अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि राजधानी में इन प्रमुख धार्मिक पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं और आयोजन समितियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पर्वों से लाखों लोगों की श्रद्धा और भावनाएं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा, भक्ति और आत्मीयता के साथ अपने पर्व मना सकें और उन्हें आयोजन पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है ताकि धार्मिक आयोजनों में सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और सौहार्द का वातावरण बना रहे। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फिजियोथेरेपी एशिया वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वस्थ और अधिक सक्रिय जीवन के निर्माण में फिजियोथेरेपी के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में फिजियोथेरेपी केवल एक पेशा मात्र नहीं है बल्कि यह एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र के रूप में विकसित हुई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि फिजियोथेरेपी सबसे महत्वपूर्ण उपचारात्मक इलाजों में से एक है।
4: कोई भी इंजर्ड स्पोर्ट्स पर्सन केयर के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो पाता है और फिटनेस सिर्फ सर्जरी नहीं मांगती, फिटनेस प्रिवेंटिव केयर मांगती। फिटनेस उन सभी थेरेपीज को चाहती है जिसके कारण से आप एक हेल्दी लाइफ जी सके। और आज की डेट में मैं मानती हूँ कि फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसकी जरूरत मुझे, आपको, हम सबको अपने इस पूरा डे केयर में जरूरत पड़ती है।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि भारत और चिली भले ही दुनिया के दो अलग अलग छोर पर स्थित हों, लेकिन दोनों देशों की आत्मा, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं में गहरा जुड़ाव है। उन्होंने चिली की राजधानी सैंटियागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और चिली के बीच संबंधों की वास्तविक शक्ति दोनों देशों के लोगों के बीच बने विश्वास, आत्मीयता और मित्रता में निहित है। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय समुदाय केवल भारत से जुड़े लोगों का समूह नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in को लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तर्जिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चन्नप्पा और वेलावलन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय मौसम साफ रहा, हालांकि शाम के समय कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में SIR दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए उद्यम संवाद का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है मुशायरा।
6: सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मुशायरा। शायर

0: और इसके अलावा दीगर मजालिस में भी आप इनके अशार से रूबरू होते रहते हैं, और इनके अशार का ही ये कमाल है कि ये साहब दिखते तो नहीं हैं लेकिन हैं ये शायर। गालिब ने ही कहा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो ये जो जज्बा था इनके शायरी में, ये जज्बा नज़र आ रहा था। सामईन कराम, आइए अपने शेरी सफ़र को अब आगे बढ़ाते हैं और ऐसी शायरा के हुजूर चलते हैं जो अपने कलाम के साथ साथ खुद अपने आप में भी खूबसूरत हैं। तो आइए उनके शेर से हम महसूस होते हैं और उनके हुजूर चलते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अशार सुनाएं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इतनी तारीफ़ के मैं काबिल तो नहीं, लेकिन आपकी ज़र्रा नवाजी है। गज़ल के कुछ अशार देखिए कि चांद को अब्र में छुपने का हुनर आया है।
0: चांद को अब्र में छुपने का हुनर आया है।
1: चांद को अब्र में छुपने का हुनर आया है, फिर वही जलवे जानाना नजर आया है।
0: क्या बात।
1: फिर वही जलवे जानाना नजर आया है।
0: क्या बात।
1: हमने कंदील जलाई है मोहब्बत की सदा।
0: क्या बात। हमने कंदील जलाई है मोहब्बत की सदा।
1: हमने कंदील जलाई है मोहब्बत की सदा, जब भी नफरत के अंधेरों का खतर आया है।
0: क्या बात। बहुत खूब।
1: जब भी नफरत के अंधेरों का खतर आया है, दिल के औराक पे तेरा ही लिखा नाम फकत।
0: क्या बात है। दिल के औराक पे,
1: दिल के औराक पे तेरा ही लिखा नाम फकत। इश्क की है ये अदा जिसका असर आया है।
0: क्या बात है। क्या कहने।
1: इश्क की है ये अदा जिसका असर आया है, उसने किरदार को रुस्वा कभी होने न दिया।
0: उसने किरदार को कभी रुस्वा होने न दिया।
1: उसने किरदार को रुस्वा कभी होने न दिया, जिसमें हक बात को कहने का जिगर आया है।
0: क्या बात है। बहुत।
1: जिसमें हक बात को कहने का जिगर आया है। बहुत शुक्रिया। क्यों शिकायत है भला शम्मा से परवानों को।
0: क्या बात है।
1: क्यों शिकायत है भला शम्मा से परवानों को, नाम से जिसके है रोशन वो अगर आया है।
0: क्या बात।
1: नाम से जिसके है रोशन वो अगर आया है। बहुत शुक्रिया। उसने कांटों पे नवाजिश की निगाहें रखी।
0: उसने कांटों पे नवाजिश की
1: निगाहें। उसने कांटों पे नवाजिश की निगाहें रखी, और फूलों पे तासुब का शरर आया।
0: क्या बात है। क्या बात है।
1: और फूलों पे तासुब का शरर आया है। और शेर देखिए कि ख्वाब आंखों में रुमैसा ने बसाया जिसका।
0: क्या बात।
1: ख्वाब आंखों में रुमैसा ने बसाया जिसका, आज किस्मत से वो नायाब गौहर आया है।
0: क्या बात। क्या बात।
1: आज किस्मत से वो नायाब गौहर आया है। और दूसरी गजल से कुछ अशार देखिए कि अदब है विरसे में उसके वो बेमिसाल भी है।
0: क्या बात।
1: अदब है विरसे में उसके वो बेमिसाल भी है, वो हम सफर ही नहीं मेरा हम ख्याल भी है।
0: क्या बात।
1: बहुत शुक्रिया। वो हम सफर ही नहीं मेरा हम ख्याल भी है, गमों के आंसू हो आंखों में या खुशी चमके।
0: क्या बात।
1: गमों के आंसू हो आंखों में या खुशी चमके, वो दिल का हाल समझने में बाकमाल भी है।
0: क्या बात।
1: वो दिल का हाल समझने में बाकमाल भी है। अभी है मसनदें ऊंची तो शोहरतें भी नई। अभी है मसनदें ऊंची तो शोहरतें भी नई, मगर ये याद रहे एक दिन जवाल भी है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मगर ये याद रहे एक दिन जवाल भी है, हो भाईचारे को नुकसान दुश्मनी फैले।
0: क्या बात।
1: हो भाईचारे को नुकसान दुश्मनी फैले, ये शर पसंदों की साजिश भी है और चाल भी है।
0: क्या बात।
1: ये शर पसंदों की साजिश भी है और चाल भी है। और शेर बतौर खास देखिए, जो वालदैन की शफकत भरी दुआएं मिले।
0: क्या बात है।
1: जो वालदैन की शफकत भरी दुआएं मिले, वही है साया उल्फत, वही तो ढाल भी है।
0: क्या बात।
1: वही है साया उल्फत, वही तो ढाल भी है। कभी ना दुनिया की चाहत में खुद को कैद करो। कभी ना दुनिया की चाहत में खुद को कैद करो, ये चंद रोज की खुशियों का एक जाल भी है।
0: क्या बात।
1: ये चंद रोज की खुशियों का एक जाल भी है। और मक्ता देखिए कि कशिश है ऐसी कि उससे न बच ही पाओगी।
0: कशिश है ऐसी
1: कि उससे न बच ही पाओगी, रुमैसा उसका है जो वो ही तेरा हाल भी है।
0: क्या बात है। क्या बात।
1: रुमैसा उसका है जो वो ही तेरा हाल भी है। और दूसरी गजल से देखिए कुछ अशार के, यही हुनर था।
0: यही हुनर था
1: वो खुद को नहीं सिखा पाए।
0: क्या बात।
1: यही हुनर था वो खुद को नहीं सिखा पाए, मोहब्बतों को कभी जो नहीं जता पाए।
0: क्या बात।
1: मोहब्बत।

0: मैं
1: को कभी
0: जी
1: जो
0: जो
1: नहीं
0: नहीं
1: जता
0: जता पाए,
1: पाए, मेरी कशिश ही मेरे लहजे में है पोशीदा।
0: मेरी कशिश ही
1: मेरी कशिश ही मेरे लहजे में है
0: मैं
1: पोशीदा,
0: पोशीदा।
1: मेरी तरह न कोई और तुम बना पाए।
0: क्या बात
1: वाह
0: है, क्या
1: वाह बहुत
0: कहना है,
1: शुक्रिया।
0: बहुत सुंदर, क्या
1: मेरी
0: कहना है,
1: तरह न कोई और
0: बहुत
1: तुम बना
0: सुंदर।
1: पाए, खुशी बहुत है कि घर चांदनी से चमका है।
0: क्या बात,
1: खुशी बहुत
0: बहुत
1: है कि
0: है,
1: घर चांदनी से चमका है, सितम ये क्या कि नहीं चांद को बुला पाए।
0: क्या
1: सितम
0: कहना
1: ये
0: है, क्या
1: क्या कि
0: बात,
1: नहीं
0: बहुत सुंदर,
1: चांद को बुला
0: क्या
1: पाए।
0: कहना,
1: ये जिंदगी का सफर मंजिलों की चाहत है,
0: क्या बात,
1: ये जिंदगी का
0: क्या
1: सफर
0: सफर
1: मंजिलों
0: मंजिलों
1: की
0: की
1: चाहत
0: चाहत है।
1: है।
0: वाह
1: यही तो बात थी खुद को नहीं बता पाए,
0: क्या कहना,
1: यही
0: क्या कहना,
1: तो
0: क्या
1: बात
0: कहना,
1: थी
0: वाह
1: खुद
0: वाह
1: को
0: वाह,
1: नहीं
0: नहीं बता
1: बता
0: पाए, क्या
1: पाए।
0: कहना।
1: वो जानते थे गलत है दिखावा करना मगर, वो जानते थे गलत है दिखावा
0: दिखावा
1: करना
0: करना
1: मगर,
0: मगर,
1: इबादतों का नहीं राज वो छुपा पाए।
0: क्या बात है, वाह, क्या
1: इबादतों
0: कहना
1: का
0: है, क्या
1: नहीं
0: कहना है,
1: राज वो छुपा पाए।
0: क्या कहना।
1: हजार जख्म भी खाकर ही मुस्कुराना है,
0: हजार जख्म
1: हजार जख्म भी खाकर ही मुस्कुराना
0: खाकर,
1: है, ये तीर बातों के मुझको नहीं रुला पाए।
0: क्या क्या बात,
1: ये
0: वाह
1: तीर
0: वाह
1: बातों के
0: वाह,
1: मुझको नहीं
0: नहीं
1: रुला
0: रुला पाए,
1: पाए।
0: वाह,
1: और आखिरी शेर देखिए कि हवा के नर्म से झोंकों में खुशबुएं जो घुली,
0: क्या
1: हवा
0: बात है,
1: के नर्म से झोंकों में खुशबुएं जो घुली, ख्याल यार से खुद को नहीं बचा पाए।
0: क्या बात है, क्या कहना
1: ख्याल
0: है, बहुत
1: यार से
0: खूब,
1: खुद
0: खुद
1: को
0: को
1: नहीं
0: नहीं
1: बचा
0: बचा पाए,
1: पाए।
0: क्या कहने, बहुत सुंदर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और चंद अशआर हैं गज़ल से। जो हकीकत में इश्क वाले हैं,
0: क्या बात है,
1: जो हकीकत में इश्क
0: इश्क
1: वाले
0: वाले हैं,
1: हैं, फूल खुशबू की बात करते हैं।
0: क्या कहना, क्या
1: जो
0: बात,
1: हकीकत में इश्क वाले हैं, फूल खुशबू की बात
0: बात करते
1: करते हैं।
0: हैं,
1: क्यों अंधेरे हैं चुपते आंखों में, क्यों अंधेरे हैं
0: मेरे
1: चुपते
0: चुपते
1: आंखों
0: आंखों
1: में,
0: में,
1: क्या उजालों से मेरे नाते हैं,
0: क्या
1: क्या
0: बात है,
1: क्या
0: क्या बात
1: उजालों
0: है,
1: से मेरे नाते हैं। एक नज़र उनकी एक नेमत है,
0: क्या बात है,
1: एक
0: बहुत
1: नज़र
0: सुंदर,
1: उनकी एक नेमत
0: नियमत
1: है,
0: है,
1: एक नज़र के लिए ही जीते हैं,
0: क्या क्या
1: क्या एक
0: क्या बात
1: नज़र
0: है
1: के लिए ही जीते हैं। लफ्ज़ खो दें जहाँ पे वक्त हम,
0: जी,
1: लफ्ज़
0: लफ्ज
1: खो
0: खो
1: दें
0: दे
1: जहाँ पे
0: जहाँ,
1: वक्त हम, ऐसी महफिल में होंठ सीते हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत
0: वाह वाह
1: शुक्रिया।
0: वाह, बहुत सुंदर,
1: ऐसी महफिल में होंठ सीते हैं। और शेर बतौर ख़ास देखिए, क्या तहफ़्फ़ुज़ भी मिल सकेगा हुजूर,
0: क्या तहफ़्फ़ुज़ भी मिल सकेगा
1: क्या
0: हुजूर,
1: तहफ़्फ़ुज़ भी मिल सकेगा हुजूर, जन को आज़ादियां तो देते हैं,
0: क्या बात है,
1: जन को
0: वाह वाह वाह,
1: आज़ादियां
0: बहुत
1: तो
0: वाह,
1: देते
0: देते हैं,
1: हैं।
0: बहुत सुंदर,
1: उनके लहजे हैं किस कदर शीरीं,
0: उनके लहजे हैं किस
1: उनके
0: कदर
1: लहजे
0: शीरीं,
1: हैं
0: हैं
1: किस
0: किस
1: कदर
0: कदर
1: शीरीं,
0: शीरीं,
1: तलखियों से भी लुत्फ़ लेते हैं,
0: क्या बात है, क्या
1: तलखियों
0: बात
1: से
0: है,
1: भी लुत्फ़
0: वाह
1: लेते
0: वाह वाह,
1: हैं।
0: बहुत सुंदर,
1: दर्द तो बढ़ गए ख्यालों में,
0: दर्द तो बढ़
1: दर्द
0: गए
1: तो
0: ख्यालों
1: बढ़
0: में,
1: गए
0: गए
1: ख्यालों
0: ख्यालों
1: में,
0: में,
1: लेके एहसास हम अकेले हैं,
0: क्या बात है,
1: लेके
0: वाह वाह वाह
1: एहसास
0: वाह,
1: हम अकेले हैं।
0: क्या क्या,
1: थक के बैठी हुई हैं उम्मीदें, थक
0: थक के
1: के
0: बैठी
1: बैठी
0: हुई हैं
1: हुई हैं
0: उम्मीदें,
1: उम्मीदें, थक के बैठी हुई हैं उम्मीदें, हौसले हैं के साथ रहते हैं,
0: क्या कहना,
1: हौसले
0: क्या बात है,
1: हैं
0: क्या
1: के
0: बात
1: साथ
0: है,
1: रहते
0: हौसले
1: हैं।
0: हैं कि साथ
1: और
0: रहते हैं, साथ
1: मक्ता
0: रहते हैं,
1: देखिए, क्यों रुम ऐसा करूँ ना शुक्रे खुदा,
0: क्या बात है,
1: क्यों रुम ऐसा करूँ
0: क्यों
1: ना
0: ना
1: शुक्रे
0: शुक्रे
1: खुदा,
0: खुदा,
1: सर पिसाए मेरे उसी के हैं, सर
0: क्या
1: पिसाए
0: कहना,
1: मेरे
0: क्या
1: उसी के
0: बात,
1: हैं।
0: वाह वाह
1: बहुत
0: बहुत खूब,
1: शुक्रिया, बहुत
0: बहुत खूब,
1: शुक्रिया।
0: वाह वाह, बहुत उम्दा, उनके लहजे हैं किस कदर शीरीं, उनके लहजे हैं किस कदर शीरीं, तलखियों से भी लुत्फ़ लेते हैं। सामीन कराम, ये थी रुमैसा रहमान, आप उनकी गज़लों से महजूज़ हो रहे थे। तो आइए हम अपने इस शेरी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और लंकेश गौतम के हुजूर चलते हैं और उनसे उनके अशआर सुनते हैं। लंकेश गौतम,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल सा अशआर देखें।
1: इरशाद,
2: कुछ नहीं तो इश्क ही कर जाइए,
0: क्या कहना,
2: कुछ नहीं
0: कुछ
2: तो
0: नहीं तो
2: इश्क ही
0: इश्क
2: कर
0: कर
2: जाइए,
0: जाइए,
2: कुछ नहीं तो इश्क ही कर जाइए, इश्क करिए और फिर डर जाइए।
0: क्या
2: क्या
0: बात,
2: कहने,
0: इश्क करिए और फिर डर जाइए,
2: फिर डर जाइए, कुछ नहीं तो इश्क ही कर जाइए, इश्क करिए और फिर डर जाइए। उनसे खाली हाथ मिलने जाएंगे,
0: वाह,
2: उनसे खाली हाथ मिलने जाएंगे, आंख ही अपनी जरा भर जाइए।
0: क्या
2: क्या
0: कहने,
2: बात
0: वाह
2: है,
0: वाह
2: क्या
0: वाह वाह,
2: बात है,
0: बहुत
2: क्या
0: उम्दा,
2: बात, सांस तोड़े जाइए बीमार की,
0: है
2: सांस तोड़े
0: तोड़े
2: जाइए
0: जाइए बीमार
2: बीमार
0: की,
2: की, जाइए सीने पे चल कर जाइए।
0: वाह
2: क्या
0: वाह
2: बात
0: वाह
2: है,
0: वाह,
2: बहुत
0: क्या
2: उम्दा,
0: कहने, वाह वाह,
2: जाइए सीने
0: जाइए
2: पर चल सीने पे
0: जाइए,
2: चल
0: चल
2: कर
0: कर
2: जाइए।
0: जाइए, क्या कहने,
2: मैं कदा भी ठीक है वहशत में लेक,
0: मैं कदा भी ठीक है
2: मैं
0: वैसे
2: कदा
0: न
2: भी
0: भी
2: ठीक
0: ठीक
2: है
0: है,
2: वहशत में लेक, हो सके तो यार के घर जाइए।
0: क्या
2: क्या
0: कहने,
2: बात है,
0: वाह वाह वाह वाह,
2: वाह
0: बहुत
2: वाह,
0: उम्दा, हो सके तो यार
2: हो
0: के घर
2: सके तो
0: जाइए।
2: यार के घर जाइए,
0: क्या कहने,
2: कुछ तो हो जिसके सबब याद आए आप,
0: क्या बात है, कुछ तो हो जिसके
2: कुछ तो
0: सबब,
2: हो जिसके सबब याद आए आप, एक दो इल्ज़ाम ही धर जाइए।
0: क्या
2: क्या
0: कहने,
2: बात
0: वाह
2: है,
0: वाह
2: क्या
0: वाह,
2: बात
0: बहुत
2: है,
0: उम्दा,
2: एक दो इल्ज़ाम ही धर जाइए, छोड़िए मैं आखिरी मंजिल पे हूँ, छोड़िए मैं आखिरी मंजिल पे हूँ, आइए और आप भी मर जाइए।
0: क्या बात है, क्या बात है,
3: बहुत उम्दा।
2: एक और गजल से शार देखें। किया है कैद कि जिंदान कर दिया है मुझे,
0: क्या बात,
3: किया है कैद कि जिंदान कर दिया,
2: किया है कैद कि जिंदान कर दिया है मुझे, तेरे बदन ने परेशान कर दिया है मुझे।
0: क्या बात,
2: तुम्हारे हिजर ने आंखें निचोड़ ली हैं मेरी,
0: तुम्हारे
2: हिजर ने आंखें निचोड़ ली हैं मेरी, रुला रुला के बयाबान कर दिया है मुझे। तुम्हारे हिजर ने आंखें निचोड़ ली हैं मेरी, रुला रुला के बयाबान कर दिया है मुझे। नकाब पोश बड़ा कुफ्र हो गया तुझसे,
0: क्या बात,
2: नकाब पोश बड़ा कुफ्र हो गया तुझसे, नजर उठा के मुसलमान कर दिया है मुझे।
0: क्या बात है, क्या बात है,
2: तमाम हुस्न है वैसे तो अपनी दुनिया में,
0: क्या बात है,
2: तमाम हुस्न है वैसे तो अपनी दुनिया में, पर एक शख्स ने हैरान कर दिया है।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात,
2: तमाम हुस्न है वैसे तो अपनी दुनिया में,
3: एक शख्स ने हैरान कर दिया,
2: पर एक शख्स ने हैरान कर दिया है मुझे। उदास करना मुझे सहल तो नहीं यूं भी,
0: क्या बात है, उदास करना मुझे सहल तो नहीं,
2: उदास करना मुझे सहल तो नहीं यूं भी, फिर उसने वसल के दौरान कर दिया है।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है,
2: उदास करना मुझे सहल तो नहीं यूं भी, फिर उसने वसल के दौरान कर दिया है मुझे। किसी ने अपने बदन के जमाल से गौतम,
0: क्या बात,
3: किसी ने अपने बदन के जमाल से,
2: किसी ने अपने बदन के जमाल से गौतम, तलाश रूह से बेध्यान कर दिया है मुझे।
0: क्या बात है, क्या बात है,
3: बहुत उम्दा।
0: शायद इसी ख्याल को गालिब ने भी कहा था कि आशिक हूँ पे माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। उसी ख्याल को आपने बड़े खूबसूरती के साथ, जी जी।
2: एक और गजल देखें।
0: इरशाद, इरशाद,
2: दाना है आप लोग तो समझाइए मुझे,
3: दाना है आप लोग तो समझाइए मुझे,
2: दाना है आप लोग तो समझाइए मुझे, उसकी गली से खींच के ले आइए मुझे।
0: क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने,
2: दाना है आप लोग तो समझाइए मुझे, उसकी गली से खींच के ले आइए मुझे, फिर देखना कि जिस्म से फूटेंगे कैसे शेर, फिर देखना कि जिस्म से फूटेंगे कैसे शेर, उसकी जमीन वसल में दफनाइए मुझे।
0: क्या बात है, क्या बात है,
2: मिट्टी अब उनके वसल की जरखेज है पर आप, मिट्टी अब उनके वसल की जरखेज है पर आप, कूजा गरे फिराक से बनवाइए मुझे।
0: क्या बात है,
3: बहुत,
2: अपने बदन की धूप नहीं दे सकेंगे आप, अपने बदन की धूप नहीं दे सकेंगे आप, तो फिर किसी के साए में छोड़ाइए मुझे।
0: क्या बात, क्या बात,
3: बहुत,
2: शोखी और इंतजार का है आशिकी में लुत्फ, शोखी और इंतजार का है आशिकी में लुत्फ, कुछ और हिचकिचाइए तड़पाइए मुझे।
0: क्या बात है, क्या बात है,
3: कुछ और हिचकिचाइए
2: तड़पाइए मुझे,
0: इंतजार का लुत्फ लाजवाब,
2: शोखी और इंतजार का है आशिकी में लुत्फ, कुछ और हिचकिचाइए तड़पाइए मुझे।
3: बहुत,
2: लंकेश मुझको लौटने में देर हो गई, अब हो गई है देर तो पछताइए मुझे।
0: क्या बात है, क्या कहने, अच्छा, बहुत खूब,
3: हो गई है देर तो पछताइए मुझे।
2: एक और गजल देख लें।
0: अच्छा,
2: रहते हैं चश्मे वसल के सर पर सवार आप,
0: क्या बात,
3: रहते हैं,
2: रहते हैं चश्मे वसल के सर पर सवार आप, कैसे सहेंगे हिजर में गर्दो गुबार आप।
0: क्या बात है, क्या कहने,
3: बहुत,
2: लेकिन हुजूर जो मजा आवारगी में है,
3: लेकिन
2: हुजूर जो मजा आवारगी में है, रहिए शरीफ कीजिए नेकी हजार आप।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब,
2: करते हैं उसका जिक्र ही क्यों बात बात पर, करते हैं उसका जिक्र ही क्यों बात बात पर, लेते हैं उसका नाम ही क्यों बार बार आप।
0: क्या बात है, क्या बात है,
3: बहुत,
2: क्या आपको हुदूद दो आलम नहीं पता,
3: क्या
2: आपको हुदूद दो आलम नहीं पता, मरकद तक आ गए हैं गमे रोजगार आप।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
2: गौतम अगरचे आप भले आदमी नहीं, गौतम अगरचे आप भले आदमी नहीं, गजलें तो कह रहे हैं मगर शानदार आप।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: एक और गजल।

0: वसल का लम्हा हिजर का साल।
1: क्या बात है, वसल का लम्हा,
0: वसल का लम्हा हिजर का साल, सूखा पेड़ और एक गजाल।
1: क्या कहने,
0: वसल का लम्हा हिजर का साल, सूखा पेड़ और एक गजाल, मजनू गौतम एक सहाल, मजनू गौतम एक सहाल, खूब उदासी लंबे बाल।
1: क्या बात, क्या बात,
0: मजनू गौतम एक सहाल, खूब उदासी लंबे बाल, एक गजल में खत्म हुआ,
1: एक गजल में खत्म हुआ,
0: एक गजल में खत्म हुआ, शेर का सारा कच्चा माल।
1: क्या बात है,
0: ओस पड़ी तो टूट गई,
1: ओस पड़ी तो टूट गई,
0: ओस पड़ी तो टूट गई, फूलों से लिपटी कच्ची डाल।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: ओढ़ रखी थी दोनों ने,
2: ओढ़ रखी थी दोनों ने,
0: ओढ़ रखी थी दोनों ने, सर्द हवा में वसल की शाल।
1: क्या बात है, क्या बात है,
3: सर्द हवा में वसल की शाल,
0: क्या ओढ़ रखी थी दोनों ने, सर्द हवा में वसल की शाल। ठीक नहीं है गौतम जी,
1: ठीक नहीं है गौतम,
0: ठीक नहीं है गौतम जी, कम उम्र में इतने मलाल।
1: क्या बात है, बहुत खूब,
3: बहुत
1: शुक्रिया,
3: बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत।
0: एक गजल देखें
1: जी,
0: सब कुछ त्याग के चीवर धारा,
1: सब कुछ त्याग के जीवन धारा,
0: सब कुछ त्याग के चीवर धारा,
1: चीवर धारा,
0: नगर नगर से दान लिया।
2: क्या कहना,
0: सब कुछ त्याग के चीवर धारा, नगर नगर से दान लिया, एक पीपल की छांव में बैठे और गौतम से ज्ञान लिया।
2: क्या कहने, वाह वाह वाह,
3: क्या कहने,
2: क्या कहने,
0: उसके दर को खोल दिया
1: जी
0: एक तेज हवा के झोंके ने
1: जी,
2: उसके दर को खोल दिया एक तेज हवा के,
0: उसके दर को खोल दिया एक तेज हवा के झोंके ने, मेरे दस्तक देने से पहले ही मुझे पहचान लिया।
2: क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा।
0: घटा हुई तो खुशी खुशी में रम भी किया, बरखा न हुई।
1: क्या बात है,
0: घटा हुई तो खुशी खुशी में रम भी किया, बरखा न हुई, अपना तन बेकार ही हमने इस माटी में सान लिया।
1: क्या बात है,
2: बहुत उम्दा,
1: क्या बात है।
0: वो तो कब का चला गया, किसे ढूंढ रहे हो गौतम जी, हमने उसकी चाह में शहर का कोना कोना छान लिया।
2: क्या क्या बात है, क्या,
0: बहुत शुक्रिया,
3: फिर से पढ़िए, बहुत अच्छा।
0: वो तो कब का चला गया, किसे ढूंढ रहे हो गौतम जी, हमने उसकी चाह में शहर का कोना कोना छान लिया।
2: क्या,
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। किसी शायर ने कहा था कि नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, कहाँ से बचकर निकलना है और कहाँ जाना ज़रूरी है। तो ये थे लंकेश गौतम, और ये ज़िंदा हैं, नौजवान हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। इनके शेर को हमारे सामईन सुन रहे थे, महसूस हो रहे थे, और उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे थे और समझ भी रहे थे। तो ये गौतम जी वही गौतम है या उस गौतम की राह पर चल रहे हैं, ये फ़ैसला आप करें। तो सामईन इकराम, ये आज की हमारी महफ़िल यहीं इख्तिताम को पहुँचती है। हम अपने तमाम शोरा का, जनाब सफ़ीर सिद्दीकी, रुमेशा रहमान साहिबा और लंकेश गौतम साहब, आप तीनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सामईन के लिए इतने अच्छे अशआर, इतनी अच्छी गज़लें पेश की। इसके लिए हम आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सामईन इकराम, आपने सुना कि आज इस मुशायरे की महफ़िल में किस नौयत के अशआर हमारे शायरों ने, हमारे नौजवान शोरा ने पेश किए, और इन शायरों ने अपने जज्बात को या जो कुछ ये देखते हैं अपने समाज में, जिन चीज़ों को देख रहे हैं, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जिन चीज़ों को देख रहे हैं, अपने एहसास को लफ्ज़ों का जामा पहनाकर किस तरह हमारे सामने पेश करते हैं, ये सब हमारे सामने आया था। तो इसी के साथ आज अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। इससे पहले ये भी बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतज़ार सैफ़ी ने। तो सामईन, आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और शोरा के साथ किसी और महफिल में। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनिए क्षमावाणी महापर्व पर विशेष वार्ता। क्षमा तीन लोक की संपदा। वार्ताकार है डॉक्टर इंदु जैन।
6: जैन दर्शन में

भूषण और दसलक्षण महापर्व आत्मशुद्धि, आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरण का अवसर है। इन दिनों मनुष्य कुछ समय के लिए संसार की व्यस्तताओं से हटकर अपने भीतर झांकता है और अपने राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, छल, लोभ तथा आसक्ति को पहचानने का प्रयास करता है। पर्युषण के दिनों में संयम, तप, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, पूजा और आत्मचिंतन के माध्यम से कर्म निर्जरा तथा आत्मकल्याण की भावना जागृत की जाती है। दस लक्षण महापर्व में उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक 10 गुण धर्मों को जीवन में उतारने की साधना की जाती है। ये 10 गुण केवल पूजा पाठ के विषय नहीं है, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले 10 व्यावहारिक मार्ग हैं। उत्तम क्षमा क्रोध को शांति में, उत्तम मार्दव अहंकार को विनम्रता में और उत्तम आर्जव कपट को सरलता एवं पारदर्शिता में बदलने की प्रेरणा देता है। उत्तम सत्य हमें सत्य निष्ठा, उत्तम शौच मन की निर्मलता, उत्तम संयम इंद्रियों पर नियंत्रण, उत्तम तप आत्मानुशासन, उत्तम त्याग परोपकार, उत्तम आकिंचन्य आसक्ति से मुक्ति और उत्तम ब्रह्मचर्य आत्मसंयम एवं पवित्रता का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार पर्युषण और दस लक्षण महापर्व की पूरी साधना मनुष्य को भीतर से निर्मल बनाने की यात्रा है। इसी साधना की सुंदर परिणति क्षमावाणी महापर्व में होती है, जब हम अपने द्वारा जाने अनजाने किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं और दूसरों की भूलों को क्षमा करने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म में भाद्र माह के दस लक्षण महापर्व की अनंत चतुर्दशी के ठीक एक दिन बाद आश्विन कृष्ण एकम को विश्व मैत्री क्षमावाणी महापर्व मनाया जाता है। क्षमा पर्व में सभी जन समस्त सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों से वार्षिक प्रतिक्रमण करते हुए एवं आपस में एक दूसरे से उत्तम क्षमा, मिच्छा में दुक्कडम अर्थात मेरे सभी दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए ऐसा कहकर प्रायश्चित करते हैं और मन को शुद्ध करते हैं। विश्व के लगभग सभी धर्मों में क्षमा गुण की सर्वाधिक प्रतिष्ठा है, इसलिए पूरे विश्व के सभी लोगों को क्षमावाणी महापर्व मनाना चाहिए, क्योंकि क्षमा से जीवन के सभी संघर्ष जीते जा सकते हैं। क्षमा हमारे खुद के लिए है। क्षमा भावना होने से हम अपने मन से अनगिनत बोझ को हटाकर मन को हल्का कर सकते हैं और स्वच्छ मन और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। क्षमा बने हर हृदय की भाषा, प्रेम बने आधार, मिट जाए मन के भेद सभी, मिट जाए तकरार, विश्व धरा पर क्षमा का पर्व हर मानव मिलकर मनाए, क्षमा अहिंसा प्रेम से ही विश्व शांति मुस्काए। पर्युषण दस लक्षण महापर्व जैन दर्शन का एक ऐसा सौभाग्यशाली पर्व है जिसके दोनों सिरों पर क्षमा उपस्थित है, पहली उत्तम क्षमा के रूप में, दूसरी क्षमावाणी के रूप में। पर्व हमारे जीवन में नई खुशियां, नई बहार लेकर आते हैं। क्षमावाणी एक ऐसा पर्व है जिसमें विश्व मैत्री की भावना समाहित है। यह संसार के समस्त जीवों के प्रति मैत्री की भावना से परिपूरित है। सौहार्द और सद्भाव का पर्व है। क्षमा ही हमारा जीवन है। आचार्य वटकेर जी द्वारा रचित प्राकृत भाषा के ग्रंथ मूलाचार में क्षमा के लिए एक बहुत सुंदर भावों की अभिव्यक्ति करती हुई एक प्रसिद्ध गाथा है। खम्मामि सर्वे जीवाणाम सर्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ती में सब भूदेशु वैरम मज्जम णकेणवी, अर्थात मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, किसी के प्रति मेरा वैर भाव नहीं है। हमारी भी सदैव यही भावना होनी चाहिए। इन भावनाओं को अपने जीवन में उतारते हुए हमें स्वीकार करना होगा कि क्षमा ही हमारा जीवन है, धर्म है, प्राण है और आत्मा है। क्षमा केवल वाणी का विषय नहीं है, यह अंतःकरण की निधि है। क्षमा अमृत है, क्षमा प्रकाश है। ऐसे प्रकाश में जीने वाला व्यक्ति ही जीवन को प्रकाशित कर सकता है। कहा है कि क्षमा रूपी चिंतामणि रहती जिसके पास, तीन लोक की संपदा बनती है फिर दास। क्षमा पहले मन में आती है,
फिर वाणी में आती है, फिर काय से परिणत होती है। इसीलिए क्षमा वाणी को नित्य जीवन में हर पल मनाते हुए क्षमा के एक विशेष मंत्र की बार बार अनुप्रेक्षा करनी चाहिए, ताकि हम प्रतिपल सजग रहे, गलती ना करें और अपने मन में मलिनता को ना आने दें। ओम ह्रीम नमः, सबसे क्षमा सबको क्षमा। इस मंत्र को यदि हम बार बार स्मरण

करें तो हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि धर्म हमें क्षमा करना सिखाता है, क्रोध नहीं। क्षमा हमारा स्वभाव है, किंतु क्षमावाणी पर्व हमसे कहता है कि जाने अनजाने क्रोध हो भी गया हो, किसी ने आपका दिल दुखाया हो या आपके द्वारा किसी को ठेस पहुंची हो, तो इस पर्व के दिन उससे आप क्षमा मांग लें और उसे क्षमा कर दें, मन की मलिनता दूर हो जाएगी। ऐसी कर तू साधना अधिकार क्रोध पर हो तेरा, कितना किस पर कहां पर, कैसे विवेक पूर्ण हो विरोध तेरा। निश्चल मन से कर विचार तू दया धर्म का कर ध्यान, सहज भाव से जी ले प्यारे क्षमा बड़ी बलवान, क्षमा बड़ी बलवान। क्षमा कोई कार्य नहीं, एक प्रक्रिया है और इसमें समय भी लग सकता है। व्यावहारिक रूप में क्षमा भाव को समझने और प्रयोग करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्षमावाणी महापर्व हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाता है, दूसरों को क्षमा करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है स्वयं को भी क्षमा करना। किसी ने हमें दुख दिया हो, कोई बात मन को चोट पहुंचा दी गई हो, तो उस पीड़ा को वर्षों तक अपने अंतर मन में संजो कर मत रखिए, उसे छोड़िए, क्षमा कीजिए और अपने मन को हल्का रखिए, क्योंकि मन में ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की गांठें बांधकर हम दूसरों को नहीं स्वयं को ही दुख देते हैं। कहते हैं रोग तन में जड़े मन में, इसलिए स्वस्थ शरीर शांत मन और आत्मिक सुख के लिए क्षमाशील होना जरूरी है। अपनी पुरानी भूलों के लिए स्वयं को जीवन भर दंडित मत कीजिए, गलती से सीखिए, सुधार कीजिए और आगे बढ़ जाइए। जब परिस्थितियां विपरीत हों तब अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए और मन की उथल पुथल को शांत कीजिए। दूसरों की कमियां गिनाने से पहले एक बार अपने भीतर झांकिए, अपनी कमियों को पहचानिए, स्वीकारिए और उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। हर पल अपने व्यवहार पे नजर रखिए कि हमारे मन, वचन और कर्म से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा। क्रोध आए तो उस पर अड़िए मत, कभी मुस्कुराकर उसे उड़ाना भी सीखिए। यदि हमसे गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में संकोच कैसा, सहृदयता, स्पष्टवादिता और मन वचन काय से ईमानदारी पूर्वक क्षमा मांगे। विश्वास मानिए, क्षमा मांगने के बाद मन को एक अद्भुत सुकून मिलता है। आराध्य का स्मरण कीजिए ताकि क्रोध, मान, माया और लोभ की मन में जमी परतें धीरे धीरे उतरती जाए, क्योंकि क्षमा मांगना और क्षमा करना आसान नहीं, क्षमा वीरों का आभूषण है। रिश्तेदारों और परिचितों से अपेक्षाएं भी थोड़ी कम रखिए। अपने मन के भावों को डायरी में लिखिए, जिससे मनमुटाव है उसका नाम लिखकर बार बार लिखिए, हमने उसे क्षमा किया। और यदि संभव हो तो किसी तीसरे व्यक्ति से शिकायत करने की बजाय सीधे उसी व्यक्ति से बात कीजिए जिससे मनमुटाव है। विरोधियों को हराने का सबसे सुंदर तरीका है दुर्भावना छोड़ देना, क्षमा करना और स्वयं खुश रहना। नकारात्मक विचार रखने वालों के प्रति भी माध्यस्थ भाव रखिए। आइए क्षमा को केवल एक दिन का पर्व ना बनाकर अपने जीवन की विरासत बनाएं। जन जन को क्षमा का संस्कार दें ताकि हम बेहतर मनुष्य, अच्छे नागरिक बने और परिवार से लेकर समाज तथा पूरे विश्व में शांति की स्थापना में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि जब क्षमा से मन भरता है तब जीवन शिकायतों से नहीं शांति से भर जाता है। इस प्रकार के चिंतन से हम अपने मन को निर्मल करते हुए स्वस्थ रह सकते हैं। क्षमा मन की औषधि है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि विरोधियों के प्रति द्वेष का स्मरण मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जबकि माध्यस्थ भाव, सहानुभूति और क्षमा की भावना मनोभावों एवं शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अहिंसा, क्षमा, मैत्री भाव को धारण कीजिए। संपूर्ण सृष्टि से आपके द्वारा जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना कीजिए और क्षमावाणी महापर्व पर अपना जीवन सार्थक कीजिए। क्षमावाणी की मंगल वेला भावों को निर्मल कर दे, मिटा कलुषता मन की सारी, भावों में शुचिता भर दे। मानव मन चंचल है किंतु संयम मन पर बांध लगाएं, क्षमावाणी पर आओ बंधु, क्षमा भाव मन में लाएं। आज के तनावपूर्ण सामाजिक जीवन में क्षमावाणी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, सामाजिक जीवन में प्रतिस्पर्धा, कार्य क्षेत्र में मतभेद और संवाद में बढ़ती कटुता मनुष्य को भीतर से अशांत करती है। यदि एक बार भी हम अपने संबंधों

की धूल झाड़कर प्रेम और क्षमा का दीप जलाएं तो अनेक टूटते संबंध पुनः जुड़ सकते हैं। क्षमा नहीं कमजोरी, यह आत्मबल की पहचान। वैर मिटाकर प्रेम बढ़ाना जैन धर्म का महान विधान। जिस हृदय में मैत्री जागे वह मंदिर बन जाता है, क्षमा धारण करने वाला स्वयं महान बन जाता है। हमने तो मांगी है मन्नत केवल

0: गलत कि भावना से ऊपर उठकर हम दोनों आत्मस्वरूप हैं की अनुभूति की ओर ले जाता है। जैन धर्म का संदेश है कि संसार में कोई भी जीव हमारा शत्रु नहीं, हमारे भीतर की कषाय ही वास्तविक शत्रु है। जब क्रोध शांत होता है, अहंकार झुकता है और वैर समाप्त होता है, तब आत्मा की निर्मलता प्रकट होने लगती है। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, मिच्छा में दुखडम। मेरा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव हो और किसी भी जीव के प्रति मेरे मन में वैर ना हो, यही क्षमावाणी की सार्थकता है, यही आत्मशुद्धि का पथ है और यही जैन धर्म की अहिंसामय जीवन दृष्टि का सुंदर संदेश है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर इंदु जैन से क्षमावाणी महापर्व पर क्षमा तीन लोक की संपदा विषय पर विशेष वार्ता। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र

0: सभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज

0: अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
1: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
2: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
3: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
1: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
5: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
1: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth-level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Suryakant says drug abuse among children must be seen as child protection issue.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए SIR का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल अफीसर SIR के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में NCCF की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकत दारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के माबैन मंशियात

0: पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में केरलम के मुस्तकबिल की खातिर बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं और इमदाद बाहमी के शोबे को इसे बरूए कार लाना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज़ादी के बाद से लोगों की हमेशा ये मांग रही है कि मरकज में इमदाद बाहमी से मुतालिक एक अलहदा वजारत हो। नरेंद्र मोदी हुकूमत के इख्तदार संभालने के बाद इस सिलसिले में इकदाम किए गए।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी की 73वीं सालगिरह तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा एक दीगर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने खिदमत को एक मिशन में तब्दील करके एक मिसाल कायम की और लोगों की खिदमत के जज्बे को एक तहरीक में बदला जो दुनिया भर में लोगों तक पहुंची।
1: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों के दरमियान मंशियात के इस्तेमाल को एक अवामी सेहत के मामले के तौर पर ही नहीं बल्कि बच्चों के तहफ्फुज़ के एक मामले के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। वो पटना में आज बचपन की बहाली, मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम और देखभाल और तहफ्फुज़ के ज़रूरतमंद बच्चों को असर नौ मरबूत करना के मौजू पर होने वाले सेमिनार से खिताब कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया कि मंशियात के इस्तेमाल से मुतासर बच्चों को तहफ्फुज़, इलाज, काउंसलिंग, आज़ादकारी और तालीम नेज खानदानी जिंदगी के बहाली के मौके फराहम किए जाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने तालीमी तसलसल, महफूज खानदानी माहौल और बाज आबादकारी के अमल में देखभाल की अहमियत को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने पटना में मुल्क का अव्वलीन मुतासरीन के हकूक़ के मरकज़ का भी इफ्तिताह किया। अपनी नौइयत का ये अव्वलीन मरकज़ बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की इमारत में कायम किया गया है। यह मरकज़ मुख्तलिफ जराइम के मुतासरीन को एक ही मकाम पर कानूनी हकूक़ और ज़रूरी तआवुन फराहम करेगा जिसमें वो मुतासरीन भी शामिल हैं जो नज़र नहीं आते। बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के हमरा गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र सिंह पटेल ने आज कच्छ ज़िले में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में 150 टन योमिया सलाहियत वाले ई मेथनॉल प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस्तेमा से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने उजागर किया कि इस प्लांट के आगाज़ से मुल्क भर में रोज़गार के मुतअद्दिद इम्कान पैदा होंगे।
2: हमारे कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, महाराष्ट्र की JNPA और बंगोपसागर में बचे हुए हमारे उड़ीसा के पारादीप पोर्ट, सार पोर्ट को आज मेगा पोर्ट का इस्तेदास मिला। इसका मतलब है एक पोर्ट ने 150 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी करने में सफलता प्राप्त की है। जितना भी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा हमारा उपार्जन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा।
0: वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में आज 81वीं अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के हाई लेवल इजलास से खिताब करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 81वां इजलास इस मौजू पर मुनक़िद किया जा रहा है, एतमाद की बहाली, काया पलट के लिए इंतज़ाम करना, ऐसा अक़वामे मुत्तहिदा जो सब के लिए हो। जनरल असम्बली में तमाम 193 अक़वामे मुत्तहिदा मेंबर मुल्कों के सदूर हज़रात, वज़राए आज़म और सीनियर नुमाइंदगान यकजा हो रहे हैं जो बड़े बैनुल-अक़वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक इस इजलास में आलमगीर तआवुन को नई जिंदगी अता करने, पायदार तरक्याती अहदाफ में पेशरफ्त और अमन वक़ार और मसावात के लिए इज्तमाही कार्रवाई को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی

0: खुसूसी सीरीज में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है।
1: परीक्षा पे चर्चा सालाना बातचीत का एक प्रोग्राम है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी इम्तिहानात के दबाव से निमटने और खुशी के साथ सीखने के अमल के बारे में तलबा, असातजा और वालदेन से बात करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स तहरीक के तहत 2018 में इस मुल्कगीर मुहिम पहल का आगाज हुआ जिसने नौजवानों को इम्तिहानात बगैर दबाव के साथ एतमाद से देने में मदद की। इस पहल ने इम्तिहानात को बोझ की बजाय मौके के तौर पर पेश किया। परीक्षा पे चर्चा पहल के तहत मुनक्कदा एक प्रोग्राम में तलबा से बातचीत में वजीर आजम ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो किसी भी तरह के दबाव से निमटने की खातिर खुद को मजबूत और बासलाहियत बनाएं।
2: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना होता है।
1: इस प्रोग्राम ने करोड़ों भारतीय नौजवानों की सिर्फ कारकर्दगी से तवज्जो मजमूई तरक्की की जारी मुंतकिल की जिससे इम्तिहान का दबाव कम हुआ और उनकी जहनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दी गई। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक सारिफिन की सहूलत के लिए कल इतवार के रोज खुले रहेंगे। वजारत ने कहा है कि यह कदम इस माह की 28 तारीख से 30 तारीख तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों की जानिब से 3 रोजा मुजवजा मुल्कगीर बैंक हड़ताल के तनाजुर में उठाया गया है। इस हड़ताल से कबल 26 और 27 सितंबर को हफ्तावार छुट्टियां थीं। उधर सरकारी सेक्टर के कई बैंकों ने 3 रोजा बैंक हड़ताल के दौरान एटीएम से किए जाने वाले लेन देन पर माहाना मुफ्त हद के बाद आयद होने वाले चार्जेस को खत्म करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कल उत्तराखंड में कुछ मकामात पर तेज से बहुत तेज बारिश और दूर दराज के मकामात पर इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड कलर वार्निंग जारी की है। महकमे मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश के दूर दराज के मकामात पर तेज से बहुत ज्यादा तेज बारिश की पेशगोई की है। भारत ने जापान में आइची नगोया एशियाई खेल 2026 में आज तमगों की फहरिस्त में अपना मजबूत मकाम बना लिया और उसने कबड्डी, खेलकूद और निशानेबाजी जैसे खेलों में 7 मजीद तमगे जीते हैं। भारत के मर्दों और खवातीन की कबड्डी टीमों ने आज सोने के तमगे जीते। मर्दों की कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 34 के मुकाबले 40 से हराकर सोने का तमगा जीता। खवातीन की टीम ने भी ईरान को एक सनसनीखेज फाइनल में 34 के मुकाबले 37 के फर्क से कामयाबी हासिल करके सोने का तमगा जीता। एथलीट्स में तजिंदर पाल सिंह तूर ने 20.64 मीटर की दूरी पर शॉर्ट पुट फेंक कर चांदी का तमगा जीता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने एशियाई खेल 2026 में जीत हासिल करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए SIR का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर SIR के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में NCCF की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकत दारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के मावैन मनशियात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत से मुतल्लिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और

0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंद मई के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद से खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में मदद की है और आपदा तथा संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता भी पहुंचाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी

0: for the convenience of customers. The ministry said that this step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions from 28th to 30th of this month, coinciding with the preceding weekend holidays of 26th and 27th September. The Chardham Yatra in Uttarakhand has been suspended today in view of adverse weather conditions. Disaster Management Secretary Vinod Kumar Suman said the decision has been taken in the interest of pilgrims' safety. Pilgrims have been advised to keep track of weather conditions and follow the guidelines issued by the administration. The pilgrimage will resume only after the weather conditions improve. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR Live News 24/7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 2:10 और 10 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, बड़ा ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम होने वाला है और ये वाकई बहुत ही शानदार रचनाओं के साथ आता है ये खूबसूरत कार्यक्रम। जी हाँ, कार्यक्रम गीत बहार, फिल्म म्यूजिक नॉन स्टॉप। जी हाँ, बिना किसी रुकावट के लगातार आप सुन रहे होंगे कि बहुत ही शानदार बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं। आज मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में, आपका दोस्त ललित कुमार। तो बस हो जाइए तैयार आज के कार्यक्रम गीत बहार की पहली सुंदर बेहतरीन रचना के साथ। नमस्कार, स्वागत आप सभी साथियों का। सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत बहार की सुंदर खूबसूरत रचनाएं।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम अब संपन्न हुआ, 3 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शीमार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार AI मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारी में AI को भी शामिल करेगा। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में

0: the interest of pilgrims' safety. Pilgrims have been advised to keep track of weather conditions and follow the guidelines issued by the administration. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 3:10। साथियों, ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम, जी हाँ दोस्तों, गीत गजल। जी हाँ, कार्यक्रम गीत गजल। आज के कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की गीत। बहुत ही शानदार गजलों का कार्यक्रम है और गीत गजल के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना से हम शुरुआत कर रहे हैं। साज़े दिल नगमाए जान। जी हाँ, साज़े दिल नगमाए जान एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही पॉपुलर खूबसूरत गजल है। और गजल साज़े दिल नगमाए जान यात्रा एल्बम के अनुरूप अनुसार तलत अजीज की खूबसूरत आवाज में शानदार रचना है। गीत साज़े दिल एल्बम है और संगीत से सजाया खयाम साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार और बेहतरीन खूबसूरत गजल आज के कार्यक्रम की पहली सुंदर बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे तलत अजीज़ की खूबसूरत आवाज़ में शानदार रचना। या दोस्तों, एक और सुंदर मार्वलस खूबसूरत गज़ल आ रही है, जिंदगी तूने। जी हाँ, ये टाइटल लाइंस हैं और प्यार का पहला खत जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत रचना है। और इस गजल को संगीत से संवारा है जगजीत सिंह ने ही। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार बेहतरीन गजल।

हाँ जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गजल। या दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। यह गजल आ रही है आगे भी जाने ना तू, एल्बम वक्त से। बहुत ही शानदार एल्बम है, आशा भोसले की आवाज में शानदार गजल। यह गजल 1965 प्रदर्शित एल्बम की है और गीत साहिर के हैं और संगीत से संवारा है रवि ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गजल।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल। गीत गजल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। साथियों, 4 बजने को हैं और कुछ ही पलों में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम अर्चना।
1: भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 4:20 और 15 सेकंड। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत सिक्किल मालचंद्रा शेखर का बांसुरी वादन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सिक्किल माला चंद्र शेखर का बांसुरी वादन।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 सितंबर 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 47 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा भद्रासन और अश्वथासन। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे रिहाना चक्रवर्ती का गायन। राग होगा शिवमत भैरव।

संगीतिका कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे परवीन दुबे के भजन। 7:30 का समय रहेगा हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और 8:45 पर कार्यक्रम होगा साहित्य की, जिसके अंतर्गत परिचर्चा का विषय रहेगा हिंदी गजल नई जमीन। ये कार्यक्रम दुष्यंत कुमार जयंती पर आधारित होगा, जिसमें प्रतिभागी होंगे डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा, श्री दीक्षित दनकौरी, श्री अनिल वर्मा मीत और श्री राजेंद्र निगम राज। साथ ही साहित्यिक गतिविधियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी।

0: सुबह 9:15 पर कार्यक्रम होगा हमारे अतिथि, जिसके अंतर्गत फोटोग्राफर सुशी सर्वेश से भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। मिट्टी दी महक कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भारत विच सैर सपाटा। ये होगा हमारी आज की बातचीत का विषय और प्रस्तुति होगी डॉक्टर विनयनीत कौर की। सुबह 10:10 पर कार्यक्रम होगा आपकी पसंद, हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम। आज हमारा विशेष कार्यक्रम सुनना न भूलें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मन की बात का एपिसोड संख्या 138। इसके तुरंत बाद इसका संस्कृत रूपांतरण भी सुना जा सकेगा। दोपहर 12:10 पर कार्यक्रम होगा महिला कार्यक्रम, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा विट्ठल भाई पटेल जयंती। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 5 बजने को हैं। अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया को शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए

0: मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर बल दिया। एआई के क्षेत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार एआई मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। युद्ध और संघर्ष पर वैश्विक समुदाय से संयम, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूरदराज के देशों को भी इसका नुकसान होता है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका को देखते हुए कल तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा भी आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि अनुकूल मौसम होने पर यात्रा फिर शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, उड़ीसा और तेलंगाना में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच शुरू होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जाएगी। एक दिवसीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं। वहीं T20 श्रृंखला में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी भारत को आज पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information.

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए ऑफिस में बैठ